मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 30वीं तिथि तदनुसार 20 जून 2026। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 5:58 और 45 सेकंड हुए हैं। अब हमारे आज के प्रसारण आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स और एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। समाचारों के तुरंत बाद आप सुनेंगे एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्स पर विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले।

0: सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित की जा रही है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस के समारोह में भागीदारी करेंगे। कोलकाता के रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमेरिका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइल थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर इस समय आप जुड़ चुके हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रस्तुत है आज का चिंतन। अच्छे विचार जीवन बदल देते हैं, बस सोच सकारात्मक होनी चाहिए। ये था आज का चिंतन। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से अब श्रोता सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

भगवान श्री राम का वनवास केवल एक वन यात्रा नहीं थी, बल्कि संसार का कल्याण करने और धर्म की स्थापना करने की एक दिव्य लीला थी।

जब इंसान को ईश्वर का ज्ञान हो जाता है तो उसके मन से परायेपन के सभी द्वेष मिट जाते हैं। उसके लिए कोई अजनबी नहीं रहता, वो सभी को अपना मानने लग जाता है।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब सुनिए हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान।

माता कैकेयी की कठोरता तथा कुटिलता की भर्त्सना करके भी भरत के हृदय में सुलगती आग शांत नहीं हुई। उधर क्रोधाग्नि में जलते शत्रुघ्न के सामने मंथरा जो आई तो उन्होंने एक लात जमाकर उसकी उबड़ फोड़ डाली और झूठी पकड़कर उसे घसीटने लगे थे कि स्वभाव से दयालु भरत ने छुड़ाकर उसके प्राणों की रक्षा की। भरत और शत्रुघ्न माता कौशल्या के समक्ष उपस्थित हैं। दिवंगत पिता तथा वनवासी राम लक्ष्मण और सीता को देखने के लिए बिलखते भरत को माता कौशल्या धीर गंभीर भाव से सांत्वना दे रही हैं। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने राजसी वस्त्राभूषण त्याग कर वलकल धारण किया। ऐसा करते उन्हें न तो विषाद हुआ और न ही हर्ष। मन में न आसक्ति थी न क्रोध। सबके संतोष के लिए जब वन को चले तो सीता भी उनके पीछे चल पड़ी। अग्रज के वन गमन का समाचार सुनकर लक्ष्मण भी अयोध्या में नहीं रुके।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन श्री रामचरित मानस गान। आवाज़ ए हरिहरन और वाणी जयराम की थी। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्स पर। अब सुनिए हमारा अगला कार्यक्रम कृषि की बातें।
1: किसान बहनों भाई राम राम। कृषि की बात मैं आज जिक्र करेंगे वर्मी कंपोस्ट के फायदे हुए हैं इस बारे में कुछ सुझाव भाई। खास तौर पे और जो सामान्य बात है, सामान्य तौर पर हम गोबर की खाद या कंपोस्ट बनावे हैं तो उसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाए है। हम इस खाद ने कंपोस्ट को केंचुआ की सहायता से बना सके हैं। केंचुए जैविक कचरे ने खाकर और गुणवत्ता युक्त जो पदार्थ हैं इनमें रूपांतरित करते हैं। इस विधि नाम वर्मी कंपोस्टिंग कहें और इस तरह तैयार जो कंपोस्ट है इसने वर्मी कंपोस्ट या केंचुआ खाद भी कहते हैं। खाद बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें जैविक कचरा केंचुआ के द्वारा खाया व पचाया जा है। इस दौरान केंचुआ की आंता द्वारा उत्सर्जित जो स्त्रावित पदार्थ पाचित पदार्थ मिल जाए हैं जो शरीर से निकलने के बाद वर्मी कास्ट के रूप में केंचुआ खाद बना दे हैं। ये वर्मी कास्ट पौधे के लिए हानिकारक जीवों को दूर भगाने का काम करे हैं और केंचुआ खाद को हम न केवल अपने खेतों में प्रयोग कर सके हैं बल्कि इस खाद को बेचकर हम काफ़ी अच्छी आमदनी भी कमा सके हैं। और बहुत से जो किसान भाई हैं जो डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं वो इस खाद ने बना कर और बेचन भी लाग रहे हैं, उससे भरपूर फायदा भी लेने लाग रहे हैं। और खेत में अगर हम डाले हैं अपनी जो ज़मीन है उसने ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ बनाओगे भाई। जो अपनी ज़मीन की ताशीर हमने बिगाड़ ली है रासायनिक खादात हैं उससे इसमें बहुत ज़्यादा सुधार आओगा। जो भी हम फसल लेंगे उसकी गुणवत्ता भी बहुत बढ़िया अच्छी रहेगी और जो खान पीन की जो भी चीज़ें हैं उसमें स्वाद न्यारा होगा। जय आम रासायनिक खाद डालना बंद कर दें, हालांकि एकदम तो बंद नहीं कर सकते लेकिन धीरे धीरे इसने कम कर जरूर कर सके हैं तो इस कारण जो हमारी फसलों में भी कोई पैदावार पर असर नहीं पड़ेगा बल्कि पैदावार हमारी बढ़िया अच्छी तरीके से बढ़ोतरी पर जाएगी। तो इस वर्मी कंपोस्ट के बहुत फायदे हैं खेत में डालने से। पौधे के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं ये सकते संतुलित मात्रा मिल जाए इससे। इस खाद में पौधे की वृद्धि वाले जो हार्मोन पाए जाए हैं वह प्रचुर मात्रा में पाए जाए हैं जिससे

0: उत्पादन की बढ़ोतरी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है। इस खाद के प्रयोग से फसलों की ज़्यादा उत्पादकता और उच्च गुणवत्ता यह हम ला सके हैं, यानी कि गुणवत्ता में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया है। खाद के प्रयोग से मिट्टी में जो हानिकारक रसायन की पौधे के लिए उपलब्धता में कमी भी आ जाए है, क्योंकि जो हानिकारक जो रसायन पैदा हो जाए रासायनिक खादों के द्वारा उसकी कमी होकर ने और गुणवत्ता बढ़ी आ जाए है, जो पोषक तत्व हैं वह हमारी ज़मीन में ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए हैं। मिट्टी में जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं इनकी संख्या में भी बढ़ोतरी बना है वर्मी कंपोस्ट डालने से, और मिट्टी में जो जैविक पदार्थ हैं इसकी मात्रा भी बढ़ रहा है। ज़मीन की जो भौतिक संरचना है इसमें सुधार हुआ है, इसके कारण ज़मीन की जो उपजाऊ ताकत है वह भी बढ़ रहा है और पानी सोखने की क्षमता भी बढ़ जाए है। मिट्टी की पानी पकड़ने की क्षमता में वृद्धि हुआ है, यानी कि जो निचली परत रासायनिक खाद करड़ी होगी है वह टूटकर नरम हो जाए है, पानी संचार करने की उसमें ताकत बढ़ जाए है ज़मीन के अंदर। मिट्टी में पानी और वायु का संचार बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है, जिसके कारण पौधा की जड़ा में भी बहुत अच्छी बढ़ोतरी बन जाए है। गोबर को ईंधन के रूप में प्रयोग होने के बाद होने वाले जो पर्यावरण प्रदूषण है उनसे भी हम बच सके हैं, और पशुशाला के जो कूड़े करकट से हैं फसलों के अवशेष से हैं इनका सही प्रयोग करके हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सके हैं, जिससे हमारी फसल में भी सुधार, खेत के उपजाऊपन में भी सुधार और पर्यावरण में भी सुधार ये चीज़ हो सके हैं। तो वह देखे आपने कि वर्मी कंपोस्ट हैं बहुत ज़्यादा किसान भाई फायदा ले सके। तो ये कुछ मोटी मोटी बात थी कि भाई केंचुआ खाद का प्रयोग करके वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करके ने हम अपने खेतों की जमीन ने भी उपजाऊ बना सके हैं और फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार कर सके हैं।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि की बातें आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले संस्कृत में, 7 बजे हिंदी में और 7:05 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले के लिए प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। ओडिशा में वे आज मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। कल प्रधानमंत्री कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया है। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों, परिसंपत्ति पुनर्गठन कंपनियों और ऋण लेने वालों के बीच साजिश पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय ने डूबे ऋण को निपटाने के तरीके पर भी सवाल उठाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने कहा कि बैंक करदाताओं के पैसे ऋण के रूप में दे रहे हैं, लेकिन वसूलने के प्रभावी उपाय नहीं किए गए हैं। अदालत ने जनता के पैसे के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि का उपयोग जनकल्याण में होना चाहिए। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। 17 से 19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। उत्तर प्रदेश ब्रिक्स देशों के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश संपर्क बढ़ा रहा है। राज्य सरकार ने बताया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान ब्रिक्स देशों और साझेदार देशों को 5 अरब 36 करोड़ डॉलर मूल्य से अधिक का निर्यात किया गया। आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम में ब्रिक्स देशों और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एकदिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कल रात सीजन की पहली प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने अपने तीसरे प्रयास में 85.69 मीटर भाला फेंक कर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Maghav. Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur and offer prayers at Sacred Groves, Santali Jahera and Ho Jahera Skill Center and Pahadpur School. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During the program, they will inaugurate and lay the foundation stones of various development projects worth over 47,000 crore rupees. During his two-day visit to West Bengal, the Prime Minister will participate in Paschim Banga Divas, West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stones of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. India's senior bureaucrat Vivek Agarwal has been selected as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the Global Anti-Money Laundering and Counter-Terror Financing Watchdog. The decision was made during the FATF plenary held from 17th to 19th June. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, "The appointment reinforces India's relentless focus on combating global terrorist financing networks and dismantling illicit financial systems."

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करने के समारोह का सीधा प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 3:55 पर। समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित पीपल्स पदम के 31वें एपिसोड का अनुप्रसारण हम करेंगे आज प्रातः 9:10 पर।

शाम 7:10 पर सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम में वार्ताकार होंगे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम सुनिएगा आज शाम 5:10 पर।

राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती रात 9:30 पर और संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 10:00। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

युवा संसार कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:30 पर। प्रातः 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुबह सवेरे।

कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:20 पर गाय भैंसों में टीकाकरण कितना जरूरी, इस विषय पर बातचीत करेंगे श्री पवन। योगिक क्रियाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव, इस विषय पर श्री देवेंद्र खुराना की बातचीत सुनवाई जाएगी ग्रामीण संसार कार्यक्रम में शाम 7:00।

खेत खलिहान कार्यक्रम में दोपहर 2:30 पर पशुधन की देखभाल इस विषय पर जानकारी दी जाएगी। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 7:15 पर और रात 8:25 पर।

फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सबरस प्रातः 9 बजे, चित्रपट संगीत दिन में 1:10 पर, फिल्म संगीत शाम 7:45 पर और एक फिल्म से कार्यक्रम होगा रात 9:15 पर।

हरियाणवी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी दिन में 12:30 पर और लोक संगीत कार्यक्रम में प्रातः 8:30 पर कलाकार होंगे बाली शर्मा और साथी।

ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम की पहली गजल हम आपको सुनवा रहे हैं चंदन दास की आवाज़ में।

और इसके साथ ही हमारा आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे।

सुबह सवेरे कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी रेडियो दोस्त गीता।

मुसाफिर वो नहीं जो मंजिल की चाहत में रुक जाए, मुसाफिर तो वो है जो हर मुश्किल राह को अपना रास्ता बना जाए।

श्रोताओं, आज 20 जून को हम मना रहे हैं विश्व शरणार्थी दिवस। ये दिन दुनिया भर में युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपना घर छोड़ने को मजबूर हुए लाखों लोगों के साहस, सहन शक्ति और योगदान को सम्मानित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व स्तर पर करोड़ों लोग संघर्ष, प्राकृतिक आपदा और उत्पीड़न के कारण अपने मूल देशों से भागने के लिए मजबूर हुए हैं। भारत भी वर्तमान में हजारों शरणार्थियों को आश्रय प्रदान कर रहा है। भारत तिब्बत, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार और अन्य क्षेत्रों से आए शरणार्थियों को शरण देता है। 1951 के शरणार्थी सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता न होने के बावजूद उन्हें घरेलू कानून के तहत अस्थायी सुरक्षा और बुनियादी अधिकार प्रदान करता है। और प्रत्येक वर्ष जो है इस दिन को एक थीम के तहत मनाया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है शरणार्थियों के साथ एकजुटता। गैर सरकारी संगठन और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां मानवीय सहायता, शिक्षा और आजीविका सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हालांकि व्यापक घरेलू शरणार्थी कानून के अभाव के कारण चुनौतियां बनी हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभार शरण चाहने वालों के साथ जो है वो असंगत या मनमाना व्यवहार भी होता है।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में बात हो रही थी विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में, तो बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इस दिन की नींव 1951 के शरणार्थी सम्मेलन में पड़ी। इस सम्मेलन में पहली बार शरणार्थियों के अधिकारों और उनके संरक्षण को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि तैयार की गई थी। 20 जून से पहले कई अफ्रीकी देशों में अफ्रीका शरणार्थी दिवस मनाया गया था, जो कि काफ़ी लोकप्रिय था। इसी से प्रेरित होकर इसे वैश्विक स्तर पर मनाने का विचार किया गया। 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। इसके तहत 1951 के शरणार्थी अभिसमय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 20 जून 2001 को पहली बार आधिकारिक रूप से विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया। यह दिन युद्ध, हिंसा और उत्पीड़न के कारण अपने देश से भागने वाले और शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताने वाले लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। और श्रोताओं, इस दिन को मनाने के बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों के बीच भी जीवित रहने और नई शुरुआत करने वाले शरणार्थियों की अदम्य इच्छा शक्ति और जज्बे को सलाम करना, आम लोगों को इस बात से अवगत करवाना कि क्यों इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए अपना मूल देश और घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। शरणार्थियों की सुरक्षा और उनके मानवाधिकारों और उनके पुनर्वास के लिए विश्व स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और आवश्यक संसाधन जुटाना भी इस दिन का उद्देश्य है। समाज में शरणार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करना भी इसी दिन का उद्देश्य है।

श्रोतम, कल यानी कि 21 जून को हम सब मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। लेकिन एक बात आपको जानने की ज़रूरत है कि योग केवल एक दिन का आयोजन नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक पद्धति है। इसे अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाकर आप मानसिक शांति, ऊर्जा और शारीरिक संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपको योग करना चाहिए क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। योग के लिए दिन का सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त यानी कि सुबह का होता है। यह मन को शांत और दिन को ऊर्जावान बनाता है। रोजाना केवल 15 से 20 मिनट का अभ्यास भी आपको बड़े फायदे दे सकता है। शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुसार आप हठ योग, विनायक

या सिर्फ ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। सप्ताह में 2-3 दिन योग करने से बेहतर है कि आप इसे रोज़ कुछ समय के लिए अपनी दिनचर्या में शामिल करें और सही समय पर नियमित रूप से योग करें। योग करने से श्रोताओं बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप रोज़ाना योग करते हैं तो कोर्टिसोल यानी कि जो तनाव को कम करता है वो हार्मोन जो है आपका एक्टिव हो जाता है और आपकी मानसिक स्पष्टता बढ़ती है, आपको मानसिक शांति भी मिलती है। नित्य अभ्यास करने से मांसपेशियों में मजबूती और शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है। तो श्रोताओं उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी अपने जीवन का एक अहम हिस्सा योग को बनाएंगे और नित प्रतिदिन इसे अपनी दिनचर्या में शामिल कर अपने और अपने अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखेंगे।

और श्रोताओं, आज के सुबह सवेरे कार्यक्रम में बस इतना ही। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और दीजिए इजाज़त कार्यक्रम को यहीं समेटने की। नमस्कार।

सुबह सवेरे कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। अब से थोड़ी ही देर के बाद ठीक 8 बजे आप सुनेंगे समाचार। समाचार पहले हिंदी में होंगे, उसके बाद 8:15 पर अंग्रेजी में होंगे, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: का प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय।

कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान,
3: पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18

0: 7,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रेड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दासगुप्त के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 8 से 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
4: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

0: और अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति, आवाज एक बार फिर से बाली शर्मा और साथियों की।
1: हियर यू

हेरिया मैं सब जानू कि थारे घर में कमी नहीं से धन में आपस में करें शर्म सगिया की।

लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बाली शर्मा और साथियों को। इसके साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सब रस।

कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सिर्फ तुम फिल्म के गीत के साथ, आवाज कुमार सानू और अलका याग्निक की है, बोल हैं समीर के।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी।

का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हमसफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।

आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है और श्रोताओं, अब जो कार्यक्रम आप सुनेंगे उसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। उसके बाद सबरस कार्यक्रम का शेष भाग फिर से सुनवाया जाएगा।

चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। ये है प्रोग्राम म्यूजिकल दिल लगी और मैं हूँ आपके साथ भावना।

सुबह की लाली में खुशियों को तू लुटाता चल, हर सुबह ठंडी हवा में अहम का ताप घुलाता चल, हर सुबह पंछी के सुर जैसी उम्मीद को जगाता चल, हर सुबह नीले आकाश से फैलाव को पाता चल, हर सुबह कोई एक नेक काम कर, हर सुबह अपनों के दिल में अपनी जगह बनाता चल, हर सुबह अपनों के दिल में अपनी जगह बनाता चल।

0: जगह पे गवर्नेंस के अराउंड का बात हो सकता है कि जनरल आपको अपना म्यूनसिपैलिटी को अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, आपको अपना रेवेन्यू कैसे कलेक्ट करना है। प्रॉपर्टी टैक्सेस तो आप कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन पानी की व्यवस्था का पैसा आप कलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, कचरा जो उठाने का जो पैसा है वो आप कलेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, या फिर आपके पास में प्रॉपर व्हीकल होना चाहिए कचरा उठाने के लिए वो आपके पास में है कि नहीं, या फिर जिस टाइप का आपको कॉन्वर्जेशन करना है, बात करना है लोगों से, वो बात करने के पॉइंटर्स आपके पास में है कि नहीं, आप ये समझते हैं क्या कि उससे एक्चुअली में पब्लिक हेल्थ या फिर जो सामाजिक स्वास्थ्य है उस पर असर क्या पड़ता है वो आपकी समझ में है कि नहीं। तो ये जो कैपेसिटी का जो गैप है ये एक बहुत बड़ा गैप है जिसमें कई सारे अलग अलग तरीके के वैज्ञानिक माध्यमों को इस्तेमाल में लिया जा सकता है। जैसे एक जो बहुत ही प्रोमिनेंट या फिर मैं बोलूंगा कि बहुत ही जो आम तरीका है वो है कि अब बहुत ही इंटेंसिवली लोगों से बात करना सबसे पहले शुरू करें, क्योंकि अभी तक ऐसा होता है कि लोग बिजली पे बात करते हैं, कभी भी बिजली चली जाती है वो एक कॉन्वर्जेशन का टॉपिक है, लेकिन पानी इतना बड़ा कॉन्वर्जेशन का टॉपिक नहीं है, कचरा इतना बड़ा बात करने का टॉपिक नहीं है। हमने कितने लोगों ने देखा कि चार लोग साथ में बैठ के ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आई थिंक पहली बात तो ये है कि वो बात शुरू करना बहुत जरूरी है, एंड जब बात शुरू होगी तो धीरे धीरे बात स्केल पे होगी। दूसरा चीज ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका लोकल जो प्रबंधन है उसकी आप कैपेसिटी या उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और तीसरी चीज जो मुझे लगता है सर जो कि बहुत ही जरूरी है जो हमारे किसी के भी अभी हाथ में नहीं है वो है कि हम किस तरीके से इन म्यूनसिपैलिटी को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप स्टेट की तरफ से आपको ग्रांट मिलता है जो आपका कुछ टाइड ग्रांट होता है जिसमें आपको एक सेट एक्टिविटीज करनी होती है, देन उसके अलावा म्यूनसिपैलिटी कई जगह पर अपना खुद का पैसा जनरेट करती है। कई जगह पर आजकल म्यूनसिपैलिटीज आपके जो बॉन्ड्स हैं जैसे प्लास्टिक के आपके क्रेडिट्स होते हैं या फिर आपके कार्बन के क्रेडिट्स होते हैं या म्यूनसिपल बॉन्ड होते हैं, इन सब चीजों को भी अब म्यूनसिपैलिटी धीरे धीरे देखना शुरू कर गई है। पर जो डिफरेंस है वो कई बार इंफॉर्मेशन और नॉलेज का भी है कि यहाँ पे यदि कोई एक चीज है उसको उतार के जमीन पे ले जाने के लिए कौन है। वहां पे आई थिंक ये जो संस्थाएं हैं या फिर जो नागरिकों के ग्रुप हैं ये एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं।
1: इस तरह की संस्थाओं का जो इस क्षेत्र में कार्य कर रही है और जो स्थानीय नागरिक हैं उनकी सहभागिता बहुत जरूरी है। आपने एक बात बताई कि सबसे पहले संसाधन की भी जरूरत है, संसाधन सिर्फ सरकार पर ही निर्भर है, तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में और कारपोरेट सेक्टर को आना होगा या लोगों को खुद ही कंट्रीब्यूट करना होगा। ऐसी स्थिति में बात आती है कि वेस्ट टू रिसोर्स की या जो वेस्ट टू वेल्थ की बात करते हैं कि जो कचरा है जो गार्बेज सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उससे किस तरह से एक संसाधन निर्मित किया जा सकता है। ये अवधारणा बहुत जगह देखी गई है महानगरों में, खास करके दिल्ली के हाईराइज सोसाइटी में और जो बेंगलोर की सोसाइटियों में कुछ सफलताएं हैं। आप चूंकि एक मध्यम शहरों में काम करते हैं, आप एक दूर दराज के क्षेत्रों में भी काम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जिस तरह के काम करते हैं उसमें इस कंसर्न को किस तरह से एक लाभदायक रूप में लाया जा सकता है?
0: तो सर वेस्ट टू रिसोर्स या फिर हम बोलें कि जो गंदा पानी है उसको फिर से इस्तेमाल में लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुत ही जरूरी चीज है यदि हम जलवायु प्रबंधन की बात करें। लेकिन जैसे आप छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन या शहरों की बात करते हैं तो अभी छोटे और मध्यम वर्ग के जो शहर हैं वो तैयार नहीं है सर इस टाइप का एक वार्तालाप शुरू करने के लिए। तो जैसे आप देखेंगे कि छोटे शहरों में मध्यम वर्गीय शहरों में अभी पूरी तरह से कचरा ही कलेक्ट नहीं हो पाते। आप देखेंगे कई जगहों पर ऐसा ब्लैक स्पॉट होता है जहाँ पे आपका कचरा पड़ा होता है, पूरा कचरा अभी आपके फैसिलिटीज में ही नहीं पहुंचता है। बहुत सारा कचरा आपका वेस्ट लेगेसी वेस्ट का साइड पे चला जाता है जहाँ पे वो फिर 10-10, 15-15 साल तक पड़ा रहता है। उसी में आप यदि गंदे पानी का भी बात करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अभी भी छोटे और मध्यम वर्गीय शहर हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटी ही अभी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो जब तक हम
1: मुझे लगता है कि इस तरह के शहरों में लोग एक अपने मकान में ही एक हाउस भी बना लेते हैं, ठीक है, जो उनके वॉशरूम से रिलेटेड सारे पानी और जो,
0: तो ये सोसाइटीज में ज्यादा है। यदि आप एक निजी घर की बात करें तो एक निजी घर ज्यादातर तरीके पे अभी भी म्यूनसिपैलिटी की सर्विस पे ही अटका है। लेकिन जैसे आप ये अपार्टमेंट की बात करेंगे जो आजकल छोटे शहरों में भी पहुंच रहे हैं तो इनके खुद के ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, इनका खुद का कचरा कलेक्ट करने का फैसिलिटी होता है। ये लोग अपने कचरे को अपने वेस्ट को किसी न किसी तरीके के रिसोर्स या किसी न किसी तरीके के उसमें कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। तो पहला जो मेरा जो पॉइंट रहेगा सर इसमें वो ये है कि अभी हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय शहर तैयार नहीं है लेकिन जरूरत आ चुकी है। तो हम जितना इसमें डिले करते जाएंगे शहर या जितना इसको देरी करते जाएंगे उतना ही जलवायु की परिस्थिति और खराब होती जाएगी। जैसे आप यदि असम जैसे एरिया की बात करें जहाँ पे पानी फ्लडिंग बहुत ज्यादा होता है, अब यदि फ्लडिंग बहुत हो रहा है

0: आप देखते हैं कि शहरों में पानी भर रहा है और यदि आपका गंदा पानी ट्रीट नहीं हो रहा है या वो इधर उधर फैल रहा है तो वो आपके फ्लडेड वाटर के साथ में मिक्स होगा और वो आम जनता के गलियारों में, घरों के आसपास में पड़ा रहेगा। उसमें ईकोलाय, अलग अलग बैक्टीरिया, मच्छर, अलग अलग टाइप की बीमारियां उससे पैदा होती रहेंगी। तो जब तक हम अपने कचरे को और अपने वेस्ट वाटर को सबसे पहले कंटेन करके ट्रीट नहीं करते तब तक हम वेल्थ और उसके कॉन्वर्जेशन पे नहीं जा सकते और छोटे और मध्यम वर्ग के टाउन अभी उसको कंटेन करने में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा जो चीज सर एक और पॉइंट में रखना चाहूंगा वो है कि जब हम वेस्ट टू वेल्थ या वेस्ट टू एनर्जी या फिर वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट या यूज्ड वाटर का भी बात करते हैं तो अभी जिस टाइप का काम हम लोगों ने सबने लेके रखा है वो काम भी बहुत ही थोड़ा सा टोकन की तरह से ज्यादा चल रहा है रादर देन एक एक्चुअल काम की जगह वो थोड़ा चेक मार्क की तरह से ज्यादा चल रहा है। तो जैसे आप प्लास्टिक का देखेंगे तो प्लास्टिक क्योंकि उसका जरूरत बहुत हाई है, प्लास्टिक में आप देखेंगे कि वेस्ट टू वेल्थ का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से
1: चल रहा है और खास करके उसमें जो लोकल में कहें कबाड़ी जो करते हैं
0: वो भी उसमें इनफॉर्मल सेक्टर
1: वो उनके लिए बहुत हेल्प करते हैं, कलेक्ट करने में, स्टोर करने में और एक एजेंसी तक पहुंचाने में,
0: क्योंकि उसके अंदर एक वैल्यू है, उसके अंदर उनको पैसा मिलता है। लेकिन जैसे आप प्लास्टिक को छोड़ के बाकी वेस्ट का बात करें तो उनके लिए अभी भी उस टाइप का वेल्थ का प्रबंधन वेल्थ के अराउंड होना चाहिए कि अभी वेल्थ कैसे जनरेट होगा। प्लास्टिक में तो है लेकिन बाकी वेस्ट की स्ट्रीम में नहीं है। तो ये भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें दूर से देखने में लगता है कि हाँ वेस्ट टू वेल्थ की बात हो रही है लेकिन आप जितना अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि हम एक सर्टेन टाइप ऑफ वेस्ट का ही बात कर रहे हैं या हम एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइप ऑफ यू नो वाटर का यूजेज का बात कर रहे हैं। तो ये भी कुछ चीजें प्रॉब्लम बनती है।
1: आपने जो है एक बहुत ही उच्च संस्थान से अध्ययन किया हुआ है और वो भी मैनेजमेंट के, रूरल मैनेजमेंट के, और रूरल डेवलपमेंट के लिए एक भारत सरकार का अलग से मंत्रालय है जो इस क्षेत्र में कार्य करता है। आपने जब इस संस्था की स्थापना की जो आप फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट की बात करते हैं तो इसका आइडिया आपको कैसे मिला, आपको क्या इसकी जरूरत लगी और इसमें आपका अनुभव क्या है कि आपने किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल क्षेत्रों में गए हैं तो आपको क्या फायदा या कमियां देखी है?
0: पिछले 10 साल से मैं डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहा हूँ तो मैंने जब अपना काम करना शुरू किया था तो मैंने रूरल सेक्टर में ही काम शुरू किया था एंड रूरल में हम उस टाइम पे बहुत ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे थे। जैसे आप देख रहे थे कि उसी टाइम पे स्वच्छ भारत मिशन भी आया था जिसने शौचालय को लेकर एक बहुत बड़ा मुहिम क्रिएट किया था। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं काम करता गया मैं रूरल से फिर थोड़ा अर्बन शहरी इलाकों की तरफ मैंने काम देखना शुरू किया और मुझे ये रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं छोटे शहर, मध्यम शहर और रूरल की जो प्रॉब्लम है उनको आप एकदम अलग नहीं कर सकते क्योंकि आपके छोटे शहरों के पास में ही पूरे गांव बसे हुए हैं, मध्यम वर्गीय शहरों के पास में गांव बसे हुए हैं। गांव की बाउंड्री वैसे म्युनिसिपल बाउंड्री वैसे तो डिफाइंड है लेकिन कचरा यदि शहर का कचरा उसी गांव के या फिर बीच के एरिया में फेंक दिया जाता है तो वहां से हम लोगों ने ये चीज को समझना शुरू किया कि यदि आपको भारत में पानी की या आपको कचरे की व्यवस्था को सही करना है तो आप इसको शहर और गांव में पूरी तरह से अलग नहीं कर सकते यदि आप छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों का बात कर रहे हैं। फिर जब हमने थोड़ा फोकस करना शुरू किया छोटे और मध्यम वर्गीय शहरों के ऊपर, जैसे हमने पहले भी बात करी, हमें ये सब समझ में आने लगा कि छोटे शहरों में बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है लेकिन छोटे शहरों में उस पॉपुलेशन के हिसाब से फैसिलिटी नहीं बढ़ रही या उनके पास में रिसोर्स नहीं बढ़ रहे या कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। तो एक जो बड़ा, और आप आसपास में देखेंगे तो बहुत सारे जो संस्था है वो अभी भी बड़े बड़े शहरों में काम करती है क्योंकि टीयर टू टीयर थ्री में ज्यादातर क्या होता है कि विजिबिलिटी नहीं होती। जैसे आप कोई चीज यदि दिल्ली में करेंगे, बंबई में करेंगे तो आप उसको 4 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी दिखा सकते हैं, 4 प्राइवेट लोगों को अलग से भी दिखा सकते हैं। वही चीज को आप यदि एक बहुत ही रिमोट से छोटे शहर में करेंगे तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाती है। प्लस क्या होता है कि आप कोई भी सीएसआर काम करना चाहता है तो वो चाहता है कि भाई सरकार आपकी एक्टिवली वहां पे काम करे। तो स्टेट गवर्नमेंट के साथ में काम करना, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करना आसान है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, म्युनिसिपैलिटी के साथ में काम करना, मेयर्स के साथ में काम करना ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उनके साथ में काम करने के लिए आपको उनका लोकल कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको उनकी लोकल परेशानी को, तो प्लानिंग से लेके मॉनिटरिंग से लेके सब कुछ डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको उसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। तो वो सब चीजों की वजह से भी हमने देखा कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग इन सब एरिया में काम नहीं कर रहे। तो इसलिए हमने सोचा कि बिकॉज यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम आज नहीं है लेकिन आज से 10 साल में आपको और दिखेगा। सबसे बड़ी चिंता जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ता हुआ शहरीकरण ही। हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि गांव प्रदेश से लोग बाग शहरों की तरफ और बढ़ना शुरू हो गए हैं। हम शहरों में भी देख रहे हैं कि कैसे 10 मिनट की सर्विसेज और तेजी से बढ़ेंगे। तो जिस तरीके का शहरीकरण हो रहा है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न है सर। और इसी शहरीकरण के साथ में कई जगहों पे बहुत ही अत्यधिक वर्षा देख रहे हैं, कई जगहों पे हम कई लंबे सूखा देख रहे हैं। तो इन सब चीजों का यदि मैं एक इम्पैक्ट यदि देखता हूँ तो विकास के ऊपर भी, स्वास्थ्य के ऊपर भी और आपकी आजीविका के ऊपर भी पूरी तरह से दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ में एक दो चीजें थोड़ी अच्छी हो रही है। छोटे शहरों में जल प्रबंधन को लेकर जागरूकता बढ़नी शुरू हो गई है। बहुत सारे आपके जो वर्षा जल के, यदि मैं संचयन की बात करूं या फिर मैं आपके अपृष्ट जो आपका जो खराब जो जल है उसको फिर से कैसे उपयोग में ले उनकी बात करूं तो इसके अराउंड साइंटिफिकली भी और मेंटली भी दोनों तरीके से, कि एक आपके विचारधारा के तरीके से भी और एक आपके वैज्ञानिक तरीके से भी एक प्रोग्रेस हुई है, लोग इसको थोड़ा इम्पोर्टेंस भी देने लगे हैं, लोग इसके बारे में जागरूक भी होने लगे हैं और लोग इसको समझना भी शुरू करने लगे हैं। तो मुझे इस चीज से एक आशा मिलती है कि यदि हम जिस टाइप की स्कीम्स वो हैं, यदि हम उनको छोटे शहरों में उनके लोकल स्रोतों के अराउंड, उनकी लोकल परेशानियों के अराउंड या फिर उनके लोकल जो रहने सहने के तरीके हैं उनके अराउंड यदि हम सॉल्यूशंस को थोड़ा बिल्ड करेंगे और म्युनिसिपैलिटी को, जो आपके छोटे शहरों की या मध्यम वर्गीय शहरों की म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनको हम एक सही कैपेसिटी और थोड़ा बहुत उनको फाइनेंस मोबिलाइज करने के तरीके, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल में हमारी परिस्थिति उतनी बुरी नहीं होगी जितनी हमें शायद आज देख के लग रही है।
1: असीम जी, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: बढ़ते शहरीकरण के दौर में जल स्वच्छता और सतत विकास, अभी आप असीम आचार्य, सह संस्थापक फाउंडेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैबिटेट्स, कार्यक्रम निदेशक एवं सलाहकार बोरडा से दिलीप झा की ये बातचीत सुन रहे थे। और इसी के साथ धरती आकाश का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाई का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। अब श्रोता सुनेंगे सबरस कार्यक्रम का शेष भाग।

श्रोताओं, थोड़े से बदलाव के साथ हम अपनी दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि एक छोटा सा बदलाव है सुबह उठने की आदत के बारे में। अगर आप देर से उठते हैं तो आपको बदलाव लाना है कि आपको अब सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि सुबह का जो समय होता है वो शोर शराबा और दैनिक भाग दौड़ उस समय कम होती है, जिससे आपका मन शांत होता है और इस समय तनाव भी बहुत कम होता है। और जल्दी उठने से आप काम जल्दी शुरू करते हैं, और जब जल्दी काम शुरू करेंगे तो आपके काम जल्दी निपट जाएंगे। तो इस तरह से आपको दिन में आराम के लिए समय मिल जाता है, जिससे एकाग्रता जो है काम के प्रति वो बढ़ती है। आप आराम से उठकर व्यायाम कर सकते हैं और पौष्टिक नाश्ता तैयार कर सकते हैं, जो कि दिन भर की ऊर्जा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सुबह जल्दी उठने से रात में

सही समय पर थकान होती है जिससे आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। इस आदत से आप जीवन में सकारात्मकता और मानसिक स्थिरता महसूस करते हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं कि हमारे सभी श्रोता तो जल्दी उठते ही होंगे, क्योंकि देखिए उन्हें अपना काम करके हमारे कार्यक्रम भी सुनने होते हैं। और जो श्रोता देर से उठते हैं या जिन जिन्होंने इस आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रखा है, उनसे भी हम उम्मीद करेंगे और यही अनुरोध करेंगे कि वे भी कल से सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे।

0: जब व्यापार के प्रचार की हो बात तो अपनाएं आकाशवाणी का साथ। हर दिल, हर घर और हर जन, हर वर्ग को जोड़ने का है साधन। विश्वसनीय, असरदार और हम सब का हम सफर आकाशवाणी रोहतक है सदा तत्पर। हमारी आवाज आपका प्रचार, हो जाएं समृद्ध होने को तैयार। अपने ब्रांड को विज्ञापन के जरिए जन जन पहुंचाने के लिए आज ही संपर्क करें आकाशवाणी रोहतक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: मुझे प्यास नहीं लगती।
5: बाप रे।
4: सारा

त्याग के फिर संसार को प्राणी बन में बस जाना, यदि फिर भी तू फिरे दिल को था तो रक्षा।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: श्रोताओं, आजकल लगातार चीजों को भूलना या किसी बात पर ध्यान ना लगाना या ना लगना बहुत ही आम समस्या हो गई है, और यह आज की भागदौड़ भरी जिंदगी लगातार स्क्रीन के बढ़ते इस्तेमाल और बढ़ते तनाव का ही एक परिणाम है। हम बहुत सारी चीज़ों को अक्सर भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, और कई बार तो हम ऐसी चीज़ों को भूल जाते हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत की होती हैं। और भूलने का मुख्य कारण होता है तनाव या चिंताएं। जब हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, तो हम अक्सर दूसरी चीज़ों को भूल जाते हैं। अगर आप कम नींद लेते हैं या आपकी नींद ख़राब होती है तो इसका भी आपकी याददाश्त पर सीधा असर पड़ता है। लैपटॉप या स्क्रीन पर लगातार रहने से भी दिमाग को आराम नहीं मिलता, जिससे भी हमारा ध्यान भटकता है। और अगर शरीर में पोषण तत्वों की कमी हो तो भी इंसान की भूलने की समस्या बनी रहती है। तो श्रोताओं, अगर आपको अपने भूलने की आदत को कम करना है तो इसके लिए आपको कुछ सावधानियां रखनी होंगी। जैसे कि आपको एक रूटीन बनाना होगा अपने हर काम के लिए। आप डायरी लिख सकते हैं या फ़ोन में नोट कर सकते हैं अपने ज़रूरी काम को, तो इस तरह से आप अपने काम को भूलेंगे नहीं। और पर्याप्त मात्रा में नींद लें, स्क्रीन से ब्रेक ज़रूर लें। श्रोताओं, हम आपसे बार बार अपने कार्यक्रमों के माध्यम से यही अनुरोध करते हैं कि स्क्रीन से थोड़ी दूर अगर आप बना के रखते हैं तो अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा एक्सरसाइज, योग, व्यायाम करें, इससे भी आपकी याददाश्त जो है वो दुरुस्त बन सकती है।

रोटी कपड़ा और मकान इस फिल्म के गीत के साथ ही हमारा आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10 बजने वाले हैं। अब समय है समाचारों का। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद 10:05 पर अंग्रेजी में रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू से ही बढ़त बनाए रखी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves Santali Jehera and Ho Jehera Skill Center and Pahadpur school. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Bengal Divas, West Bengal Day, celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Bengal Divas today. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. As part of the celebrations, the Ministry of Culture will organize special International Day of Yoga events at 100 iconic locations across the country, bringing together India's rich cultural heritage and yoga traditions. The main national celebration of IDY 2026 will be held at Kolkata's historic Red Road under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, where he will lead the nation in the common yoga protocol. The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. U.S. Special Envoy Steve Witkoff is traveling to Switzerland as preparations continue for a new round of talks between the United States and Iran. According to media reports, the negotiations are expected to focus on a possible nuclear agreement following the recently announced Memorandum of Understanding between the two countries aimed at ending hostilities in West Asia. In men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. Meanwhile, fast bowler Harshit Rana has joined the Indian squad for the final ODI after

0: recovering from a knee injury. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in the opening Group C fixture. The victory lifts the South Americans to the top of the group on goal difference. Earlier today, Morocco secured a 1-0 victory over Scotland in their Group C match. Morocco took the lead in the very first minute through Ismail Saibari and held on to that advantage until the final whistle. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार प्रातः के 10:10 और 16 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। एफएम बैंड 103.5 मेगाहर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का रिले। हमारी दूसरी सभा में दिन के 12:30 पर मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 262.64 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर डीटीएच और न्यूज़ ओनी आईआर पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन के 12:30 और 20 सेकंड हुए हैं। हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब शुरू होते हैं। आरंभ कर रहे हैं लोक संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी से।
1: कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी सुनने वाले सारे बाण भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाइयो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे धर्मवीर व साथियों के गायो रागनीते पसंद भेजनिया आप सब आदर्श गांव बलियाली से हैं दर्शनलाल बंसल, सुदेश रानी, प्रवीण कुमार, ममता, कमल कुमार, करविश और इनका समस्त परिवार। गांव चौधरीवास से हैं राजू अग्रवाल, केशव, दक्ष, प्रयाग, प्रियांशी, विवेक, प्रीति और इनका भी समस्त परिवार। गांव लुदेसर से हैं पप्पूराम गाट, संतोष देवी, लक्ष्मी देवी, प्रियंका देवी, साक्षी, रुचिका और इनके बहुत सारे साथी। फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, मनमीत, मनविंदर पांधा, गोलू काकू, जी एस रामगढ़िया और उनके बहुत सारे साथी। गांव कायला से हैं प्रकाशन बोकल, पुनीत कुमार, अजीत सिंह, संदीप सक्षम, मुनीलाल, राम कुमार, प्रिंस और उनके बहुत सारे साथी। तो सुनो भी अपनी पसंद पर धर्मवीर साथियों की गायोड़ ये रागनी।

और वे कार्यक्रम की अगली पेशकश रहेगी नरेश बुटानिया व साथियों के गाई और रागनी की। पसंद भेजनिया आप सब रावण करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा सोमनाथ कालिया, दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा, गांव पांडू पिंडारा जिला जींद से पसंद भेजना है बादल सिंह गिल, कमलेश गिल, टीनू प्रीति, डॉक्टर अंकित गिल व डॉक्टर वाणिका, और गांव केड़ंगा से हैं मास्टर सुंदरपाल कौशिक देबू परी और इनका समस्त परिवार, जिला रोहतक में गांव चुलाना से हैं मास्टर रामचंद्र रोहज रामफल सुरजा हेमचंदर और इनके बहुत सारे साथी, गांव सांगवान से हैं शमशेर गुजर पालाराम पवन कुमार मुंशी भूप मास्टर बलजीत और इनके बहुत सारे साथी, गांव फरासी से राजकुमार डूडी सरजीत सिंह प्रमोद कुमार सौरभ, गांव द्वारका से शमशेर सिंह और इनका समस्त परिवार, जिला जींद में गांव दोरड़ से पसंद भेजना है श्रीराम चहल वीर सिंह कलम फौजी हरिचंद बिरागी दया किशन बिरागी पंडित महासिंह पंडित जिलेश सिंह और रामपाल राममेर और इनके बहुत सारे साथी, गांव पांडवान से पसंद भेजनिया हैं बबलू दर्शन सिंह मनिंदर कुलदीप सांगवान प्रदीप सांगवान राजबीर ओम प्रकाश गांधी संजय और इनके बहुत सारे साथी। तो सुनब अपनी पसंद पर नरेश भूटानी व साथियों की गायो ये रागनी।

0: और वे कार्यक्रम की अगली भेंट रहेगी महावीर कौशिक व साथियों की गायी और रागनी की। पसंद भेजनिया आप सब लोको कॉलोनी लोहारू से हैं बिलू सिंह चिंडालिया, सुरेंद्र कुमार, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और लक्ष्मी देवी। गांव बिरोड़ी जिला जींद से पसंद भेजना है सुरेंद्र सांगवान, अंकित, सचिन, पवित्र, पावनी, अमन, नीरज, मोहित, करमपाल और इनके बहुत सारे साथी। गांव बाणा ब्राह्मणान से हैं मेघराज शर्मा, गौरव, सौरव, विजय, जितेंद्र, अजय, जोगेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव लाठ जिला सोनीपत से हैं केशव, नमन, अनवी, अवि, पंडित कपूर सिंह कौशिक, कृष्ण कुमार, राजेंद्र, खेतुराम, मांगीराम प्रजापत, जय भगवान, यशवंत, बिलू सुपारी, रमेश मास्टर, अतुल मास्टर, राज सिंह, सतीश, सुनील और इनके बहुत सारे साथी। गांव बागौत जिला महेंद्रगढ़ से पसंद भेजना है प्रकाश अंबावत, सुबेदार खेमचंद्र, जयदयाल, ओम प्रकाश, बलबीर सिंह, वेद सिंह, नंद किशोर और उनके बहुत सारे साथी। गांव चौटाला से दारा पंडित, संजय शर्मा, दीवानशु जोशी, बुलबुल, पुनीत। गांव जिंजर कला से माशे सतबीर शर्मा, कौशल्या बाला और उनका समस्त परिवार। कस्बा जुलाना से हैं पंडित महावीर शास्त्री और उनके बहुत सारे साथी। गांव लोहारी जाटू बिवाणी से रामफूल शर्मा, हरिराम शर्मा, हरकिशन शर्मा, साधुराम, मदन सिंह, नौरंग, अरिराम प्रजापत, अवासिंह बड़सीवाल, शेरा, रामधारी शर्मा। गांव शिवाड़ा भिवाणी से दया शर्मा, जापान, ऋषि और उनके बहुत सारे साथी। गांव अजायब जिला रोहतक से पसंद भेजनिया हैं ऋषभ देवनैन, सुबेदार मामन सिंह, सावित्री देवी, रिया, सरस, नरेंद्र, दवित, अंजलि, सागर, वीरेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। तो सुनो वे अपनी पसंद पे महावीर कौशिक व साथियों की गायी ये रागनी।
1: ये रवा सोवे थी अपनी मां

मेरी छाती वाला ये कर दी, ऐसे हो गया सीना सरद, ऐसे हो गया सीना सरद, जैसे मारे दी बेचारी रा।

और वह कार्यक्रम की आखिरी पेशकश रहेगी एक हरियाणवी फिल्मी गीत की, जिसके गायक कलाकार होंगे भूपेंद्र व दिलराज कौर। पसंद भेजनिया आप सब दुर्गा कॉलोनी आशीषें हैं राजू मिगलानी, बबीता, मनु, सुभाष, सुशील, बब्बू डब्बू, कनेरा मोहल्ला पटियाला से। पसंद भेजनिया हैं मुकेश भत्या, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश और इनका समस्त परिवार। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से मीका, विर्क, बलविंदर, जयतेग, हरदेव और इनके समस्त साथी। महेंद्रगढ़ से हैं विकास गांधी, ममता, वंश, दिया, नोनू, शगुन, विक्की और इनके बहुत सारे साथी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित, साहिल और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव शिवानका से हैं रामबीर बैरागी, आवाज सिंह दलाल, दिलबाग नंबरदार और इनके बहुत सारे साथी। द्रौली खेड़ा गांव से हैं दिलबाग शोकंद, आवाज सिंह शोकंद, सत्यवान और इनका समस्त परिवार। गांव ग्यासरी उर्फ गादी यूपी से पसंद भेजनिया है कांशीराम दलाल, बलदेव सिंह आर्य, रामपाल, दयानंद, धर्मवीर, नितिन, अर्पित, अरियोम, ओमपाल और इनके बहुत सारे साथी। गांव बुटाना से हैं महावीर शर्मा, भरत शर्मा, सुरेश, बलवान, रामकर्ण, सत्यनारायण, आज़ाद, सुरेंद्र, रामस्वरूप, सुभाष, रमेश और बहुत सारे साथी इनके। और माधवनपाना जोजू कला से हैं विनोद कुमार प्रजापत, अंकित, प्रिया, तनीषा, दीपक, अनिल, सोनू और जज्जर से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा, मयंक, रजत और इनके बहुत सारे साथी। डाबर कॉलोनी भिवानी से रमेश शिवानीवाल, सौरभ और लाल मस्जिद भिवानी से हैं संयम पोपली, दृश्य, समर, परवीन, अमित, ज्योति, तुलसी, गीता, दीक्षा और निश्चित रहेजा। बटिंडा रोड डबवाड़ी से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित और इनका समस्त परिवार। हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जेएस नायक, शोभा नायक और इनका समस्त डागला परिवार। तो सुनो भी अपनी पसंद पे ये हरियाणवी फिल्मी गीत।

0: और वैसे हरियाणवी फिल्मी गीत के साथ है कार्यक्रम का समय समाप्त। चाल रहे सारे बन भजन राम राम।
1: आपने सुना कार्यक्रम पसंद अपनी अपनी, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दिन का 1 बजने वाला है, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके बाद 1:05 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। फिलहाल हिंदी समाचारों का वक्त है, तो चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरी बाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,800

0: 80 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियाँ पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्व भर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप गुरजीत कौर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाद दोपहर हुगली जिले के तारेक्षवर से 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत 9 करोड़ 44 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाली जाएगी। 23वीं किस्त में 2 करोड़ 18 लाख से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। योजना के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए डाले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
2: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। ये राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
2: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के गुरुग्राम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा भी प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने मुख्य अतिथि तथा गुरुग्राम के विधायक श्री मुकेश शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर विज्ञान भवन से प्रधानमंत्री के संबोधन और राष्ट्रीय कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों ने भी भाग लिया। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह ने प्रोत्साहन राशि वितरण से पूर्व अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना देश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि उद्योग और श्रम एक दूसरे के पूरक हैं। यदि उद्योगों का विस्तार होगा तो रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और कुशल श्रमिकों की भागीदारी से औद्योगिकी की प्रगति भी सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रोजगार आधारित विकास मॉडल और विशेष बल दिया जा रहा है, जिसमें ये योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मौसम विभाग ने चंडीगढ़ और हरियाणा में आज से 22 तारीख के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसी चंचल शर्मा तो प्रति
4: आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गाने।

बुनियाद फिल्म का गीत आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में सुना, और अब कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं।

आक्रमण फिल्म का गीत आपने सुना, किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें थी। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

बरसात की एक रात फिल्म का आपने गीत सुना। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था आरडी बर्मन का। अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया बॉबी फिल्म का गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में गाया हुआ बॉबी फिल्म का गीत आपने सुना। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आहूति फिल्म का ये गीत है। इसे रचा है आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में गाया हुआ आहुति फिल्म का ये गीत था। आनंद बख्शी ने रचा, संगीतबद्ध किया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्मी गीत आप तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अनजान का लिखा ये गीत आपने सुना, फरिश्ता या कातिल फिल्म से। संगीत पद किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगते हैं? आपके विचारों का, सुझावों का, मार्गदर्शन का और सटीक टिप्पणियों का हमारे फोन इन कार्यक्रम श्रोता मंच में स्वागत है। आप हमें इन टेलीफोन नंबरों पर फ़ोन कर सकते हैं, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। इन टेलीफोन नंबरों पर हमें रहती है प्रतीक्षा आपकी फ़ोन कॉल्स के माध्यम से आपके मार्गदर्शन की। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइव प्रसारित किया जाता है। इस बार ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 28 जून को शाम 7:30 बजे। ये थी जानकारी आपके लिए। बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान, पीएम किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अनबन फिल्म का गीत हमने सुना। हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। और अब अगला गीत जानेमन फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें आप सुनेंगे। आनंद बख्शी के बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

जाने मन फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी। श्रोता मंच कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से महीने के अंतिम रविवार को शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक प्रसारित किया जाता है, ताकि आपकी प्रतिक्रियाएं जो हमारे कार्यक्रमों के बारे में हैं, आपके विचार, आपका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हो सके। हमारे टेलीफोन नंबर आप नोट करें, 01262-255-446, 255-447 और 255-448। इस बार का श्रोता मंच कार्यक्रम आप सुनेंगे 28 जून को शाम 7:30 बजे। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गाया हुआ हम शक्ल फिल्म से आपको सुनवाते हैं। अनजान के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में हम शक्ल फिल्म का गीत आपने सुना। ये था आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम का आखिरी गाना आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से। 2 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर के बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। इसके बाद 2:15 पर हिंदी में समाचार होंगे। समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदाय के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रंगरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, उड़ीसा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण माझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा और जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी

0: बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद गृह मंत्री इचल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।

0: यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते, और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है। वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप खेत खलिहान कार्यक्रम सुनेंगे।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आया खुशियों का पैगाम PM किसान।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली, पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदाता का बढ़ता मान, पीएम किसान।
3: खेत खलियान कार्यक्रम सुनने वाले सारे बन भाई ने बलजीत भाई की राम राम। भाई देखो, मौसम की बात करें तो मौसम में कल भी थोड़ा परिवर्तनशील बताया था, लेकिन आज धूप धाप थोड़ा ठीक हो रही है और तापमान भी बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आड़े आड़े की बात करें, हमें हर जगह थोड़ा तापमान बदलाव में दिखाई देगा। और 20 तारीख तक का ये बताया जाता, तो आज कितने कितने थोड़ी बहुत बादलवाई ही भी दिखाई दी, कहीं कहीं धूप भी दिखाई दी, और भाई कहीं कहीं हो सकता है बारिश का अणका अंदेशा भी हो जाए। तो मौसम परिवर्तनशील है, इसके हिसाब ने देख के ने जो भी हमने अपने काम दाम, हालांकि धान की हम रोपाई की बात करें तो उसमें तो कोई दिक्कत आंदी नहीं है। बाकी अगर हम बुआरे का कोई काम ठाण की सोच रहे हैं तो उसमें एक दो दिन अपना रुकें, उसके बाद चाहे हमें चारे के लिए ज्वार की बिजाई कर रहे हों

0: बाजरे की बिजाई कर रहे हों या फिर और कोई शी हम बिजाई करने की सोच रहे हों, तो उसमें थोड़ा हाइबर रुकें और रुकने के बाद मौसम थोड़ा खुल जाए, क्योंकि बाल भी है जिस जी छिड़का होया था वो थोड़ी ही आल ठीक से बुआरे के हिसाब की है कि जी तम बाजरा बोसकें या फिर ज्वार बोसकें। चारे की बात करें तो चारे की में वे ज्वार की हम कर सकें हैं काश्ते या फिर स्वीट सुडान घास की, और फिर दूसरी जो मक्का है उसका भी हम ले सकें हैं। लेकिन जो अपनी दूसरी जो फसलें अपनी मूंग की है या बाजरे की है, जो दलहनी और तिलहनी फसलों के शाम मजा अगर हम देखेंगे, तो उसमें जो मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं और जित अपने दौरे पानीपात के साधन कम हैं, तो उस जगह पे हम अपनी मोटी जो फसल है भाई ग्वार है, ग्वारी है, बाजरा है, इस तरह की अगर हम फसल ले लेंगे तो उसमें पानी की भी बचत होगी, खर्चे भी अपने कम लगेंगे, पैदावार भी हमने ठीक ठाक मिल जाएगी। खास तौर पे बात फिर वही आ जाए कि बार बार हमने कहनी पड़े कि भाई पानीपात अगर अपने दौरे सही मात्रा में है, नहरी पानी भी ठीक है और खेत में ट्यूबवेल भी बढ़िया है, उसका पानी भी ठीक ठाक है, तो हम धान लगावें। चोया की भी ऊपर समस्या हो जाए, कई बार कई खेतों में ऐसा होना है कि बहुत सारी जगह अपना चोया ऊपर आ जाए, सेम की स्थिति बन जाए, तो उन इलाक़ों में हम धान की जो है काश्त हुआ कर सके हैं। बाकी अपना दूसरे विकल्प चुने, अरहर का ले सके हैं दलहन में, मूंग का ले सके हैं हमें, और भाई अपने जो सोयाबीन है उसका भी वे बुआरे का समय आ जाएगा, क्योंकि जून के आखिर में या फिर जुलाई के पहले सप्ताह में, और जितनी भी अपनी जो ये खरीफ वाली जो फसलें हैं उनका समय यूँ हो जाए कि या तो मानसून की पहली बारिश आ जाए उसके बाद, या फिर हमारे द्रव पड़ेवे के अगर साधन है तो पानीपात देगा हम थोड़ी ही अगेत में बीज की बिजाई कर सके हैं। इसी प्रकार जो अपनी साग सब्जी वाली फसलें हैं उनमें भी मैं बताओ की बात करें, जो चल रहा है वो अपना ख़त्म होने हो रहा है, और दूसरी हम जो खरीफ की फसल है उसकी रोपाई का बिजाई का नर्सरी में उसका समय, और फिर मूली की बात करें तो मूली में एक किस्म आ जाए पूसा चेत की, जिसने हम पूरा साल कभी भी किसी टाइम भी बिजाई उसकी कर सके हैं, थोड़ा है एक जेठ का महीना थोड़ा छोड़कर बाकी उसकी बिजाई हम किसी मौसम में भी करी जा सके हैं। और अब तो पॉली हाउस का हिसाब किताब आ गया है, पॉली हाउस में हम बेमौसमी जो है सब्जी उगा ले हैं तो उससे हमारी पैदावार में काफ़ी असर पड़ा है और बढ़िया पैदावार हमने मिल जाए है, जिससे बाकी हम उम्मीद करें उससे ज़्यादा हमने अपनी खेती में मिल जाया है। तो ईब तो आजकल कोई सी ऐसी फसल नहीं रह रही है कि हम बेमौसमी ना उगा पाएं, क्योंकि तकनीकी सी आ गई है कि हम कोई सी भी फसल किसी समय भी ले सके हैं। लेकिन जो मौसमी फसलें हैं, भिंडी की बात करें, बताओ की बात करें, या अगेती फूलगोभी की बात करें, तो उसकी हम नर्सरी में बिजाई कर सके हैं, टमाटर की ली जा सके है, मिर्च की ली जा सके है, और भाई अपनी पालक की हम काश्त कर सके हैं, भाई अपने जो बेल वाली सब्जी फसलें हैं उनका भी हमें बिजाई का जो है कर सकें हैं, भी समय है। और जो जो अपना खरीफ की जो फसलें आऊँगी सब्जी फसलें उनकी सारियाँ का बिजाई का समय, लेकिन उससे पहले अपना खेत की तैयारी बाजोत का बढ़िया डाल एक सार कर लें, और सब्जी वाली फसलों में खास तौर पर देखा जाता है पानी निकासी का प्रबंध, वो हमने सबसे पहले करना पड़ेगा, पानी निकासी का प्रबंध करके और उस हिसाब ने देख कर जब हम बिजाई करें, क्यारिया में करें उठी उड़ क्यारिया में करें। तो ये तो अपना साग सब्जी वाली और जो दूसरी फसलें थी उनकी, बाकी आज की जो अपनी चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा पशुधन की देखभाल का, तो भाई चर्चा हम करें उससे पहले भैया का मनोरंजन कराऊंगे, भाइयों को रागनी सुनवाऊंगे और गायक कलाकार होंगे रणबीर सिंह बड़वासनी और उनके साथी।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
3: पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

बेहद अश्विनी भैया ने रागनी, गायक कलाकार थे रणबीर सिंह बड़वाशनिया और उनके साथी। इनकी गायी और भैया ने एक रागनी और सुनवाओगे, लेकिन जो जिक्र कराया था वो अपना पशुधन की देखभाल का, क्योंकि वे मौसम ईसा चल रहा है, परिवर्तनशील है और बीच बीच में तो इतना तापमान बढ़ है कि 43 तक तापमान पहुँचा है, 44 तक पहुँचा है, कहीं कहीं जगह 45 तक भी तापमान पहुँचा है। तो ऐसे में अपना भी और पशुधन का भी बार बार ये बताया जाए कि भाई ठीक तरीके से हमने ध्यान रखना चाहिए। और पशुओं का तो ऐसा है कि भाई गर्मी बहुत ज़्यादा लग गया है, खाने पीने की वजह से भी शरीर भी थोड़ा ऐसा हो गया है, और फिर आदमी है तो गर्मी लग गई जिसे टाइम पर अपना नहा धोवाई कर ले है, लेकिन पशु का ऐसा भाई अनबोल पशु है, उसने तो जब हम पानी पात पियाओगे पानी पिएगा, नहलाओं धुलाओगे जब बेचारा नहा धोगा। तो इसमें हमने खुद अपना पशुओं का अपने तो भी ज़्यादा ध्यान हमने रखना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब गर्मी पड़े है धूप से बचाने का, अच्छा तापक्रम हो जाए तो उसमें भी इसने छाया में पशु ने बांधें, धूल तो बचावें और लुआ तो बचाने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि लुआ अगर लाग जाए चाहे आदमी हो चाहे पशु हो तो फिर बड़ी दिक्कत में आ जाए। तो जितना भी है अपना उनका छायादार प्रबंध करें, दोपहर को जब घर में बांधे हैं तो ईसा हो कि भाई एक बंद बिना हो, हवादार हो, लेकिन ऊपर तक छाया हो, पंखे कूलर लावा आजकल भाई तो पंखा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जो अपना खिड़की है उड़ा हमें छिदी छिदी ही बोरी जो होया करें अपना उन्हें बेकर में टांग दें, पानी उन पर एक दो डिब्बा पानी मार दें तो उसमें तो जब पंखा चलेगा तो हवा बड़ी ठंडी आओगी, तो एक देसी कूलर जैसा काम उसका पशुओं के लिए वो कर देगी। और फिर अगर गहरे अपने दौरे पेड़ पौधे हैं उनकी छाया में बांधन का भी ध्यान रखें, लेकिन छाया में भी इशा रखें कि भाई धूप ना आ जाए उनके ऊपर। और फिर जो है खाने पीने में भी सुपाच्य भोजन, प्रोटीन वाला भोजन, गेहूं का चोकर व जौ, यही डाल के हमने जो है हार्मोन को मिला के देने चाहिए, क्योंकि गर्मी में जो है पशु कम खाओगा लेकिन उस कम खान में भी उसने ऊर्जा तो ज़्यादा चाहिए चाहिए, तो हमने ऐसा भोजन देना चाहिए कि जिसमें कम दिया जा लेकिन उससे उन पशुओं ने ताकत ज़्यादा मिल रहे। खास तौर पे बात करें हम देखो तेल का मिश्रण हम थोड़ा उसमें कर सके हैं, और भाई जो अपना बाखर जिसने कह दिया करें भाई वो रांध के उसमें थोड़ा हाथ तेल डाल कर ठंडा करके वो पशु ने देवें, ताकि उसमें पशु ने बढ़िया जो है उसका जो जितने भी तत्वों की जरूरत पड़े है वह सारे के सारे उसने मिल जाए, ऊर्जा उसने काफ़ी मात्रा में मिलती रहे जो पशुओं ने चाहिए। खनिज मिश्रण वो भी ज़रूरी है देना, और कुछ ठंडी वस्तुएं इस डाल की चीज़ दें कि पशुओं ने गर्मी में अफारे की भी शिकायत ना हो पावे, क्योंकि जब हम नया भूसा गे रहे हैं गेहूं का तूड़ा जिसने कह दे हैं भाई नया तूड़ा जब पशु का है तो उस पर बंदापन की बड़ी आशंका हो जाए, तो उसके लिए हम डॉक्टर की सलाह लें, तारपिन का थोड़ा तेल या हींग व डॉक्टर की सलाह तो पशु ने ज़रूर देवें। और हरा चारा अगर पशुओं ने नहीं मिल रहा हो तो भाई साइलेज और ये भी बनाओ हैं बहुत सी जगह वह देने की कोशिश करें, अन्ना तो इस टाइम पर हरा चारा तकरीबन हो जाए, क्योंकि मार्च के जो आखिर माह बोए हैं या मई में अप्रैल में जो ज्वार बोते हैं मई में भी भाई बोए हैं तो वे जो है हरे चारे पशुओं ने मिलन लाग रहे हैं, लेकिन उसमें भी एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वह हरा चारा या ज्वार है अपने द्वारा वह सोखे की ना हो, सोखे की मतलब है कि वह सूखी ना हो, पानी पात उसमें कई आ रहे हों जब वह हम पशु ने घेरे, क्योंकि बिना पानी की ज्वार में एक विषाक्त पदार्थ पैदा हो जाए अगर HCN वो जो है पशुओं के लिए बड़ा हानिकारक है, तो जिस ज्वार में 3-4 पानी के आ रहे हों बल्कि वह ज्वार पशु ने डाल लें तो वह बढ़िया रहेगा, और वह भी फिर निरी ज्वार नहीं डालनी चाहिए, उसमें सूखा चारा पशुओं ने ज़रूर मिलावें और वो पशुओं को देवें। पेट के कीड़े की दवाई छोटे पशु हैं चाहे बड़े हैं उसका भी हमने ध्यान रखना है, और जो मुंह खोर के जो टीके गलगोटू के वह जो भी आंसर लिया था तब ऐसा ध्यान रख लें कि हमारा कोई पशु रहते ना गया है, वो ज़रूरी याद करके लवाने हैं ताकि आगे चाल के हमारे पशु ठीक ठाक रह जाएं। जो दूसरे पशु हैं भाई भेड़ की बात करें बकरियां की बात करें तो भाई इनकी जो भेड़ा की ऊन पासले महीने में उतर ली है, लेकिन उसके बाद फिर 20-25 दिन के बाद उन्हें बाह्य परजीवी तंग ना करें, इसके लिए कि जो कीटाणुनाशक घोड़ो है उसमें उनका शरीर डुबोया जाए, वह हम उस रोग का बचाने खातिर इन्हें टीकाकरण इनका भी बहुत ज़रूरी है। और फिर जो
भेड़ और उन विकास केंद्र हैं उन पर ड्रिपिंग केंद्र बने हुए हैं या टैंक बने हुए हैं, उन में अपनी भेड़ा ने नुहा के जरूर ले आवें ताकि उन पर भी परजीवी नुकसान ना पहुँचावें। तो इन बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना है, चाहे वो छोटे पशु हैं चाहे बड़े पशु हैं, हर पशु का हमने ध्यान रख के चलेंगे। तो फिर जो पशुधन है देखो महंगा बतेरा है, जो थोड़ी ही भी लापरवाही बन जाए तो फिर बड़ी दिक्कत आवे है। कई बार दिन में कहे गर्मी जी दिन अच्छी है तो कई बार पशुओं ने अपने नुभावे पानी साफ और ताज़ा पानी पिलाने की कोशिश करे और दिन में कई बार पानी पिलाने की कोशिश करे। दिखाओ जो पशु हैं और ख़ासतौर पर जो ब्यात आए पशु हैं उन भाई अगर तालाब है अपना गांव के अंदर नज़दीक तालाब है साफ़ सुथरा पानी है तो उसमें ज़रूर उन्हें लिटा के लियावे, अरना तो फिर घर पर भी कम से कम भी 3-4 बार पानी तो उन्हें नुहावे और साफ और ताज़ा पानी पिलाने की कोशिश करे। पशु ने जड़ेती हुए ठंडा पानी पिलाने की कोशिश करे ताकि उनकी गर्माहट दूर हुए और सुपाच्य भोजन थोड़ा थोड़ा करके दे भाई एक बार खोर ठोक दी नार की और फिर अपना दूर जाकर बैठ जा। थोड़ा थोड़ा भोजन देना चाहिए पशुओं ने ताकि वो जुगाड़ी कर लें और उनका ठीक ठाक हिसाब किताब बनता रहे और वो अपना जो जितनी भी उनमें ज़रूरत है कैलोरी की या जो ऊष्मा की है या ऊर्जा की है वो सारी की सारी उन्हें ठीक तरीके से मिलती रहे। हाँ खनिज मिश्रण उसमें ज़रूर मिलावें। तो भाई जिक्र और भी करेंगे अगर टाइम बच गया तो, लेकिन भैया का मनोरंजन भी ज़रूरी है तो भैया ने एक रागनी और सुनवा दें, गायक कलाकार एक बार फिर रणबीर सिंह बड़वासनी और उनके साथी।

अमजद भाई भैयान रागनी सुनी, गाय कलाकार थे रणबीर सिंह बड़वासिनी और उनके साथी। और भाई देखो पशुओं का तो यो है भाई, साफ सुथरा पानी पिलाते रहें, मौसम जिक्र भी बदली हो उस हिसाब से अपने पशुओं का रहन सहन और उनका खान पान उस हिसाब से उसमें बदलाव कर दे रहे हैं। न्यू नहीं है कि भाई हमने मौसम आज थोड़ा ठीक सा है, लेकिन चिमका बेरानी पटियार था कोडा पर भी फिर एक बार चिमका लिखड़े आ गए। तो पशुओं का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर जो ब्यात आयाड़ है पशु हैं और जो छोटे कारड़ू बाछड़ू हैं उनके लिए, क्योंकि उन घाम बहुत थोड़ा मारा करा है। गर्मी ब्यात आए पशु में वैसे ज़्यादा हो जाए, कुछ ऊपर की जो धूप से वाशे जाए तो बड़ी दिक्कत आवे है। तो इनका बड़ा ध्यान रखें। और भाई ध्यान हमने समय का भी रखना है, कार्यक्रम का समय समाप्त हुआ है। चालने सारे बन भैया ने, राम राम।

आपने खेत खलिहान कार्यक्रम सुना। मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्ज पर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। 3 बजे हैं हमारे दूसरी सभा के कार्यक्रम अब संपन्न होते हैं। एफएम बैंड 103.5 मेगा हर्ट्ज पर आप सुनते रहेंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। तीसरी सभा में आज दोपहर 3:55 पर मीडियम वेव 262.67 मीटर, डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे।

0: मीडियम वेव 262.67 मीटर यानी 1143 किलो हर्ट्स पर डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। दोपहर के 3:55 हुए हैं, हमारी विशेष सभा अब प्रारंभ होती है। हमारे कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: श्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल जिला हुगली के तारकेश्वर में आयोजित एक समारोह में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री इस अवसर पर किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगे। आइए आपको सीधे कार्यक्रम में लिए चलते हैं। विवरण दे रहे हैं सिद्धार्थ कुमार सिंह और वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
2: श्रोताओं, आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि आज है पश्चिम बंगाल दिवस और ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और आज पश्चिम बंगाल दिवस के दिन देश के किसानों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आज पीएम किसान उत्सव दिवस भी मनाया जा रहा है जिसके मुख्य कार्यक्रम का आयोजन तारकेश्वर में किया गया है। आपको बता दें कि तारकेश्वर जो कि पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित है, इसे बाबा धाम या शिव का शहर भी कहा जाता है, जहां पश्चिम बंगाल दिवस के साथ साथ आज का दिन पीएम किसान उत्सव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ सिंह और मेरे साथ हैं मेरे साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव।
3: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, अ ग्रेट डे फॉर द स्टेट ऑफ बंगाल, अ ग्रेट डे फॉर द फार्मर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द कंट्री, अ विकसित बंगाल, अ विकसित भारत, अ डेवलप्ड बंगाल, अ डेवलप्ड इंडिया। The resolve to make the country a Viksit Bharat, a developed India by 2047, to make the lives of the people of our great nation safe, successful and sustainable, to help and assist our farmer brothers and sisters have the lives that they have always dreamt of. This is the mission of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, who has made a vow to make India world-class, the India of our dreams and aspirations. Prime Minister Sri Narendra Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi PM Kisan scheme to the eligible beneficiaries on the 20th, that is today, which is also the West Bengal Day because it was this day that the West Bengal state was founded. From Tarkeshwar, located in Hooghly district in West Bengal, the event will be organized by the Ministry of Agriculture, Government of India with the support of the Government of West Bengal. An amount exceeding 18,880 crore will be transferred directly into the accounts of over 9.44 crore farmers in the 23rd installment. Over 2.18 crore women farmers will receive the benefit during the 23rd installment. Siddharth, truly a day to celebrate India of tomorrow, truly a day to celebrate the vow that the Prime Minister had made to the people of the nation that yes, India will be developed, India will be the India of our dreams. And we will never ever leave our farmer brothers and sisters behind.
2: बिल्कुल वैभव, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में जैसा कि संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री ने और जिस तरह की बात चल रही है, ये एक बहुत बड़ा कदम है।

0: और आज जबकि अब से कुछ देर में माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करने जा रहे हैं और आपको बता दें कि इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। और खास बात वैभव यहाँ की यह है कि इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसान लाभान्वित होंगी। तो ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं वैभव, या महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसमें भी एक बड़ा कदम है। और आपको बता दें कि जैसा कि पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, अकेले पश्चिम बंगाल में ही 45,00,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा की जा रही है, जिसमें राज्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के अंतर्गत कुल जो वितरण राशि यहां पर है वो 15,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। और ये भी बता दें कि 2019 में योजना के शुभारंभ के बाद देश से भर में कुल वितरण राशि जो थी 4.46 लाख करोड़ थी, और उससे ज्यादा हो गई। और अब तक 22 किस्तों के माध्यम से लगभग 4,28,000 करोड़ रुपए देश के करीब 9.5 करोड़ किसानों के खाते में सीधे हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो वैभव, ये एक जहां एक ओर हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किसान सशक्तिकरण की भी बात चल रही है, क्योंकि जैसा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री की किसानों को आगे रखना, किसानों को लेकर इस विकास यात्रा को आगे रखना है।
1: एब्सोल्युटली सिद्धार्थ, टू मेक द इनकम्स ऑफ द फार्मर्स गो डबल एंड ट्रिपल When the country develops, we have to take care of every person in the nook and corner of the country. The policy or the basis of the foundation of all the missions, which is Antyodaya. When we keep the last man in mind, we always keep the fact in mind that yes, we have to grow the country. We have to make the country develop, but we have to keep each and every person in the policy, in its execution. We have to take everyone along. And today's event, Siddharth, will be graced by the esteemed presence of course, the Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi, and apart from him, the Governor of West Bengal, Sri Arun Ravi, the Chief Minister of West Bengal, winning a historic election, Sri Suvendu Adhikari, Sri Rajiv Ranjan Singh, the Union Minister of Panchayati Raj, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Sri Ashwini Vaishnav, Union Minister of Railways, Information Broadcasting and Electronic and Information Technology, Sri Shantanu Thakur, Union Minister of States for Ports, Shipping and Waterways, Sri Sukanta Majumdar, Union Minister of State of Education and Development of Northeast Region, Sri Samik Bhattacharya, Member of Parliament, among many other distinguished guests. And Siddharth, many schemes and many events have been organized across the state and the country in the district and block levels and gram panchayat levels with the support of the KVKs and local agriculture officers, celebrating the day of the release as PM Kisan Utsav Divas. Excitement across the people, farmers gathering at the event, continuous craning of the necks. They are all happy and they wish to see the Prime Minister and they wish to see the promises which the Prime Minister did come true.
0: बिल्कुल वैभव, जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जो जनमानस है, माननीय प्रधानमंत्री जी अब से कुछ ही देर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और यहाँ तारकेश्वर में गणमान्य अतिथियों के साथ विशाल जन समुदाय प्रधानमंत्री जी को सुनने और उनकी एक झलक पाने के लिए मानो उमड़ पड़ा है। और जिस तरह से बंगाल की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना भरोसा व्यक्त करते हुए जिस तरह का विशाल मैंडेट दिया है, आज बंगाल की जनता अपने लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन की उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रही है। और जैसा कि हमने बताया कि आज इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल माननीय श्री आर एन रवि, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री सुविंदु अधिकारी, माननीय पंचायती राज एवं मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, माननीय रेल सूचना एवं प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, माननीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग राज्य मंत्री श्री तनु ठाकुर सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति यहां पर मौजूद हैं।
1: Absolutely, to see these ministers that the people are waiting for, and the people have actually voted for these ministers who will now be gracing the stage. It's actually a very exciting day for everyone. It's not just the financial benefit that is being transferred. It's not just the fact that the PM had made a vow, he had made a promise, and that promise is being coming alive. That promise is, proving to be correct. But the fact that, yes, we are on mission mode, we as a country, as a people, we are going towards the fact that we have to make this country developed. We have to make a Viksit Bharat till 2047. That's exactly the aim of the Honorable Prime Minister. More than 1 crore farmers are expected to connect to the main event via video conferencing at the Krishi Vigyan Kendra as the KVK's ICAR institutes and universities, farmer producer organizations, agriculture mandis, PM Kisan Samriddhi Kendras, Prime Minister, primary agricultural cooperative society and state district gram panchayat level, village level functions. With the release of the 23rd installment, the total disbursement under the scheme will exceed 4.4 lakh crore since its inception on the 24th of February 2019. Siddharth, we have to agree to the fact that yes, everything that might be happening around the globe, this promise never loses its importance.
0: बिल्कुल. तो अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है, इससे पहले हम सुन लेते हैं अंग्रेजी में समाचार.

0: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. Addressing a public gathering at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, the Prime Minister extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village Paharpur. He announced that Paharpur would be developed as a Suryagram or solar village with renewable energy-based infrastructure and modern public services. The Prime Minister inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He said the centre's Purvodaya vision aims to drive India's growth through the rapid development of eastern India.
1: साथियों हमारी सरकार उड़ीसा के संसाधनों को उड़ीसा की संभावनाओं में बदल रही है उड़ीसा में बड़ा निवेश आए यहां नए उद्योग लगे इसके लिए उत्कर्ष ओडिशा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं इसके तहत अब तक करीब 20 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की अनेक मेगा परियोजनाओं पर भी काम चल रहा है
0: Union Home Minister Amit Shah today reiterated the government's commitment to national security and effective border management, stating that efforts to curb illegal infiltration would continue with determination. Mr. Shah said that under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has witnessed significant progress over the past 12 years in the fields of development, cultural rejuvenation, national security and global recognition. He said these years would be remembered as a period of transformative growth in the country's history. Addressing a public gathering after inaugurating the Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur, worth over 1,445 crore rupees, Mr. Shah said that the development project will transform the temple precinct into a modern pilgrimage destination while preserving its historical, cultural and spiritual heritage. The National Testing Agency, NTA, is conducting a nationwide mock drill as part of preparations for the NEET UG 2026 re-examination, which will be held tomorrow. The exercise, which began at 9 a.m., will continue through the day. More than 2.5 lakh security personnel are participating in the drill, being carried out across examination centres nationwide. In Delhi, a mock drill was conducted at examination centres in the Delhi-Cant area and Ashok Vihar Phase 2. The NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.7 lakh 9 candidates. The government has banned the manufacture, sale and distribution of 16 fixed-dose combination drugs for human use with immediate effect. The move follows a Supreme Court-directed review by an expert committee set up by the Drugs Technical Advisory Board, which found the drug combinations lacked therapeutic justification and could pose health risks. The banned products include certain dermatological pain relief and antibiotic-based medicines. An Israeli airstrike struck the Jabal al-Rahi area near the southern Lebanese town of Sajd shortly after a Lebanon-Israel ceasefire took effect. The airstrike came hours after Hezbollah lawmaker Ibrahim al-Mousavi said the group would continue to abide by the ceasefire as long as Israel honored its terms. International Yoga Day 2026 will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for extremely heavy rainfall at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till tomorrow. IMD has also predicted heavy rainfall conditions over Kerala, Mahi, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and northeastern parts of the country during the day. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Matheus Cunha starred for the five-time world champions, scoring twice in the first half. Vinicius Junior added a third goal before the break to give Brazil a commanding lead. The score remained unchanged in the second half as Brazil controlled the match and secured all 3 points. And that is the end of this news bulletin.
2: जी हाँ श्रोताओं, हम लोग आपको दोबारा से तारकेश्वर लिए चलते हैं और इस समय आपसे कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, सभी को बेसब्री से इंतजार है इस कार्यक्रम के शुरू होने का। और आज का दिन पश्चिम बंगाल के लिए बेहद खास है क्योंकि पश्चिम बंगाल दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। ये दिन 1947 में बंगाल विधानसभा द्वारा पारित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस ऐतिहासिक प्रस्ताव की याद दिलाता है जिसके तहत बंगाल के विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल एक अलग राज्य के रूप में भारत का हिस्सा बना। और तारकेश्वर का भी ऐतिहासिक महत्व रहा है। वैभव, अगर तो देखते हैं इसमें, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से 1947 में बंगाल विभाजन की रूपरेखा और निर्णय से जुड़ा है ये। 15 अप्रैल 1947 को तारकेश्वर में ही बंगई हिंदू महासभा का एक महत्वपूर्ण 3 दिन का अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पश्चिम बंगाल के गठन के लिए कदम उठाने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया था और इसी ऐतिहासिक जनादेश के आधार पर डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल विभाजन का प्रस्ताव रखा था। और आज पूरे पश्चिम बंगाल में ये दिवस पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है।
3: सिद्धार्थ, इन द ग्रेट वर्ड्स ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, रेजिस्ट ऑप्रेशन एंड इफ नेसेसरी रिटेलिएट, दीज वर द वर्ड्स ऑफ दिस ग्रेट मैन हु गेव विजन टू द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल दैट यस, we as part of India have to make India a Soni ki chidiya, that golden bird again. We have fought a long battle against the British Raj, against the colonial rule, and now it's time that we take things into our own hands and we make not just Bengal but the country great. And today's occasion wherein we remember all those great years during the critical years of 1946 to 1947, Dr. Shyama Prasad Mukherjee exerted a powerful voice for safeguarding the interests of Bengal and its people. Strong public opinion emerged, demanding that the western part of Bengal remain within India. Tarkeshwar stands as a silent witness to that momentous chapter of history. On June 20th, 1947, this historic decision, as told by Siddharth, was taken, determining the future of Bengal, which later laid the foundation stone for the formation of West Bengal. This is a glorious history. This is a pride of heritage. This is a commitment to progress.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने प्राइड की बात करी, तो इस वर्ष के पश्चिम बंगाल दिवस का विषय है पश्चिम बंगाल, विरासत, सद्भाव और विकास। राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकासात्मक आकांक्षाओं को ये दिवस दर्शाता है। और अब से आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंग दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल के सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिवस उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्म, विज्ञान, व्यापार एवं वाणिज्य, सामाजिक सुधार सहित अनेक क्षेत्रों में अपने अमूल्य योगदान से भारत के इतिहास को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने अनगिनत तरीकों से भारत की राष्ट्रीय चेतना को समृद्ध बनाया है। और जिस तरह की बात आज बंगाल के लिए बेहद खास है, और ये दिन उस राज्य का जश्न मनाता है जिसने साहित्य, संगीत, कला को एक नई दिशा दी वैभव। और बंगाल की जब भी बात होती है तो इस तरह से जिस तरह का पूरा बंगाल का हम देखते हैं कि वहाँ का साहित्य, वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, और बंगाल अब विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है।
3: Absolutely, Siddharth. This is the promise with which the government has been formed in Bengal after years and years of injustice. Now we see that the government, and this will be a government which will be a government of a double engine. And today's function, Siddharth, is not just something that we are seeing for the first time. This is the 23rd installment. This is a direct transfer. We don't just see one promise, we see many promises together. We see an actual execution of the digital Bharat. We see no middlemen. We see direct transfers, financial benefits going into the hands of brother and sister farmers throughout the country. This is a place where an amount exceeding 907.21 crores will be transferred to over 45.35 lakh beneficiaries in West Bengal alone in the 23rd installment. Imagine the mammoth scale on on which this PM Kisan Samman Nidhi is operating right now and the mammoth scale on which it is benefiting the farmer brothers and sisters in the country, along with the release of the 23rd installment, Siddharth, of PM Kisan Nidhi. The following schemes or the programs that will be launched will be Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, that is the restructured weather-based crop insurance scheme. The next one will be a digital agriculture mission. There will also be a national mission on natural farming, NNNF, and the Pradhan Mantri Dhan Dhan Krishi Yojana, which was approved by the Union Cabinet in the July of 2025 and launched on the 11th of October 2025, an initiative aimed at accelerating agricultural growth in 100 districts characterized by low productivity, low cropping intensity, and limited credit flow. Imagine, we are taking so many steps. It's not just the credit flow that is going to the farmers. It's not just the money that is going to the farmers. It is also fertilizers. It is also the good quality of seeds. It is also the scientific research that is going on continuously in the country, which is helping the farmers gain momentum and be a part of this development journey.
2: बिल्कुल वैभव, जैसा कि तुमने बताया कि ये जो यात्रा है, ये ना सिर्फ योजनाओं की यात्रा है बल्कि किसानों को हर तरीके से सशक्त बनाने की यात्रा है. और आज प्रधानमंत्री जी कई केंद्रीय कृषि योजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत एग्री स्टैक, प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शामिल है. प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसे हम PMFBY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ करेंगे, जिससे विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना का लाभ राज्य के किसानों तक पहुंचेगा. 2026-27 के दौरान इस पहल का उद्देश्य पश्चिम बंगाल राज्य में लगभग 14 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर लगभग 50 लाख किसानों को बीमा कवरेज प्रदान करना है, जिससे लगभग 28,140 करोड़ रुपए के अनुमानित बीमित मूल्य की फसलों की सुरक्षा हो सकेगी और किसानों को पर्याप्त प्रीमियम सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी. और इसके अलावा, जैसा कि वैभव हम जानते हैं कि डिजिटल जमाना है और जिस तरह से अभी ये सारी चीजें चल रही हैं, डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में एग्री स्टैक का शुभारंभ कर रहे हैं. इसके अंतर्गत उर्वरक वितरण, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली के अंतर्गत खरीद जैसी सत्यापित कृषि संबंधी सेवाओं के लिए एक एग्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा. और ये पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल शासन को मजबूत करेगी और किसान केंद्रित सेवाओं के कुशल वितरण को सुगम बनाएगी. तो अब चीजें डिजिटली लोगों के पास पहुंच जाएंगी बहुत फास्ट.
3: एब्सोल्युटली, एज यू सेड, चीजें बहुत जल्द लोगों के पास पहुंच जाएंगी. And I want to say that it won't just be the procurement of things that will happen in a very smooth and a very functional way, but the whole line of credit. Once you get the raw material, which is of a good quality, which has been backed by scientific research, which has been done by great government institutions, huge amounts of money that has been invested into those, you get those raw materials into the soil, which is being continuously made fertile by more fertilizers, again, through natural and organic ways. Then you get the produce of those farms, you get them to the markets at a good rate, again, benefit to the farmers. And then when you get those rates and when you have to improve, or let's say you have to develop your farms, you have to expand your farms, you get the credit facilities. So at each and every level of this whole line flow, you're getting support from the government. The kisan or the farmer brothers and sisters are getting support from the government, and that is exactly what should happen.

0: And that is the feeling, that is the concept of Antyodaya. When you include each and every person who is there in the nook and corner of the country, when you include everyone together in the development journey, that is exactly when you get a developed Bharat. That is exactly when you get a Vikasit Bharat.
1: बिल्कुल, विकसित भारत की बात आपने की है और एक सरकार की एक जो नई पहल है देश में, जिस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज का निर्माण किया जा रहा है, जो मिडिल मैन की भूमिका है उसको खत्म किया जा रहा है ताकि किसानों को सीधे मार्केट में एक अवसर मिल सके। आप ऐसा सोचिए कि वैभव किसी गांव में बना हुआ कोई उत्पाद या देश के किसी सुदूर क्षेत्र में किसी किसान का जो प्रोड्यूस होता है या वो प्रोडक्ट होता है उसको एक बाजार को उपलब्ध कराना सरकार की मंशा है कि देश में ज्यादातर जो कोऑपरेटिव्स को हम डेवलप करें, इस फॉर्म को डेवलप करें और ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ें ताकि एक एक जो व्यवस्था है वो डिजिटल रूप में उनको एक टेक्नोलॉजी मिले। जैसे आपने आज आपने टेक्नोलॉजी की बहुत बात करी है कि उत्कृष्ट तकनीक के साथ एक उत्कृष्ट उत्पाद की बात हम करते हैं वो किसानों का लोगों तक पहुंचने के लिए, और जितनी भी सारी उसमें इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जहां जहां किसानों को, चाहे हम किसान की सॉयल की बात करनी हो, चाहे फर्टिलाइजर की बात करनी हो, चाहे हमें अन्य टेक्नोलॉजी की बात करनी हो। आज ड्रोन दीदी की बात होती है तो किस तरीके से, आज वेदर फोरकास्टिंग की बात होती है, हम हर तरीके से वैज्ञानिक रूप से किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
0: Absolutely, Siddharth, the word that you've used, and you had used this word earlier as well, which is sashakt banana. That is to make the farmer brothers and sisters empowered. How do you make them empowered exactly? That is the question. And that was probably the question in the mind of the Honorable Prime Minister when he had introduced the Digital India Mission. Because imagine a farmer sitting in one corner of a village somewhere completely disconnected what is going on in the world. But he knows and he trusts the government. And then he realizes that now is a scheme wherein he will be getting a direct transfer. What happens? You go and you get a mobile phone. If you do not have a mobile phone, or if you do have a mobile phone, you learn how to get those applications. That is a new chapter, a new phase in the lives of those farmers. You do not have to depend on anyone else. Now you are self-empowered, you are self-reliant. Aap atmanirbhar hain ki aap swayam wo faisla le paye, aap swayam us device se. Using that mobile phone, you can do whatever you wish to. You can get that direct transfer, you can check your bank account, you can be a part of the Digital India Mission, you can be a part of the banking system, of the financial system, you can get all those benefits together. And how exactly does that help you? It helps you to be a farmer of the 21st century. It helps you to biodiversify. It helps you to not just get stuck in the rut like the farmers of the yesteryear governments who were just stuck because they did not have the credit support, they did not have the support of the raw materials, they did not have the support of logistics. Imagine the kind of work that is being done through infrastructure, through the line of credit, through raw materials, through credit providing to the farmers. Drone Didi ka apne zikr kiya. How important is that for women now who are earning lakhs and lakhs through a technology that was not even visible a few decades back? What is this drone? What is this thing flying in the air?
1: Even इस तरह की जो तकनीकी है वैभव, आज से एक, जैसा कि तुमने कहा कि एक दशक पहले इस तरह की परिकल्पना भी आप नहीं कर सकते थे कि इसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हो। और डिजिटल, जैसा कि आज पीएम किसान के तहत देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खातों में जो पैसे पहुंचने वाले हैं 18,880 करोड़ रुपए, तो ये भी डिजिटल होता जा रहा है। और इस बीच हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, और इस समय हम देख पा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है और वो मंच पर पहुंच गए हैं और चारों तरफ से ये लोगों की आवाजें उनको अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए लोग यहां पर खड़े हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है और
1: समर्पण करेंगे।
2: The Honorable Prime Minister on the stage sitting along with the Governor of West Bengal, Shri Arun Ravi, and the Chief Minister of West Bengal, Shri Suvendu Adhikari. People craning their necks. Now, the national anthem and the national song.

0: अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया विभिन्न मंत्रालय की कुछ विशेष परियोजनाओं का शुभारंभ, उद्घाटन तथा राष्ट्र को समर्पण करने की कृपा करें।
1: The release of the PM Kisan Nidhi, the 23rd installment being done by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi with a smile on his face and a confident handshake. Now, this has been released. Various beneficial scheme for the people of the country. Various schemes including infrastructure of railways, of roadways, of port developments, of fisheries, of highways. So many things together being released by the Honorable Prime Minister.
2: जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री ने कई सारी योजनाओं का शुभारंभ किया आज, और किस तरीके से लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रंगारंग कार्यक्रम के तुरंत बाद ये जो कई विकास जो परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं की शुरुआत की है माननीय प्रधानमंत्री।

0: It relates to the goat production, the laboratories that are there. It relates to the ports that are being developed. It relates to the farmer producers that will be given a fair share in the market. All these things have been released now by the Honorable Prime Minister. The people craning their necks, happy to see the Prime Minister and happy to see the fact that the Prime Minister has delivered on each and every promise that he had made. And the one vision that is in mind is, of course, of Viksit Bharat, of a developed India by 2047.
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री अभी लगातार कई सारी परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना की जो 23वीं किस्त का हस्तांतरण माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने रिमोट का बटन दबाकर किया और इसके साथ ही ये किसानों के खाते में ये रकम पहुंच गई। आज 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए वो उनके खाते में पहुंचे हैं।
0: एंड सिद्धार्थ, मोर देन 2 करोड़ वुमेन बेनिफिशरीज आर अमंगस्ट दोज फार्मर्स हु विल बी गेटिंग दिस डायरेक्ट ट्रांसफर, दिस इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि। इमेजिन द लेवल एट व्हिच दिस scheme is now operationalized, is functional, is being executed. Imagine what is happening. And now the moment that everyone has been waiting for, everyone is now waiting for the fact that yes, the Honorable Prime Minister will speak his heart out. And there he is on stage, Prime Minister Modi.
2: Mahadev. मंच पर विराजमान राज्यपाल आर एन रवि जी, यहां के लोकप्रिय और ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, अन्य सभी महानुभाव और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, बाबा तारकनाथ और बंगाल की पुण्य भूमि पश्चिम बंग दिवस की ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है, जैसे बंगाल का गौरव लौटने का आरंभ हो गया है। आज का ये कार्यक्रम साक्षी है, इन परियोजनाओं का शुभारंभ गवाह है कि हमारा बंगाल अपने नए भविष्य के निर्माण में जुट गया है। बंगाल के लोगों के चेहरों की चमक गांव गांव में खुशी और विश्वास का भाव, मैं आपके इस आनंद में भागीदार बनने के लिए आया हूं। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। परिवर्तन भालो लागे छे तो मैं इस अवसर पर बंगाल के लोगों को और सभी देशवासियों को इस आयोजन की, पश्चिम बंग दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं।

साथियों, आज आप सभी की मैं स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए भी सराहना करना चाहता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। स्वच्छता हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। जहां स्वच्छता होगी वही विकास भी उतना ही सुंदर दिखेगा। मैं आपको स्वच्छता से स्वागत के लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, इस बार पश्चिम बंग दिवस की यह तारीख और भी खास है। आजादी के बाद बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए जो सपना देखा गया था, बंगाल की महान आत्माओं ने जो परिकल्पना की थी, आज एक तरह से पहली बार हम पश्चिम बंग दिवस पर उन सपनों को सच्चाई में बदलते देख रहे हैं। यह ऐतिहासिक तारीख पश्चिम बंगाल के विकास की प्रेरणा बने, हम एक नया और गौरवशाली इतिहास रचे। आज बीजेपी एनडीए सरकार में इसके लिए विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। साथियों, बंगाल में दशकों तक पहले लेप और फिर टीएमसी ने जो गड्ढे बनाए उन्हें भरने के लिए डबल इंजन सरकार ने सुपर फास्ट स्पीड से काम करना शुरू कर दिया है। बिजली की रफ्तार से फैसले हो रहे हैं, रुकी हुई योजनाओं पर काम आगे बढ़ने लगा है। इसी कड़ी में आज यहां सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, मछली पालन, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल के विकास को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहां की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूं। आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। मैं देश के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, गुलामी के दौर में हमारे बंगाल ने क्या कुछ नहीं सहा, कितने बलिदान दिए, कितने त्याग किए। 1946 में कोलकाता में हुई हिंसा, नोआखली के दंगे, कितने निर्दोष बंगाली मानुष, बंगाल के लोग उसकी भेंट चढ़ गए। भाइयों बहनों, बंगाल ने रक्तपात सहा, बंगाल ने अपनों को खोया, अपनी मातृभूमि के टुकड़े होते देखे, लेकिन बंगाल ने

अपनी अस्मिता और पहचान को नष्ट नहीं होने दिया। इसी का परिणाम था जब पूरे बंगाल को भारत से अलग करने की साजिश हो रही थी, तब अलग पश्चिम बंगाल बनाकर उन मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया गया। हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता और संस्कृति, यहां की मूल आस्था और परंपरा, तब अनेक संघर्षों के बाद बच गए थे और आज भी वो मूल्य इस धरती के संस्कार आज पश्चिम बंगाल के रूप में न केवल सुरक्षित है बल्कि जीवंत भी है। इसलिए पश्चिम बंग दिवस के रूप में हम केवल एक तारीख को याद नहीं कर रहे हैं, हम पूरे इतिहास को याद कर रहे हैं। हम हजारों साल पुरानी बंगाल की विरासत को नमन कर रहे हैं। साथियों, आज की पीढ़ी को हमें बार बार पश्चिम बंग दिवस की अहमियत बताने की जरूरत है। उस दौरान क्या हो रहा था, ये युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है। जब पूरे बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए जाने की कोशिशें हो रही थी, तो कांग्रेस उन षड्यंत्रकारियों के सामने घुटने टेके पड़ी थी। और यही वो समय था जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। अप्रैल 1947 में उन्होंने ऐतिहासिक रिजोल्यूशन पास कराया। उन्होंने घोषणा की पूरा बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेगा। इसके लिए बंगाली हिंदू होमलैंड मूवमेंट शुरू किया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका नेतृत्व कर रहे थे। प्रसिद्ध वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, इतिहासकार आरसी मजुमदार, इतिहासकार जदुनाथ सरकार, सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय, बंगाल के ऐसे कितने प्रबुद्ध और प्रसिद्ध लोग इस मूवमेंट का हिस्सा बने। जीडी बिरला जैसे उद्यमियों ने इसे आगे बढ़ाया। मतवा लीडर पीआर ठाकुर ने आगे आकर इस मूवमेंट को समर्थन दिया। अखबारों में लेख लिखे गए, किससे कहानियां लिखी गई। वंदे मातरम की भावना को एक बार फिर स्फुरित किया गया। बंगाल की जिस आवाज को मजहबी एजेंडों से दबाया जा रहा था, इस जन आंदोलन से वो स्वर फिर से मुखर हो उठे। इसी का नतीजा था भारत विरोधी लोगों को ये पता चल गया, पूरे बंगाल को भारत से तोड़ना नामुमकिन होगा। और पश्चिम बंगाल के रूप में ये हिस्सा मां भारती के साथ रह गया। साथियों, जिस भावना से पश्चिम बंगाल को बचाया गया था आजादी के बाद, उसी भावना पर इसे आगे बढ़ाने की जरूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से
इससे उलट काम हुआ। पश्चिम बंग दिवस और इसकी भावना को भुलाने की कोशिश हुई। सियासी एजेंडों के कारण इतिहास का व्हाइट वॉश किया गया। भाइयों बहनों, विभाजन के समय जो कांग्रेस बंगाल को लावारिस छोड़ना चाहती थी, विभाजन के बाद उसने बचे हुए पश्चिम बंगाल में भी तुष्टीकरण के खेल खेलने शुरू कर दिए। पश्चिम बंगाल के इस इतिहास को दबाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक बने, इसलिए उनके योगदान को नकारा गया। जिस भावना को लेकर उन्होंने बंगाल के लिए लड़ाई लड़ी थी, उस विचार को भी खत्म करने की कोशिशें होती रही। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जिस धरती का ऐसी महान संतानों से नाता रहा हो, उस पर विदेशी विचारधारा थोपी गई। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। साथियों, आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। अब पश्चिम बंग दिवस से प्रेरणा लेकर नया इतिहास रचा जाएगा। साथियों, दशकों के कुशासन ने पश्चिम बंगाल को मीलों पीछे पहुंचा दिया है। आप सबने देखा है, पुरानी सरकारों के समय में कैसे हालात हो गए थे। यहां से बड़े उद्योगों का पलायन हुआ, छोटे उद्योग धंधे ठप पड़ते चले गए, युवाओं का रोजगार छिनता गया, संसाधनों पर घुसपैठियों का कब्जा होता चला गया। जो पश्चिम बंगाल कभी अवसरों की भूमि होती थी, वो पलायन का केंद्र बनती चली गई। इसी माहौल में आपने एक संकल्प लिया, टीएमसी सरकार को पलटने का, उसे हटाने का। आपने बीजेपी को आशीर्वाद दिया, रिकॉर्ड सीटों के साथ हमें विजयी बनाया। और आज पूरा देश देख रहा है कैसे तुरंत ही इसका नतीजा भी बंगाल को मिलने लगा है। जिन अधिकार से आपको बरसों तक दूर रखा गया, आज वो हक आपके द्वार तक पहुंच रहा है। मैंने चुनाव के समय आपको आयुष्मान भारत योजना की गारंटी दी थी। जब बंगाल के हर गरीब को आयुष्मान भारत का लाभ मिलना तय हो गया है, माताओं बहनों को अन्नपूर्णा योजना का सीधा लाभ मिलना शुरू हो गया है, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचे, इसके लिए भी पश्चिम बंगाल सरकार
और केंद्र सरकार के बीच जल जीवन मिशन को लेकर एमओयू साइन हो गया है। हमने चुनाव के समय बंगाल के युवाओं से वादा किया था, वो वादा पूरा करते हुए नौकरियों में आयु की सीमा में ढील दी गई है। महिलाओं को फ्री बस यात्रा का वादा भी पूरा हो चुका है। साथियों, सालों साल राजनीतिक दुश्मनी में जिन योजनाओं को रास्ते में ही अटकाया गया, लटकाया गया, आज उन सारी बंदिशों को तोड़कर जनकल्याण शिविरों के जरिए हर सरकारी योजना का लाभ सीधे आप तक पहुंचाया जा रहा है। अब कोई बिचौलिया नहीं, कोई रुकावट नहीं, सिर्फ आपके अधिकार पर फोकस है, बंगाल के विकास पर फोकस है, बंगाल और देश की सुरक्षा पर फोकस है। आपने देखा होगा सीमा पर फेंसिंग के लिए पिछली सरकारों ने जमीन ट्रांसफर का जो काम दशकों से रोक रखा था, नई सरकार बनते ही वो काम भी पूरा करने का काम शुरू हुआ है। भाइयों बहनों, मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल में औद्योगिक प्रगति की नींव फिर से बननी शुरू हो गई है। इस नींव के दो अभिन्न अंग है, ईमानदार और पारदर्शी शासन और दूसरा कानून का राज। पश्चिम बंगाल ही नहीं, पूरा देश आज इस बदलाव को देख रहा है। जिन्होंने आपको लूटा वो खुद आकर लूट के पैसे लौटा रहे हैं। बड़े बड़े लुटेरों को जेल भेजा जा रहा है, सिंडिकेट वाले जनता से माफी मांग रहे हैं, टोल नाकों पर अवैध वसूली करने वाले गुंडे नाके छोड़कर भाग गए हैं। बंगाल के लोग बिना रोक टोक के आ जा रहे हैं। एखन काट माने शेष काज शुरू होए गए छे। साथियों, जो बंगाल अभी तक खराब सड़कों और खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझ रहा था, वहां अब वर्षों से लटके अटके प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ने लगे। आप देखिए, चिंगरी घाटा क्रॉसिंग पर कोलकाता मेट्रो की ऑरेंज लाइन का रुका हुआ काम पूरा भी हो गया है। हावड़ा में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए डिविजनल रेलवे अस्पताल की नींव भी रखी गई है। यहां इमरजेंसी सेवाएं होगी और गंभीर बीमारियों के इलाज की व्यवस्था होगी। पूर्व मेदिनीपुर में हौर और राधा मोहनपुर के बीच रोड ओवर ब्रिज, संकरेल संतरागाछी लिंक लाइन, ऐसे प्रोजेक्ट से यहां के लोगों को सुविधा होने वाली है। साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है। आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है। फसल बीमा योजना मुश्किल समय में किसान के परिवार को सहारा देगी। फसल को नुकसान होने पर किसान पर बोझ नहीं पड़ेगा।
साथियों, अब पश्चिम बंगाल डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन से भी जुड़ रहा है। एग्री स्टैक के माध्यम से किसान रजिस्ट्री बनेगी, गांवों के नक्शे और बोई गई फसल की जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध होगी। खाद की खरीद, किसान क्रेडिट कार्ड, डीबीटी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद जैसी सेवाओं में इससे आसानी होगी। साथियों, कृषि क्षेत्र में जो सबसे पिछड़े जिले हैं उन्हें आगे लाने के लिए सरकार ने पीएम धनधान्य कृषि योजना शुरू की है। इसमें पश्चिम बंगाल के चार जिले पुरुलिया, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार और झाड़ग्राम शामिल है। इन जिलों में खेती की उत्पादकता बढ़ाने, स्टोरेज की सुविधा बनाने और किसानों के लिए लोन आसान करने पर काम होगा। बंगाल में मछली पालन से किसान, मछुआरे, व्यापारी सब जुड़े हैं। इसे दक्षिण 24 परगना के फ्रेसरगंज फिशिंग हार्बर की क्षमता बढ़ाई गई है। वीरभूम में आधुनिक फिश मार्केट बनाने का भी काम हुआ है। अब बंगाल थमेगा नहीं, बंगाल अब इतिहास रचेगा। ए बार बांग्ला थाम्बे ना, एखोन इतिहास गोरबे। साथियों, आज इस कार्यक्रम में देश के अलग अलग हिस्सों के लाखों किसान साथी भी जुड़े हुए हैं, वहां के मुख्यमंत्री गवर्नर भी जुड़े हुए हैं, देश भर की सरकारों के मंत्री भी जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ लाखों किसान भी आज हमारे इस दिवस को मनाने में वो वहां भी भागीदार बने हैं। ये सभी किसान पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। आज अपने इन सभी किसान भाइयों बहनों से मैं एक आग्रह भी करना चाहता हूं, और मेरे किसान भाई बहन मेरी बात को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को बर्बाद होते खेत नहीं देने हैं। हमें अपने बच्चों को उपजाऊ खेत देने हैं। हमें हमारी धरती माता को बचाना है। इस समय भारत सरकार खेत बचाओ अभियान चला रही है। इसके तहत मिट्टी की सेहत बचाने, केमिकल खाद का इस्तेमाल कम करने और प्राकृतिक खेती अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। आप भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में खेत बचाओ अभियान से जुड़े, खुद का खेत बचाने का संकल्प करें, आसपास के किसानों को खेत बचाने के लिए प्रेरित करें और हम सब मिलके हमारी धरती मां की रक्षा करें। वो हमारी मां है। हम केमिकल से हमारी मां को मारने का पाप नहीं कर सकते हैं। हमें हमारी धरती मां को बचाना होगा। साथियों, भारत 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प का सबसे बड़ा आधार है पूर्वी भारत का विकास। इसके लिए हम मिशन पूर्वोदय पर काम कर रहे हैं। इसमें बंगाल की भूमिका बहुत बड़ी है। बंगाल की प्रगति से पूर्वी भारत की गति बढ़ेगी। भाइयों बहनों, विकास के इस अभियान में हमें

0: एक और बात का ध्यान रखना है, विकास की पहली शर्त है जिसे हमें कभी भूलना नहीं है और वो है शांति, सौहार्द और सामाजिक स्थिरता। हमें बंगाल की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक ताने बाने को और मजबूती देनी है। हमें सबको साथ लेकर चलना है। साथियों, कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहां से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा। मैं चाहूंगा इस बार बंगाल कोने कोने में योग दिवस के आयोजन हो। आप सब योग करें, योग दिवस का हिस्सा बने, इसी अनुरोध के साथ मैं एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज जब हम उत्साह और उमंग के साथ पश्चिम बंगाल दिवस मना रहे हैं तो मेरा आप सबसे आग्रह है, अपना मोबाइल फोन निकालिए, अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए और हम सब मिलकर के आज ये बंग दिवस मनाएं। सबके मोबाइल फोन की लाइट चालू हो, मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Moving towards a future, towards a Viksit Bharat developed India by 2047, we hope and pray that the resolve and the vow of the Prime Minister bears fruit and we see all those great results in our lives, in the lives of the country, in the lives of everyone to be there in the future.
2: धीरे धीरे कार्यक्रम अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। अब समय है आपसे विदा लेने का। श्रोताओं, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में प्रस्तुति सहयोग दिया श्री एस वाई खान ने और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्री प्रमोद कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। इसी के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह अपने साथी कमेंटेटर वैभव ज्योत्सना श्रीवास्तव के साथ आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 5:35:17 हुए हैं। अब हमारे आज के तीसरी सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम युवा संसार।

आज का कार्यक्रम सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। नमस्कार साथियों, मैं आप सभी साथी याचना। साथियों, कार्यक्रम में आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज के दिन हम मनाते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। और इस दिवस की बात करें तो इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2001 में की गई थी, जिसका उद्देश्य उन लाखों लोगों के प्रति सम्मान और सहानुभूति व्यक्त करना है जो युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं के कारण अपना घर, अपना देश और अपनी पहचान छोड़कर दूसरे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हुए हैं। साथियों, यह दिन हमें यह याद दिलाता है कि शरणार्थी भी हमारी तरह ही इंसान हैं, जिनके पास सम्मान, सुरक्षा और बेहतर जीवन जीने का पूरा अधिकार है। और अगर हम देखें तो दुनिया भर में आज भी करोड़ों लोग युद्ध और संघर्ष के कारण अपने घरों को जो है छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और अपने घरों से बेघर हो चुके होते हैं। और शरणार्थी शिविरों या फिर अन्य देशों में कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यापन कर रहे हैं। साथियों, विश्व शरणार्थी दिवस हमें यह सिखाता है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और हमें यह परिस्थिति में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि हम सभी मिलकर सहयोग, करुणा और सम्मान की भावना अपनाएं तो शरणार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है और एक अधिक समावेशी तथा मानवीय समाज का निर्माण किया जा सकता है। और साथियों, अगर देखें तो आज है शनिवार और शनिवार के दिन लेकर आते हैं हम आप सभी के लिए रोजगार समाचार विशेषांक, जिसमें सबसे पहला रोजगार समाचार रहेगा उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से। उन्होंने असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर और फोडर असिस्टेंट के पद की भर्ती निकाली है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कुल रिक्तियां 90 रहेंगी, जिसमें असिस्टेंट AO यानी कि असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिस के 7 पद और फोडर असिस्टेंट के 82 पद रहेंगे। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में, जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो। यहीं पर अगर हम बात करें तो असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर ग्रेड 3/82 में जो है वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में, और वो भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। और फोडर असिस्टेंट ग्रुप 3 की बात करें और इसका जो है पद वो 1 रहेगा, उसमें आपके पास BSc एग्रीकल्चर होनी चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो इसमें 21 से 42 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन इसके 21 जून 2026 तक स्वीकृत है। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, ssc.uk.gov.in। यहीं पर अगला रोजगार समाचार है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ओर से। उन्होंने अप्रेंटिस के लिए सूचना जारी की है। इसमें कुल रिक्तियां 4500 रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो स्नातक से उत्तीर्ण, और आयु सीमा की बात करें तो 20 से 28 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन जो है इसके वो 22 जून 2026 तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, centralbank.bank.in। इसके अलावा इंडियन नेवी ने BTech कैडेट की भर्ती के लिए सूचना जारी की है। इसकी कुल रिक्तियां 60 रहेंगी और शैक्षणिक योग्यता इसमें 12वीं पास रहेगी। साथ ही साथ आपको जो है JEE मेन देना होगा और वो उसका जो स्कोर कार्ड है वो भी आवश्यक है। इसमें आयु सीमा 17 से 19 वर्ष रहेगी और इसके जो अंतिम आवेदन है वो 29 जून तक लिए जाएंगे। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, joinindiannavy.gov.in। और अगर हम पद की बात करें तो वो सब लेफ्टिनेंट रहेगा। और यहीं पर जो है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की ओर से लोअर PCS के विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें कुल पद जो है वो रहेंगे 2587। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास ग्रेजुएट, साथ ही साथ आपको जो है UPPET क्वालिफाइड होना चाहिए 2025 का। इसकी आयु सीमा की बात करें तो वो 21 से 40 वर्ष रहेगी और इसके आवेदन 25 जून 2026 तक स्वीकृत हैं। अगर हम आपको बताएं कि इसमें जो पद हैं वो क्या क्या रहेंगे तो मंडी सुपरवाइजर, सेंटर इंचार्ज, आमीन, ऑक्शनर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल, असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट, क्लर्क कम टाइपिस्ट, कैशियर कम क्लर्क, अकाउंटेंट्स क्लर्क, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट चाकबंदी ऑफिसर,
और ऑडिटर, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर। और आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, जो रहेगी upssc.gov.in। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनवा देते हैं एक गीत, जो रहेगा मैं वापस आऊँगा फिल्म से, जिसको गाया है दिलजीत दोसांझ ने, इसके बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और इसको संगीत दिया है AR रहमान ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मैं वापस आऊँगा फिल्म से ये गीत, जिसको गाया था दिलजीत दोसांझ। और साथियों ने इसके बोल लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत दिया था AR रहमान ने। और अगला रोज़ का समाचार है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ओर से उन्होंने विभिन्न पदों पर जो है अप्रेंटिसशिप की सूचना जारी की है। कुल पद इसके लिए 28 रहेंगे और अगर हम बात करें तो उसमें डीजल मैकेनिक के 13, इलेक्ट्रिशियन के 2, मशीनिस्ट के 4 और वेल्डर के 3, इसके अलावा पेंटर के 2, COPA के 2 और स्टेनो हिंदी के 2। और अगर हम इनकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो है अभ्यर्थी को वो 10वीं पास होना आवश्यक है। इसके अलावा ITI में रेलेवेंट ट्रेड में जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। आयु सीमा इसकी 18 से 30 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन इसके 28 जून 2026 तक स्वीकृत है। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, apprenticeshipindia.gov.in। ये आवेदन करने के लिए है। और यहीं पर आपको बताएं कि और जानकारी के लिए आप इसकी दूसरी वेबसाइट hartans.gov.in पर जा सकते हैं। इसके अलावा जो है न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अप्रेंटिस की सूचना जारी की है। इसकी कुल रिक्तियां 550 रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको जो है वो स्नातक में उत्तीर्ण किसी भी विषय में हो सकते हैं। आयु सीमा इसकी 21 से 30 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन इसके 6 जुलाई 2026 तक रहेंगे। और वेबसाइट जो इसकी वो रहेगी newindia.co.in। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, newindia.co.in। यहीं पर हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेशर इलाहाबाद में जो है वो रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भर्ती निकाली गई है। कुल रिक्तियां 543 रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो रिव्यू ऑफिसर के लिए जिसके पास 138 है, उसकी बैचलर्स डिग्री और जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए या फिर डिग्री ही कंप्यूटर साइंस में या फिर ओ लेवल या CCC सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। यहीं पर जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसकी भी शैक्षणिक योग्यता यही रहेगी और इसके पद 380 रहेंगे। कंप्यूटर असिस्टेंट के जो हैं वो 25 पद हैं, लेकिन इसकी शैक्षणिक योग्यता बैचलर्स डिग्री साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज या और इसके अलावा इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए आपकी, जो रहेगी 25 शब्द पर मिनट। और इसकी आयु सीमा जो है वो रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए 21 से 35 वर्ष रहेगी और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए 18 से 35 वर्ष रहेगी। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, allahabadhighcourt.in। और यहीं पर उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के पद पर जो है

भर्ती निकाली है और इसकी सूचना जारी की है। इसके कुल पद 209 रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास और UPPET उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष रहेगी। अंतिम तिथि जो है आवेदन करने की वो 9 जुलाई 2026 रहेगी। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, uppssc.gov.in। और आगे अगर हम बात करें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पंचकुला की ओर से इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी और टेक्नीशियन सी के पद के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके कुल पद 7 रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी के जो है वो एक पद है और इसमें आपके पास 3 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए और आपके जो अंक है वो 60% से जो है वो होने चाहिए। टेक्नीशियन के लिए जो है आपको SSLC और या फिर ITI या NAC में इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो है सर्टिफिकेट हासिल करना होगा और इसमें आयु सीमा 18 से 28 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन इसके 2 जुलाई 2026 तक स्वीकृत है। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, bel.india.in। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए भर्ती की सूचना जारी की गई है। इसके कुल पद 1500 रहेंगे। शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट या फिर फाइनल ईयर के जो अभ्यर्थी हैं वो भी दे सकते हैं, लेकिन जो उनकी ग्रेजुएशन है वो 30 सितंबर 2026 तक पूरी होना आवश्यक है। आयु सीमा इसकी 21 से 30 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन इसके 8 जुलाई 2026 तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें, sbi.bank.in। और अगला रोजगार समाचार हम आपको बाद में देंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा देते हैं एक गीत जो रहेगा काई। इसको गाया है अमित त्रिवेदी ने, इसके बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और इसको संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मांझा फिल्म से, माफ़ कीजिएगा, काईपोचे फिल्म से एक गीत जिसको गाया था अमित त्रिवेदी ने, इसके बोल लिखे थे स्वानंद करकरे ने और इसको संगीत दिया था अमित त्रिवेदी ने। और बात करें अगले रोज़गार समाचार की, तो वो रहेगा नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेस की ओर से। उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट के 4, यहीं पर स्टेनोग्राफर के 7 और जूनियर असिस्टेंट के 39 जो है वो पद निकाले हैं। इसकी शैक्षणिक योग्यता जूनियर

edu.in। और अगला रोज़गार समाचार है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली की ओर से, उन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पद की भर्ती के लिए जो है सूचना जारी की है। इसके कुल पद 15 रहेंगे और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो वो 10वीं पास, इसके अलावा आपके पास जो है वो ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर आप अप्रेंटिसशिप भी जो है वो उसका सर्टिफिकेट दे सकते हैं। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस भी जो है वो आप उसमें दे सकते हैं। आयु सीमा इसके 18 से 28 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन जो है वो इसके 4 जुलाई 2026 तक स्वीकृत होंगे। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें igib.res.in, और एक बार फिर से दोहरा देते हैं igib.res.in। और उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन ने जो है वो एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती के लिए सूचना जारी की है। इसकी कुल रिक्तियां 722 रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 12वीं पास, और आपको जो है वो UPPET 2025 जो है क्वालिफाइड होना चाहिए। इसकी आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष रहेंगी। अंतिम आवेदन इसके 24 जून 2026 तक स्वीकृत हैं। अगर हम आपको इसकी वेबसाइट बताएं तो वो रहेगी upssc.gov.in। एक बार फिर से दोहरा देते हैं upssc.gov.in। और यहीं पर अगला रोज़गार समाचार रहेगा। BSNL की ओर से उन्होंने जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के पद की भर्ती निकाली है और इसकी सूचना जारी की है। इसकी कुल रिक्तियां 100 रहेंगी। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो BTech की डिग्री होना आवश्यक है, जो रहेगी टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो कंप्यूटर और इलेक्ट्रिकल या फिर IT। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकती है या फिर आप जो है वो MSc भी हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस में। आयु सीमा की बात करें तो वो 20 से 30 वर्ष रहेगी। अंतिम आवेदन इसके 3 जुलाई 2026 तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर सकते हैं जो रहेगी bsnl.co.in। और अगला रोजगार समाचार है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की ओर से उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती के लिए सूचना जारी की है। कुल पद इसमें 24 रहेंगे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के, जो फार्मासिस्ट और रेडियो जो हमारे एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं उनके। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और फार्मेसी में डिप्लोमा, साथ ही साथ फार्मासिस्ट का पंजीकरण होना आवश्यक है। एक्सरे में जो है आपको 12वीं पास होना चाहिए और रेडियोग्राफी में 2 वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है। आयु सीमा इसकी 18 से 28 वर्ष रहेगी और अंतिम आवेदन इसके 7 जुलाई 2026 तक स्वीकृत हैं। आप सभी इसकी वेबसाइट नोट कर लें जो रहेगी cistrect.cisf.gov.in। और कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आपसे मिलेंगे फिर, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम युवा संसार, ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है। उन्होंने आज कहा कि श्री मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर आदिवासी समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। श्री मोदी ने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का उल्लेख किया।
1: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके 68वें जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
1: आज यहाँ सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास हुआ है। रेल, रोड, कृषि, इससे जुड़ी ये परियोजनाएं बंगाल को नई गति देगी। इन परियोजनाओं से यहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं बंगाल के लोगों को इन विकास परियोजनाओं की बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी की। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों ने योगदान दिया है। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन FDC दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर विशेषज्ञ समिति की समीक्षा के बाद ये फैसला लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA कल होने वाली नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के तहत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये अभ्यास पूरे दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल रहे। भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। बोलीविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने देश भर में ईंधन की कमी, रिकॉर्ड महंगाई और लगभग 50 दिनों से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों और सड़कों की नाकेबंदी के बाद पूरे देश में आपातकाल की घोषणा की है। चेन्नई में तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान ने भारत को 219 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने चौथे ओवर में बिना किसी नुकसान के 35 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्स पर यह आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आज 7:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष विषय पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित कार्यक्रम संस्कृति। वार्ताकार होंगे संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के सचिव। रात 9:30 पर आप प्रसारण सुनेंगे राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के बारे में। संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 10:00 बजे। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से आज आप सुनेंगे 7:45 पर सायं नाटक। गर्मी की धूप छांव, प्रतिभागी होंगे निक्की, निशांत, अंकुश, अंशिक, यशिका, साहिल, मनीषा और खुशबू। रात 8:10 पर होगा कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 8:25 पर और एक फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा रात 9:15 पर। ये सभी कार्यक्रम आज आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। अब प्रस्तुत है कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कल प्रातः 6:30 पर आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व व संबोधन का सीधा प्रसारण। प्रातः 10:30 पर आप सुनेंगे समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम पीपल पद्म में श्री SKM मीदा नद समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित समारोह का सीधा प्रसारण। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे एडक बॉस्टन ओल्ड ट्रेफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर स्टेडियम इंग्लैंड से भारत और दक्षिण अफ्रीका के मध्य खेले जाने वाले ICC महिला T20 मैच का आंखों देखा हाल। देर रात 11:10 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर समाचार सेवा प्रभाग द्वारा निर्मित कार्यक्रम में वन्य जीवन। वार्ताकार होंगे पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव। आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कल प्रातः आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना 6:05 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा प्रातः 7:15 पर। समसामयिक चर्चाओं पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुबह सवेरे प्रस्तुत होगा 7:35 पर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार। प्रातः 10:10 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। दोपहर 1:10 पर आपके अनुरोध पर फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम फोन इन आधारित रहेगा। प्रातः 10:45 पर कार्यक्रम फिल्म संगीत। प्रातः 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बालकुंज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, स्वदेश प्रेम, महाराणा रणजीत सिंह पुण्यतिथि के बारे में साथ ही डॉक्टर रंजना दलाल जी से बातचीत सुनेंगे। विषय रहेगा बच्चे अपने पढ़ाई और छुट्टियों में मौज मस्ती का संतुलन कैसे बनाएं। दोपहर 12:30 पर घर आंगन। शाम 5:30 पर कार्यक्रम युवा संसार। खेत खलिहान दोपहर 2:30 पर और शाम 6:20 पर कार्यक्रम कृषि जगत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से कल प्रसारित किए जाएंगे। अब एक ज़रूरी सूचना। सुमित पुत्र अशोक कुमार जो कि लापता है 15 मई 2026 से, उम्र 32 साल, कद है 5 फुट 7 इंच, मजबूत जिस्म, चेहरे का रंग गोरा। यदि आपके पास इनके बारे में कोई भी सूचना है तो आप थाना आर्यनगर के प्रबंधक अफसर को सूचना दे सकते हैं। ये थी कुछ स्थानीय सूचनाएं। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। 9,44,00,000 किसानों के खाते में 18,880 करोड़ से अधिक की राशि डाली गई। मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने पलवल और हथीन में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत देश भर में मॉक ड्रिल की गई। हरियाणा में अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए निशुल्क बस सुविधा मिलेगी। और हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकूला में होगा। योग दिवस के उपलक्ष्य में आज विभिन्न जिलों में प्रायोगिक अभ्यास किए गए। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी की। इस किस्त के तहत 9,44,00,000 से अधिक किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की गई।
1: आज पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी की गई है। देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में लगभग 19,000 करोड़ रुपए सीधे भेजे गए। मैं देख के सभी लाभार्थी मेरे किसान परिवारों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता।
0: 23वीं किस्त में 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस उपलक्ष्य में पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसान की छोटी छोटी चिंताओं का भी हल हो।
2: मेरा किसान सशक्त और मजबूत हो, मेरे किसान डगमगाए ना, उसको ध्यान में रखते हुए आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर हमारे 15,95,644 किसानों के खातों में आज 319,13,00,000 रुपए की राशि सीधे उनके खाते में पहुँच जाएगी।
0: उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति के कारण इस योजना का लाभ किसानों तक बिना किसी भी चौलिए के पहुंच रहा है। केंद्र की मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल में क्लॉक टावर के नजदीक सफाई अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने झाड़ू लगाकर स्वयं भी श्रमदान किया और लोगों से भी सफाई अभियान में सार्थक सहयोग करने की अपील की। इस अवसर पर मोदी सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों की पुस्तिका भी लोगों को वितरित की गई। इस अवसर पर पूर्व विधायक दीपक मंगला भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि इन 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश आर्थिक तौर पर मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री पर देश के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है, दुनिया के अन्य देशों के लोगों का भी भरोसा बढ़ा है। अमेरिका की बाल्टिक कंसल्ट सर्वे कंपनी ने श्री मोदी को दुनिया में सबसे मजबूत और लोकप्रिय प्रधानमंत्री बताया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। श्री मोदी के हाथों में देश का खजाना सुरक्षित है और देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं, इसीलिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है।
3: 12 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हेल्थ में भी, कृषि में भी और शिक्षा में भी अभूतपूर्व प्रगति हुई है। जहाँ हाईवे बने हुए हैं, एयरपोर्ट दुगने से ज्यादा हुए हैं, मेडिकल कॉलेज दुगने से ज्यादा हुए हैं, एमपीबीएस की सीट दुगने से ज्यादा हुई है, एक्सपोर्ट जो रक्षा का उत्पादन है वो भी 35 गुना बढ़ा है, एक्सपोर्ट भी लगभग 57 गुना ज्यादा हुआ है, रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन 99% हुआ है, जिससे 64% डीजल की खपत कम हुई है।
0: श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का कार्य किया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया, महाकाल मंदिर, केदारनाथ व बनारस मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर आज हथीन में भी एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया और स्वच्छता का संदेश देते हुए सफाई अभियान चलाया। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रवीण डागर व हरजीत डागर भी उपस्थित रहे। श्री गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और जन कल्याण को समर्पित हैं।
4: मोदी सरकार के 12 वर्ष विश्वास के, विकास के और जल कल्याण के लिए। कहते नीयत साफ हो और नीतियां सही हो तो परिणाम जमीन पर देखने को मिलते हैं। मोदी जी की सरकार में और मोदी जी खुद की नीयत भी साफ है, उनकी नीतियां भी स्पष्ट हैं, इसलिए 12 सालों में देश के लोगों ने विकास के परिणाम देखे। मोदी जी पहले दिन से राष्ट्र निर्माण के मिशन को लेकर आगे बढ़े।
0: उन्होंने कहा कि राष्ट्र प्रथम प्रधानमंत्री की सोच का परिचायक है। श्री गुर्जर ने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्षों में जहां कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य हुए हैं, वहीं स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर बनाने का कार्य किया गया है। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कॉलेज खोले गए हैं। इन 12 वर्षों में रेल व सड़क संरचना का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल की गई। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरा दिन जारी रहा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी शामिल हुए। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसी विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। हरियाणा सरकार ने नीट परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए कल परीक्षा केंद्रों तक आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की साधारण बसों में निःशुल्क बस सुविधा दी है। नीट प्रवेश पत्र दिखाकर अभ्यर्थी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हरियाणा में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम पंचकुला में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज फरीदाबाद सहित विभिन्न जिलों में जिला प्रशासन व आयुष विभाग के संयुक्त तत्वावधान में प्रायोगिक अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मंडलायुक्त संजय जून तथा उपायुक्त आयुष सिन्हा मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, योग संस्थाओं के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों सहित लगभग 1400 लोगों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। कार्यक्रम के दौरान हरित योग की थीम अनुसार वृक्षारोपण भी किया गया। अधिकारियों व प्रतिभागियों ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और अधिक से अधिक लोगों को योग से जुड़ने का आह्वान किया। कैथल जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश राविश ने आज अतिरिक्त अनाज मंडी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रायोगिक अभ्यास में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में अधिकारियों, कर्मचारियों, खिलाड़ियों व विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। श्री राविश ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नायब सिंह के संबोधन का सीधा प्रसारण होगा। जिला स्तरीय योग कार्यक्रम में सांसद नवीन जिंदर और कलायत में विधायक सतपाल जांबा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में भी योग प्रोटोकॉल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। आयुष विभाग और पतंजलि के सहयोग से आयोजित इस शिविर में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने बताया कि इस शिविर से राज्य सरकार की फिट हरियाणा पहल को नई दिशा मिल रही है। शिविर के माध्यम से योग युक्त नशामुक्त हरियाणा एवं औषधीय पौधारोपण द्वारा हरित योग का प्रभावी संदेश दिया गया। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने आज हिसार स्थित नई सब्जी मंडी में अटल किसान श्रमिक कैंटीन का उद्घाटन किया। इस कैंटीन में किसानों, श्रमिकों व मंडी में कार्यरत मजदूरों को 10 रुपए में पौष्टिक व गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। पत्रकारों से बातचीत में श्री गंगवा ने कहा,
5: घोषित नई योजनाएं श्रमिकों के लिए है, चाहे वो बीमा की बात हो, 60 साल का कोई भी श्रमिक हो जाता है उसको केंद्र सरकार की तरफ से भी 3,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से दिया जाता है और हरियाणा में 3200 रुपए बुढ़ापा पेंशन दी जाती है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। और भी बहुत सी योजनाएं हमारे श्रमिक के लिए है, चाहे वो बेटी की शादी के अंदर कन्यादान हो, चाहे मकान बनाने की बात हो। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरे देश भर के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा मकान बनाने के देने का काम किया है।
0: खंड कार्यक्रम प्रबंधक अनु मलिक ने बताया कि हिसार में ऐसी 6 कैंटीन हैं।
6: कैंटीन का संचालन हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं उनकी महिलाएं करेंगी। इस कैंटीन में जो खाना मिलेगा 10 रुपए में थाली दी जाएगी और 20 रुपए में थाली रहेगी, 10 रुपए गवर्नमेंट देगा। टोटल हिसार में 6 कैंटीन चल रही है।
0: डिजिटल भारत निधि कोष के तहत दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी योजना के तहत BSNL को देश के

0: ग्रामीण व दूरदराज क्षेत्रों में 1.5 करोड़ FTTH कनेक्शन देने का लक्ष्य दिया गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉग इन करें indiapost.gov.in पर।
4: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी 1143 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सारे बण भाई ने बलजीत भाई की राम राम भाई। देखो जो दो पैर को जिक्र कर रहे थे हम के वे मौसम जो है परिवर्तनशील, क्योंकि कल भी बताया था और भाई आज भी जो बात हुई कि भाई 20 तो आज होली है 21 तारीख तक है, मौसम थोड़ा परिवर्तनशील रहेगा। बादलवाई भी देखने को मिली है भाई, कहीं कहीं गरज के साथ छींटे भी पड़े हैं, कितने थोड़ा बहुत तेज़ हा भी मियाँस के है, और भाई आंधी तेज हवाएं ये तो वे चालें जा है। और इसमें जो है देखो जी, ये चालें हैं और गर्मी का टाइम है तो इसमें बड़ी सावधानी बरतन की ज़रूरत पड़े है। ख़ास तौर पे ईब तो इतना को खास सा वो बात नहीं रही है, लेकिन पहले जब अपना गामा में सारा काम चूल्हा पर होया करदा भाई, लकड़ी गोशे का सारा काम होया करदा, तो भाई आग लागण का बड़ा डर रहा करदा। हालांकि आजकल जो है अपना व्हीकल है या बिजली के शॉर्ट सर्किट्स हैं, इन ते बड़ा खतरा बना रहे है, लेकिन हमने सावधानी फिर भी बरतनी पड़ेगी। चाहे कोई से भी अपने दो उपकरण हैं, हर चीज़ की सावधानी में जो है बचत हो है। तो पहले खलियाना के बारे में बताऊं थे भाई, खलियान तो अपने सारे के सारे निमट गए और ठीक तरीके से निमट गए, भगवान की दया ने सारा काम ठीक ठाक बनया है, एक आध छिटपुट घटना को छोड़कर ने। तो ईब जो मौसम है इसमें भाई आंधी आकर तेज हवाएं चाल पड़े हैं, तो भाई आग का हमें बड़ा बचाव रखना है, चाहे वो कहीं बात हो, चाहे घर में, गांव में, शहरों के अंदर है। और आगजनी की घटनाएं कई बार देखने को भी बड़ी मिली हैं और बड़ा भयंकर रूप धारण कर ले हैं, चाहे वो कारण कोई भी रहा हो। तो भाई जहाँ भी अपना बिजली के उपकरण हैं या जित अपनी वह हम स्विच वगैरह लगाए हैं या फिर MC वगैरह लगाए हैं या तार का कोई जोड़ है, तो उस जगह कोई ऐसी सामग्री ना रखें कि भाई शॉर्ट सर्किट अगर हो भी जा तो जल्दी से आग ना पकड़ पावे, क्योंकि उसमें बड़ा खतरा हो जाए। फिर अगर आग उसमें पकड़ गई तो फिर बड़ी समस्या हो जाए, क्योंकि वह आग कुछ तक गर्मी का मौसम, कुछ भाई तेज़ हवा चल पड़े तो उसमें बड़ी समस्या आ जाए, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाए। और हर जगह हमने सावधानी बरतनी पड़ेगी, चाहे वे बच्चे कितने खेल रहे हों, उसमें गाड़ी चलाते वक्त भी हमने अच्छी तरीके ध्यान देना है कि लंबा सफ़र तय ना करें, गाड़ी कई बार गर्मा जाए आ करें, उसमें भी कोई है चिंगारी हो उसके है। और ये खास तौर पे जो आजकल भाई इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चल रही है इनमें भी थोड़ा दिक्कत आ जाए है, तो बड़ी सावधानी पहले अपनी चीज़ ने देख त्याग के सही तरीके से, और फिर जो है और जो अपनी गति है चलने की उसने भी थोड़ा हाथ धीमा रखें, ताकि कोई बात हो जाए तो सही तरीके से हम सही वक्त पे उस चीज़ पे काबू पा सकें। तो ये बड़ी सावधानी है, बात कहने में बड़ी छोटी छोटी है लेकिन बड़े काम की बात से, और अगर इन पर शुरुआत में अगर ध्यान दे रहे हैं तो फिर बड़ी दुर्घटना होते हैं बचा जा सके है। चलो ये तो बात अपना देखो आग से बचाव की थी और हमने करना भी चाहिए, लेकिन कुछ अपना जो खेती बाड़ी का काम है भाई, कपास की बात करें तो कपास में भाई निराई गुड़ाई, खाद की मात्रा डालना, भाई कितने जो है बूंदाबांदी होगी है पानी

0: बात का ठीक काम चाल गया है, और अगर नहीं चल रहा है तो फिर सिंचाई का हिसाब किताब हमने देखना। गन्ने फसल की बात करें तो गन्ना फसल में भी भाई निराई गुड़ाई, भाई कुछ काली कीड़ी मिली बग इनका कोई थोड़ा मोटा आक्रमण हो जाया करे तो उसके लिए अपना दवाई या अपना भाई जो है खरपतवार है उसना हम निकालते रहें। खरपतवार तो देखो कोई सी भी चाहे अपने दौरा फसल है, हर फसल में तो हमने खरपतवार निकालते रहना है, क्योंकि खरपतवार अगर आ जाए है तो फिर सारी की सारी फसल में कीड़े बीमारी आने का भी अंदेशा काफ़ी बढ़ जाए है। बाकी न्यू है कि वे बहुत सी फसलों का जो है बुआरा भी चल रहा है, चाहे हम बात करें चारे वाली फसलों में ज्वार की, भाई मोटे अनाज वाली बाजरे की, बैसाखी जो मूंग हवा तो आपने जाली है लेकिन जो दलहनी वाली आओगी उसकी भी हम बिजाई कर सके हैं। सोयाबीन की बिजाई भी अगले महीने शुरू हो जाएगी या इस महीने के आखिर तक शुरू हो जाएगी। और धान की जो रोपाई है वह तो भाई करने लाग रहे हैं, वो तो भाई चल ले रही है। लेकिन फिर वही बात आ जाए कि भाई धान की अगर हम उस जगह काश करें जितना अपने दौरे पानी पात के भरपूर मात्रा में साधन हो तो बढ़िया रहेगा। और फिर मानसून की बारिश आ जाए उस टाइम पे अगर लगाए जा तो भी बढ़िया है, नहीं तो यूँ देखें कि अगर अपने दौरे पानी पात के साधन कम हैं तो फिर दूसरी जो फसलें हैं मोटे अनाज वाली जो फसलें हैं वह हम ले सकते हैं, जिसमें पानी पात का भी कम खर्चा और जो है और भी मेहनताना है वो भी थोड़ा कम लागे, खर्चा कम और बचत हमने ठीक ठाक आ जाए, इस तरह का हमने काम करना चाहिए। साथ साथ में जो अपनी साग सब्जी वाली फसलें हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें भी हमने ध्यान रखना है कि वे बहुत सी जो फसलें हैं जिनकी हमने नई रोपाई करनी है, नई बिजाई करनी है, कुछ हैं कि नर्सरी में बिजाई करनी है, बताओ की बात करें, बैंगन की बात करें, भाई मिर्च की बात करें, टमाटर की बात करें, या फिर हम अगेती फूल गोभी की बात करें, भाई अपनी जो पालक है मूली की अगर हम काश्त करने की सोच रहे हैं तो पूसा चेत की किस्म, और जो पुरानी अपने दौरे भी खेत में खड़ी हैं तो उनमें अपना कच्ची अवस्था में जो है जो भी फल आ रहा है वो तोड़ कर नर बाज़ार में बेचने की कोशिश करें, तोड़े कच्ची अवस्था में, क्योंकि पकाई होने के बाद फिर उस पर जो भाव है वो हमने ठीक ठाक नहीं मिल पाता। तो इस तरीके का हमने ध्यान रखना पड़ेगा, और अपनी जो नई फसलें लेनी हैं उनके लिए अपना खेत की तैयारी, बीज का प्रबंध और वह बीज उपचार जो मात्रा बताई जा है, जितने हमने रासायनिक खादा की पूर्ति करनी हो है जो बताई जा है उस हिसाब से हमने इसमें काम करने हैं। बाजरे की बहुत सी किस्में हैं बात करें तो, और भाई दूसरी जो अपनी चारे वाली फसलों की उसमें भी कई किस्म आ रही हैं, तो सही तरीके से किस्मों का चुनाव करें और सही तरीके से बीज उपचार करके, क्योंकि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जिनमें बीज उपचार बड़ा महत्व रखे हैं, और बीज उपचार ऐसा हो है कि शुरू में अगर हम कर ले हैं तो फिर आगे चाल के जो बीज जनित जो रोग आ जाए हैं उन तुम्हारी फसल का बचाव हो जाए। और वे अपने दौरे खेती के साथ साथ में पशुधन भी साथ में रखें हमें, तो पशुधन खेती के ऊपर निर्भर है और खेती पशुओं के ऊपर निर्भर है, तो सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना पड़ेगा। और जो पशुधन है अपने दौरे उसका भी हमने सही तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पशुधन ईशा है कि अगर हम ध्यान ना देंगे तो भाई महंगा पशुधन है, और फिर अगर कोई छोटी मोटी भी हरी बीमारी है आगी तो फिर दिक्कत आ जाए है, पशु की बोध नहीं लिकड़ के दिंदी और जो हम उत्पादन उससे लेने की सोचे हैं वो उत्पादन भी हमने ठीक तरीके से नहीं मिल पाता, तो पशुओं में बात ध्यान देने की बहुत सी हो जाए हैं। तो भाई इससे विषय पे एक भैया ने बातचीत सुनवा दें, हालांकि पूर्व प्रसारित बातचीत है लेकिन सारी अण काम आण की है, और इस मौके पर तो हमने अपना जो पशुधन है उसमें टीकाकरण, भाई जो टीके लागे हैं क्यों जरूरी हो हैं, क्या तलवाने चाहिए, के बीमारी का इससे जो है निपटान हुआ है, तो इस सब जानकारी के लिए सुने ये बातचीत।
1: भाई, पशुधन की बात करते हैं तो उनका स्वस्थ होना, तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए कई तरह की समस्याओं से, बीमारियों से बचा के उनको रखना पड़ता है। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि गाय भैंसों में टीकाकरण कितना ज़रूरी। हमारे साथ डॉक्टर पवन कुमार कागड़ा जी हैं, जो कि वेटनरी सर्जन है, पशु चिकित्सक हैं, और कनीणा डॉक्टर
2: हाँ जी सर,
1: साहब आपकी जो पोस्टिंग है
2: बिल्कुल
1: वो
2: सर,
1: है, तो वहाँ से आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में।
2: थैंक यू सो मच।
1: ठीक ठाक हैं?
2: हाँ जी बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी
1: वेल,
2: खुशी हुई सर आपसे मिलकर।
1: अरे अरे अरे अरे,
2: हाँ जी सर,
1: हमें बहुत अच्छा लगा। और आज इस विषय पे बात करेंगे डॉक्टर साहब। पहले तो शायद आजकल ये एक अभियान भी चल रहा है आपका।
2: हाँ, ये एक्चुअली सर हमारा मुखरी और गलघोंटू का सर कंबाइंड वैक्सीन का अभियान चल रहा है।
1: मिलमा दोनों का?
2: हाँ
1: जी हाँ
2: मिलमा सर। ये पहले क्या होता था सर, ये साल में 4 बार इंजेक्शन हम लगाते थे पशुओं को, 2 बार मुंहखुरी के और 2 बार गलगोटू के
1: जी।
2: अब ये NADCP जो हमारी स्कीम है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसके तहत सरकार ने हमें बायोवेलेंट वैक्सीन दी है सर।
1: अच्छा,
2: इसमें मुंहखुरी और गलगोटू दोनों बीमारियों का टीका एक बार में लग जाता है। हाँ जी सर, ये हर 6 महीने के बाद रिपीट करना होता है सर। फिलहाल हमारा थर्ड फेज जो NADCP का है वो चला हुआ है सर,
1: तीसरा चरण एक तरह से।
2: हाँ, तीसरा चरण जो है NADCP का, जो हमारा कंबाइंड वैक्सीन का है, वो पूरा हरियाणा में बड़ा जोर शोर से है सर, और किसान भी इसमें बड़ा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं सर।
1: लेकिन कई जगह ये बातें आती हैं डॉक्टर साहब के, लोग ना जी पशु दूध तो चला जाएगा और इसमें नुकसान है ये, वो इतना सहयोग नहीं करते गाँव के लोग
2: सर। एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर हम देखें तो वो अलग अलग तरह की धारणाएं होती हैं सर इस चीज़ों में, हमेशा गरीब आदमी पिसता है सर। जो डेयरी वाले फार्मर हैं, जो पैसे वाले हैं, वो तो कई बार अपने खुद के पैसों से लाके भी वैक्सीन लगाते थे सर,
1: जब लगवाते हैं। हाँ जी, जरूरी है। हाँ जी, व्यापारिक स्तर पर,
2: वो व्यापारिक स्तर पे है सर, वो इतना ज्यादा नहीं सोचते सर। लेकिन गरीब आदमी सोचता है कि भाई अगर टीका लगा दिया तो शायद दूध कम हो जाएगा या दिक्कत आ जाएगी। ये सर धारणाएं जो हैं गलत तो नहीं कह सकते। इससे एक्चुअली दिक्कत क्या आती है कि जैसे हमने पशु को टीका लगाया
1: जी,
2: तो हम अपने बच्चों को भी इंजेक्शन लगवाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद बुखार में
1: आ जाता है।
2: हाँ, बुखार में आ जाता है सर। तो जैसे ही उसका जो इम्यून सिस्टम जब रिस्पॉन्स देता है, तो उसके साथ में जब बुखार बनेगा, उससे पशु का 2-4 टाइम दूध कम हो सकता है सर।
1: कोई घनी बड़ी बात नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपका 2-4-5-10 दिन अगर कम भी हो गया किलो, हाँ जी, किलो, हाँ जी, लेकिन पशु की तंदुरुस्ती तो बढ़ गई।
2: हाँ, तंदुरुस्ती बढ़ गई सर। जो ये बीमारी का जो हमारा अभियान चला हुआ सर वैक्सीनेशन का, इससे सिर्फ पशु मरता नहीं है सर, इससे पशु का प्रोडक्शन वैल्यू भी कम होती है। बाई चांस अगर किसी पशु को टीका नहीं लगा और उसको मुंहखुरी होगी, तो मुंहखुरी में सर 3-4 दिन बुखार रहता है, पशु दूध देना बिल्कुल बंद कर देता है 3-4 दिन के
1: ना
2: लिए,
1: कुछ खा सकता ना, खा चल सकता
2: ना, पी सकता, कमजोरी आती है। किसान को आर्थिक नुकसान होता है सर बहुत ज्यादा
1: जी।
2: हाँ जी, इसमें क्या है सर, दूध 1-2 टाइम हो सकता है कम हो जाए अगर किसी पशु में बुखार बना है तो। आप पशु चिकित्सक से संपर्क करके साथ में अपनी जो बुखार की गोलियां हैं वो दे सकते हैं, या कोई भी ताकत की चीज है साथ में मीठा दे सकते हैं जिससे कि पशु में ताकत बनी रहे।
1: नमक, खनिज मिश्रण, हाँ जी,
2: खनिज मिश्रण वगैरह है, और भी ताकत की चीजें हैं। आप पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप पशु को दे सकते हैं ताकि उसका दूध कम ना हो सर।
1: जैसे गुड़ का शरबत पिलाते हैं डॉक्टर साहब।
2: हाँ जी, हाँ जी,
1: है ना, वो भी कहते हैं दूध को थोड़ा सा ठीक ठाक।
2: हाँ, वो ठीक ठाक रखता है सर, गर्मी में बहुत महत्व है सर उसका।
1: हाँ,
2: क्योंकि गुड़ में क्या है सर कि गुड़ में एनर्जी के साथ में उसमें खनिज मिश्रण भी है, तो वो बहुत बढ़िया काम करता है सर पशुओं
1: जी जी जी जी
2: ठंडा रखने के लिए।
1: अच्छा, जब गलगोटू की बात करते हैं डॉक्टर साहब, गलगोटू में तो मृत्यु दर भी ज्यादा है।
2: हाँ, गलगोटू में सर बुखार बहुत तेज बढ़ता है, खून का जैसे बुजुर्ग कहते थे कि पानी बन गया इसमें।
1: हाँ जी,
2: इसमें एमोलिसिस हो जाती है सर, और कई बार टॉक्सीमिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर उसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है उसके अंदर, तो उसमें टॉक्सीमिया बहुत ज्यादा बढ़ गया। हम एंटीबायोटिक लगा के कीटाणुओं को तो कंट्रोल कर सकते हैं सर
1: जी,
2: लेकिन अगर बाई चांस उसमें जो टॉक्सिन्स हैं उसका अगर लेवल ज्यादा ही चला गया, तो फिर उसमें पशु को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता
1: है। बड़ा मुश्किल होता है, रुक सा जाता है।
2: हाँ, गड़ा रुक जाता है सर,
1: जिस तरह इसी नाम इसका गलगोटू है।
2: हाँ जी सर, इसलिए इसका नाम गलगोटू। और इसमें पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है सर, हो सकता है कि गलगोटू की बीमारी में गल ना घुटे, स्वेलिंग ना हो, घड़ घड़ पशु ना करे, उसके अलावा भी सर इसमें निमोनिया बन जाता है पशुओं में, और निमोनिया बनने के बाद पशु चिकित्सक के सामने भी बड़ी भयंकर चुनौती रहती है, बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ रहती हैं।
1: बिल्कुल,
2: तो हम बस ये रिक्वेस्ट करते हैं हर पशुपालक से कि भाई उस आर्थिक नुकसान से बचने के लिए अगर हम समय पर अगर टीकाकरण करवा लेते हैं सर, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है सर इलाज से।
1: तो इसके कारण क्या है गलगोटू के, मतलब इसमें कोई ऐसा कोई खास कारण हो, जिस तरह कई बार आपने निमोनिया की बात करी। हाँ, निमोनिया तो पशु को नाल देते हैं तब भी कई बार चली जाती है। हाँ, जीभ दाब करते हैं।
2: हाँ, जी,
1: वो सांस की नली में चली जाती है,
2: हैं,
1: तो आपने इसमें भी निमोनिया बताया।
2: हाँ जी,
1: इसमें निमोनिया हो जाएगा, इसके कोई और कारण भी है डॉक्टर साहब के, कोई इन्फेक्शन क्यों होता है?
2: इसका जो कीटाणु है वो मुख्य रूप से सांस की नली में या गले में रहता है।
1: ठीक है,
2: जैसे ही उसको उचित तापमान मिलेगा सर, वो अपनी संख्या बढ़ानी शुरू कर देता है सर।
1: अच्छा,
2: और जैसे ही उसकी संख्या बढ़ेगी, जो जहाँ वो लोकलाइज होगा, अगर वो गले में है, गले में सोजन, हाँ सर, वो जगह बना ली उसने, गले में सोजन आ जाएगी, लंग्स में गया, लंग्स में जाके उसने निमोनिया कर दिया, तो इस वजह से निमोनिया होता है सर। निमोनिया के बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक ये गलगोटू का जो कीटाणु है वो भी एक कारण है सर।
1: वो भी एक कारण उसका।
2: हाँ जी सर,
1: तो चलिए अब फिर हम दोबारा से टीकाकरण पे आते हैं। तो अब थोड़ा बताएं कि टीकाकरण के लिए किसान भाइयों के लिए आप कैसे जागरूक करते हो, उनके पास जाते हो, उनके घर पे जाके लगाते हो, क्योंकि जैसे कार्ड वगैरह बनते हैं आजकल, मुर्गी पहनाते हैं, उसके अंदर पूरी डिटेल होती है, उसके अंदर सारी की सारी, तो उसमें कैसे क्या आप अपना वो सब मैनेज करते हो डॉक्टर साहब?
2: सर हम जब

0: डोर टू डोर अभियान चलाते हैं, घर द्वार पे जाके जब टीकाकरण करते हैं तो हर तरह के लोग मिलते
1: जी
0: हैं। हम गए, अगर मान लो बाई चांस किसी फार्मर ने हमें मना कर दिया, वो
1: हाँ
0: हमें पूछता है कि जी इस मुर्गी का क्या फ़ायदा है, तो हम उसको बताते हैं कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभियान चलाया हुआ है, ये पशु का रजिस्ट्रेशन है, ये पशु का एक किस्म से आधार कार्ड
1: ये
0: है,
1: चिप एक तरह की है, उसके अंदर
0: हाँ जी
1: सारी
0: चिप है सर,
1: डिटेल है
0: उसमें सारी
1: उसमें।
0: डिटेल है, आप पोर्टल पे जाके अगर चेक करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि ये पशु किस मालिक का है सर,
1: जी
0: ये
1: जी
0: तो
1: जी
0: पशु के लिए है और उसके मालिक की उसकी ओनरशिप के लिए है सर।
1: बिल्कुल
0: दूसरा जो टीकाकरण है सर, बहुत सारी क्यूरीज होती हैं किसानों की कि जी दूध सूख जाएगा, तो उनको थोड़ा समझाना पड़ता है, साथ में थोड़ा अपनापन दिखाना पड़ता है सर, क्योंकि
1: पारिवारिक
0: वेटनेरियन का जो काम है वो फैमिलियर होके ही हो सकता है सर,
1: होके ही है,
0: पारिवारिक होके
1: ये
0: हो
1: नहीं कि
0: सकता है
1: मतलब
0: सर,
1: उसको
0: बिल्कुल
1: दबड़काओ धमकाओ
0: ना
1: कुछ
0: ऐसे नहीं
1: करो
0: चलता
1: ना
0: सर,
1: कि भाई
0: बिल्कुल
1: जबरदस्ती लगवाना है,
0: हाँ जी हाँ
1: उसको
0: जी
1: पहले
0: सर,
1: उसके मन में उतारो
0: पहले
1: बात
0: उसके
1: है।
0: मन में उतारनी पड़ती है सर,
1: हाँ हाँ हाँ
0: हाँ जी
1: हाँ तो इसमें कहीं कोई मुश्किल आती हो?
0: सर, मुश्किलें आती हैं लेकिन समझाने के बाद मान जाते हैं सर फार्मर, वो मानते इसलिए हैं कि हमें कई कई साल हो गए फील्ड में काम करते हुए सर, लगभग
1: हाँ
0: सारे जानते हैं, तो एक विश्वास सा बढ़ जाता है सर,
1: अच्छा
0: हाँ जी पशु चिकित्सक के प्रति जो है कि हमने नोट भी करी है सर, किसानों का जो आज भी अगर भाव है वो बड़ा अच्छा रहता है सर, हमारे प्रति जो फीलिंग्स हैं
1: अच्छी बात
0: हाँ
1: है।
0: बड़ा सहयोग
1: देखो
0: रहता है, तो हाँ जी सर,
1: देखो पशुधन के भी, पशु को धन इसीलिए कहा जाता
0: हाँ
1: है
0: जी सर,
1: कि वो खेती के साथ साथ हमारे
0: खेती के
1: घर
0: साथ
1: के
0: साथ
1: सारा
0: बिल्कुल
1: आधा
0: सर,
1: तक फालतू खर्चा वो निकाल देता है जीवन
0: बिल्कुल
1: काल
0: सर, बिल्कुल
1: और
0: सर,
1: उसकी संभाल करना, उसको तंदुरुस्त रखना। अच्छा उसके साथ फिर उसकी चराई पिलाई की बात
0: चराई
1: थोड़ा
0: पिलाई
1: सा,
0: की बात है
1: जैसे
0: सर,
1: खास तौर पर खुदा ना खास्ता अगर मुंह खुर हो जाता है तो डॉक्टर साहब ना तो पशु चर सकता
0: हाँ
1: है,
0: जी सर, बिल्कुल
1: चलने से भी नकारा सा हो जाता है वो, क्योंकि छाले मुंह में भी और उसके खुरिया में भी इतने
0: हाँ जी
1: ज़्यादा
0: हाँ
1: हो
0: जी
1: जाते
0: सर,
1: हैं, तो उस वक्त क्या सावधानी बरतने के लिए आप सलाह देते हो?
0: सर मुंह में अगर छाले बन गए तो उसमें हम ग्लिसरीन वगैरह लगवा देते हैं, लाल दवाई से मुंह दिलवाते हैं, साथ में रेगुलरली उसका सुबह शाम टेम्परेचर चेक करते हैं, अगर मान लो
1: अच्छा
0: बुखार है उसके तो बुखार की दवाइयाँ दिलवाते हैं सर, साथ में अगर और कोई सिम्टम आ गया, सिंपल अगर बुखार है और पशु चर पी नहीं रहा है तो वो 2-3 टाइम में बुखार उतर जाता है सर मुखरी में,
1: अच्छा
0: लेकिन अगर साथ में और कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन है, कई बार हो जाता है, तो उसके लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स वगैरह लगाने की आवश्यकता है, अकेले मुखरी में इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक देने की जरूरत नहीं है,
1: जरूरत नहीं है,
0: हाँ जी
1: लेकिन साफ सफाई जरूर
0: हाँ,
1: रखनी
0: साफ
1: है
0: सफाई उसकी मुँह की, उसके पैरों की
1: पैरों की।
0: और उसके ठाण की, उसके जो पानी पिलाने के जो बर्तन हैं, दूसरे पशुओं से हमें उसको दूर भी रखना है, जो उसका चारा है वो भी अलग रखना है, तो ये सावधानियाँ प्रत्येक किसान को बरतनी पड़ती हैं सर उस टाइम पे, और बरतनी चाहिए सर ये,
1: कई बार डॉक्टर साहब हम ये करते हैं कि सावधानी, मतलब 10 पशु हैं, 5-4 के लगवा लिए, 6 के लगवा लिए, 2-4 छोड़ दिए, ठीक है ना, ये तो ठीक है तंदुरुस्त है, क्या करें, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं गलती हो जाती है मुझसे।
0: सर गलती हो जाती है, लेकिन हमने फील्ड में ये नोट किया है कि अगर लगभग 70-80% पशुओं को वैक्सीन लगवा ली
1: अच्छा
0: तो वो एक हर्ड इम्यूनिटी एक
1: हार्ड
0: चीज़ होती है
1: इम्यूनिटी जो
0: सर,
1: है वो डेवलप हो
0: हाँ जी सर,
1: जाती
0: तो
1: है,
0: हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उससे फिर दिक्कत नहीं आती सर वैक्सीनेशन करने के बाद
1: छोटे काटड़ू बाछड़ू उनको।
0: सर, 4 महीने से कम को हम नहीं लगाते, 4 से 8
1: अच्छा
0: महीनों को, 8 महीने के जो हमारे जो बछड़े कटड़े हैं उनको हम वैक्सीन लगाते हैं, उनको फिर दोबारा से बूस्टर डोज फिर देनी पड़ती है सर 4 महीने
1: अच्छा
0: के बाद,
1: बूस्टर डोज भी देते हैं
0: उनको
1: उसमें?
0: बूस्टर डोज भी देते हैं सर, और जो हमारी जो कंबाइंड वैक्सीन आई है इसमें 7 महीने से जो ज़्यादा गैप बढ़े पशु,
1: हाँ ये सवाल था हमारा कि अगर
0: हाँ जी
1: पशु क्या
0: सर,
1: बने तो।
0: हाँ जी सर, 7 महीने से जो ज़्यादा के क्या बड़े पशु हैं उनको हम नहीं लगाते सर, उनकी वैक्सीन हम रख लेते हैं, जैसे ही पशु ब्याएगा उसके तुरंत बाद हम उसको लगा देते हैं सर
1: तो
0: वैक्सीन,
1: उसको भी लगाओगे जो नवजात बछड़ा है कटड़ा है
0: ना
1: उसमें?
0: नवजात को नहीं लगेगा सर, नवजात में तो क्या है कि माँ से ही एंटीबॉडी आ जाती है, दूध जब पीता है ना बच्चा
1: अच्छा अच्छा
0: तो
1: अच्छा अच्छा
0: उससे
1: अच्छा
0: एंटीबॉडी वो गेन कर लेता है, बाकी माँ को लगा देते हैं सर ब्याने के बाद,
1: ये ठीक है
0: हाँ जी,
1: लगातार।
0: छोटे बछड़े बछड़ियों में जो है कटड़े कटड़ियों में वो 4 महीने के बाद लगाते हैं,
1: अच्छा इसमें डॉक्टर साहब सिर्फ गाय भैंसों को लगाते हैं या बाकी और भी पशु है, जिस तरह भेड़ बकरी हो गया, सुअर है
0: सर
1: या जो
0: ये
1: दूसरे?
0: वैसे तो जो बाईफुटेड एनिमल है जो बोलते हैं जिनके खुर होते हैं, दो खुर
1: हाँ
0: होते हैं उनको लगाते
1: दो
0: हैं,
1: फाड़े खुर हो जिनके,
0: हाँ
1: मतलब
0: जी दो
1: जो
0: फाड़े जो खुर
1: हाँ
0: होते हैं उनको लगाते हैं, लेकिन उसमें भेड़ बकरियों के लिए अलग से आती है वैक्सीन,
1: अच्छा अच्छा
0: हाँ
1: अच्छा
0: जी
1: अच्छा
0: वो अलग वैक्सीन है मुखरी, उसमें सिंपल मुखरी की वैक्सीन आती है, सूअरों के लिए भी आती है,
1: जी
0: वो वैक्सीन हमारे पास समय समय पर आती रहती है, हम उनको लगाते रहते हैं,
1: लगाते हैं।
0: जो जो ये डुएल वैक्सीन जो हमारे पास आई है जो गलघोटू और मुखरी की जो मिक्स वैक्सीन है, ये सिर्फ गाय और भैंसों के
1: गाय और
0: लिए,
1: भैंसों के
0: गाय और
1: लिए,
0: भैंसों के लिए सर,
1: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा भी विभाग की तरफ से जो सुविधाओं की अगर बात करते हैं कि अभी पशुओं को खनिज मिश्रण उपलब्ध करवाना, क्योंकि आजकल डॉक्टर साहब बाजार बड़ा महंगा है,
0: हाँ जी हाँ जी सर,
1: खनिज मिश्रण लेने जाओ तो कंपनियों के जो है
0: हाँ
1: वो बहुत
0: कंपनियों के
1: महंगे
0: बहुत
1: महंगे
0: हाई
1: मिलते
0: रेट रहते
1: हैं,
0: हैं,
1: तो वहाँ भी उनको समझाते हो कि भी आप जो घर में बना के बाखर दो, खनिज मिश्रण दो, नमक दो, वो भी कहीं ना कहीं पशु को तंदुरुस्त रखेगा।
0: हाँ बिल्कुल सर, अभी मैं एक लेख पढ़ा था सर, उसमें मैंने देखा था कि
1: हाँ
0: जो बांझपन की जो समस्या है मोस्टली,
1: हाँ
0: हाँ जी
1: बिल्कुल
0: सर, वो उन पशुओं में रहती है, हमने नोट किया सर फील्ड में, मैं बहुत काम करता हूँ, घूमता रहता हूँ, मैं पूछता हूँ कि भाई क्या फीड खिलाते हो या घर का बाखड़ बना के खिलाते हो। तो हमने देखा कि लगभग जो फीड के ऊपर जो पशु ज़्यादा निर्भर हैं, जो अच्छी कंपनियां जो फीड बना रही हैं सर, उनमें दिक्कत नहीं होती, उनका फार्मूला फिक्स रहता है, बहुत बढ़िया फीड रहता है।
1: ठीक है।
0: लेकिन कई बार क्या होता है सर कि हमें पता नहीं होता, अमोनिया की मात्रा ज़्यादा होती है, यूरिया मिलाते हैं उसमें,
1: अच्छा
0: तो यूरिया की एक मात्रा अगर सीमित है सर उसके अंदर शरीर में जाएगी, जितनी रिक्वायरमेंट है 26 ग्राम तक, तो नुकसान नहीं करता। लेकिन कई बार अगर ज़्यादा मात्रा में अगर हम देते हैं तो वो शरीर में जाके नुकसान करता है सर, कहीं ना कहीं वो भी एक बांझपन का कारण बनता है सर।
1: वो भी,
0: हाँ
1: दूसरों
0: जी
1: डॉक्टर साहब जैसे गर्मियों में हरे चारे की कमी हो जाती है
0: हाँ जी
1: तो यूरिया उपचारित जो तूड़ी है वो देने की सिफारिश करी जाती है
0: सर,
1: कि भी
0: वो
1: आप
0: हाँ उसकी एक
1: यूरिया।
0: लिमिट जो है ना फिक्स कर रखी है सर, उससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते, उससे अगर ज़्यादा देंगे तो फिर वो उसके जहर का रूप ले लेता है सर।
1: हाँ, इसके अलावा देखो बार बार फिरने की समस्या है, फूल दिखाने की बात
0: हाँ
1: हम
0: जी हाँ जी
1: करते
0: हाँ जी
1: हैं और पशुओं में जो पेशाब लाल आने की जो समस्या हो जाती है तो ये कहीं ना कहीं चराई पिलाई से जुड़े हुए हैं।
0: हाँ, ये चराई पिराई से सर, जैसे पेशाब अगर लाल आ रहा है तो हो सकता है फास्फोरस की कमी हो,
1: हाँ
0: वो तुरंत
1: फास्फोरस
0: बहने के
1: में।
0: बाद होती है सर भैंसों में।
1: अच्छा
0: हाँ जी, अगर तुरंत बहने के बाद 3-4 दिन के अंदर अगर मान लो पेशाब में लाल रंग आ रहा है तो वो फास्फोरस की कमी की वजह से है सर।
1: जी जी जी
0: लेकिन हमारे पास सर फील्ड में बहुत सारे केस आते हैं, एक खासकर सर्दियों में
1: सर्दियों में।
0: जो छोटे कटड़े कटड़ियां हैं उनमें पेशाब लाल आने लगता है, लेकिन उनमें कोई बीमारी नहीं होती,
1: बीमारी नहीं होती।
0: मालिक हमसे पूछता है। तो वो जो मुख्य रूप से जो कारण है वो ये रहता है सर कि छोटे कटड़े कटड़ियां कई बार सर्दियों में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंडा पानी पी लेते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ जी, तो जिस पशु के अगर पेशाब में खून आता है तो उसमें एक बार एक दो टाइम ये करके देखें कि उसको पानी कम पिलाएं।
1: कम पिलाओ।
0: हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा करके दें, दिन में 3-4 बार, एक बार इकट्ठा ना पिलाएं। बाकी गायों में जो पेशाब में खून आता है वो इन्फेक्शियस चिचड़ी बुखार की वजह से भी हो सकता
1: चिचड़ी
0: है,
1: बुखार।
0: तो
1: हाँ
0: अगर इस
1: हाँ
0: तरह का
1: हाँ
0: है तो एक बार पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लीजिए।
1: लेकिन डॉक्टर साहब चिचड़ी बुखार अगर देखते हैं तो जितनी भी अपनी जो ये क्रॉस ब्रीड हैं
0: हाँ उन्हीं में है सर।
1: उन में ज्यादातर मिला। देसी तो अपना हर उस तापमान न कह लो
0: हाँ
1: या
0: जी
1: इस
0: हाँ
1: तरह
0: जी
1: की उसमें
0: सर।
1: सहन कर लेती
0: सर
1: है।
0: दूसरा ये है कि जो चिचड़ी बुखार है वो अपने वाले जो नॉर्मल चिचड़ है उनसे नहीं होता सर।
1: हाँ ठीक
0: हाँ
1: है।
0: जी, ये जो अमेरिकन जो गायें आई थी उनके साथ जो चिचड़ आए थे, जो इनके पैरासाइट हैं, ये उन्हीं से होता है। और
1: बिल्कुल।
0: अपने वाली गायें तो वैसे भी हार्डी ब्रीड है सर, रेजिस्टेंस है
1: हाँ
0: बीमारियों से,
1: अपने
0: उनमें बीमारियां
1: देसी
0: कम रहती हैं सर।
1: हरियाणवी की बात करते हैं, साहिवाल की बात करते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: अपनी
0: सर।
1: गिर है, ये सारी की सारी सूथरी बहुत देखण में है और दूध
0: हाँ
1: भी इनका
0: जी,
1: बहुत अच्छा,
0: दूध भी बहुत बढ़िया खट्टा
1: बहुत
0: रहता है
1: बढ़िया
0: सर,
1: इनका।
0: बिल्कुल
1: चलिए
0: सर।
1: फिर से थोड़ा सा बस यही कि ये जो अभियान इस वक्त चला हुआ है इसमें लोगों का सहयोग कितना अपेक्षित है आपको? आप क्या उम्मीद करते हैं कि भी लोग भी थोड़ा आपकी इस सेवा का फायदा लें?
0: सर इसके दो पहलू हैं वैक्सीनेशन के।
1: जी
0: एक तो हम चाहते हैं कि किसान इसलिए पार्टिसिपेट करें कि ताकि उनका आर्थिक नुकसान ना हो,
1: ठीक
0: क्योंकि
1: है।
0: अगर वो वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे तो सर पशुधन का बहुत मोटा नुकसान होता है, क्योंकि आजकल पशु सस्ते तो है नहीं सर,
1: ना जी
0: 1 लाख
1: ना,
0: से कम भैंस नहीं आती।
1: लाखों में भैंस हो
0: हाँ जी,
1: रही
0: लाखों
1: है,
0: में भैंस है सर,
1: करोड़ों में झोटे
0: और
1: हो रहे
0: हरियाणा
1: हैं।
0: तो वैसे भी आज पूरे विश्व स्तर पे जो है मुर्रा भैंसों के लिए प्रसिद्ध है,
1: प्रसिद्ध है, ठीक बात
0: तो
1: है।
0: हम चाहते हैं कि समय पर अपना टीकाकरण कराएं ताकि अपने पशुओं को बीमारी से बचाएं सर।
1: जी जी जी
0: दूसरा
1: जी
0: मानवीय पहलू भी है सर, कोरोना ने हम सबको सिखा दिया कि वैक्सीन जो है बहुत जरूरी है,
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही
0: तो
1: कहा
0: हम
1: सर।
0: अपने 2 किलो दूध के लिए सर अगर एक पशु की जान जोखिम में डालते हैं तो ये मानवीय रूप से देखा जाए तो ये गलत है सर।
1: ठीक बात
0: हम
1: है।
0: उसकी जान को जोखिम में डालने का हमें अधिकार नहीं है सर,
1: बेशक अनमोल धन है लेकिन
0: अनमोल धन है
1: उसकी
0: सर।
1: इसकी सुरक्षा का जिम्मा
0: हाँ,
1: हमारा
0: सुरक्षा
1: ही
0: का
1: है।
0: जिम्मा हमारा है, अगर हम उसका दूध पीते हैं उससे अगर हमारा परिवार चल रहा है सर, तो उसकी जिंदा रखने की, उसको बीमारियों से बचाने की सारी जिम्मेवारी हमारे ऊपर रहती है सर
1: हमारे और
0: उसकी।
1: बहुत छोटी छोटी समस्याएं आती हैं डॉक्टर साहब, जैसे अफारे की बात करते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी
1: थनेल्ले की बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे मानवीय लापरवाही की वजह से ही होता है कुछ ना कुछ।
0: हाँ बिल्कुल सर। अफारे का क्या है सर कि खाने पीने में लापरवाही होगी, या कोई नया चारा, या कई बार चारे में स्प्रे कर रखा है
1: या
0: तो
1: ओस का
0: ये,
1: भीगा हुआ है
0: हाँ उसका
1: चारा।
0: भीगा हुआ है, बासी डाल दिया,
1: जी
0: तो ये चीज़ें रहती हैं सर। या कई बार शादी ब्याह में बचा हुआ रहता है सर, हम ध्यान नहीं देते,
1: या
0: उठा कर वो ही डाल दिया।
1: कई बार पका जो है खाना है, कोई पूरी हो गई या
0: हाँ
1: कुछ
0: जी हाँ
1: और
0: जी
1: हो
0: सर
1: गया वो डाल देते हैं डॉक्टर साहब,
0: बिल्कुल
1: तो वो कहीं ना कहीं उसके लिए समस्या कारण बनता
0: सर।
1: है।
0: ये जब भी अमावस्या जैसे अपने
1: हाँ जो
0: होती है
1: भी मतलब
0: ना,
1: त्यौहार
0: होता
1: तीज
0: है,
1: त्यौहार
0: त्यौहार आते
1: आते हैं।
0: हैं,
1: हाँ
0: तो एक्चुअल में क्या है कि हम खासकर अपने देसी गायें को ढूंढते हैं सर।
1: जी
0: तो ये जो समस्या आती है ना हमारे साथ फील्ड में सर, ये हमारी गौ माता के साथ ज़्यादा आती है। तो मैं
1: जी
0: आपके माध्यम से एक बार जरूर कहना चाहूँगा कि
1: जी जी जी जी
0: जो रोटियां हैं वो आप इकट्ठी कर लीजिए,
1: अच्छा
0: एक दिन उसको देने की बजाय आप गौशाला की गाड़ी आती है उसमें डाल दीजिए, वो भी गायों के पास ही
1: हाँ वहीं
0: पहुंचती
1: वहीं
0: है।
1: जाएगी
0: हम क्या करते हैं, मोहल्ले में हमारे पास एक गाय है, सारा मोहल्ला उसी को दे देता है सर।
1: जी।
0: हाँ जी, उससे फिर वो एसिड बन के, अफारा बन के, वो दिक्कत आती है सर गाय।
1: दिक्कत आती।

0: देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा, और ख़ास तौर पर जो टीकाकरण की बात डॉक्टर साहब आपने कही है, इसमें हम उम्मीद करें कि भाई सहयोग करें, आगे बढ़ के जो अपने पशुधन को, जितने
1: हाँ
0: भी
1: जी
0: हमारे
1: बिल्कुल
0: पास है,
1: बिल्कुल,
0: बचे ना कोई,
1: हाँ
0: उसको
1: जी
0: टीकाकरण करवाएं और अपने पशुओं को तंदुरुस्त
1: तंदुरुस्त रखें जी
0: रखें।
1: बिल्कुल।
0: डॉक्टर पवन कागड़ा जी, बहुत आभार आपका, बहुत अच्छा लगा
1: थैंक यू सर,
0: आप आए
1: आपसे मिलके
0: और
1: बहुत अच्छा
0: इस
1: लगा
0: विषय
1: जी।
0: पर आपने जानकारी दी। से
1: हाँ जी सर,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।
1: थैंक यू सर, थैंक यू
0: नमस्कार
1: सर।
0: नमस्कार। बेहतर सुनी भैया ने बातचीत, और भाई ईब कराओगे भैया का मनोरंजन, भाइयों को रागनी सुनवाओगे, गायक कलाकार होंगे राजकिशन अगवानपुरिया और उनके साथी।
2: ये बड़ी मुश्किल है।

मैं तो सुनी भैया ने रागनी गाय कलाकार थे राजकृष्ण अगवानपुरिया और उनके साथी। और भाई थोड़ा हा जिक्र हम भी कर लें कि भाई देखो खेत में जब काम करें हैं, हालांकि मौसम परिवर्तनशील है, लेकिन फिर भी भाई चमका भी लकड़ा है, घाम भी तेज है, इसमें अपना भी और अपने पशुधन का भी सही तरीके से हमने ध्यान रखना पड़ेगा। खेत में अगर काम कर रहे हैं, घाम भी है, तो सिर पर थोड़ा अपना ईसा परना वगैरह लत्ता वगैरह न रखें कि भाई सीधी धूप हमारे सिर पर जागे ना लागे। और पशु का भी शायद है भाई छाया हम बांध दें, सांझ कभी गर्मी हो जाए, पानी पात कहीं भाई दिखाना पशु को, क्योंकि साफ और स्वच्छ ताज़ा पानी वो ज़रूरी हो जाए। और भाई जो ब्याताए पशु हैं कई बार उनको नहराई धुलाई वो भी अच्छी तरीके से तो होनी चाहिए। दिन में कई भाई अगर नहाए जाए तो और भी बढ़िया है। तालाब अगर साथ में है गांव में, साफ स्वच्छ पानी का तालाब है, भाई उड़ जाकर उन्हें लेटा ले आओ पशुओं ने तो और भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि उनको ठंडक सी मिलेगी। रात को जो है पंखा का इंतज़ाम, और भाई ज्यों ज्यों थोड़ी बहुत बूंदाबांदी बनेगी तो भाई मच्छर मक्खी भी परेशान करेंगे, तो भाई उनके लिए मच्छरदानी का, हालांकि जो पशुपालक भाई हैं पूरा इंतज़ाम रखे हैं, लेकिन फिर भी भाई मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे ताकि जो परजीवी हुए पशुआ ना सतावें। और उनके खाने पीने में भी सही तरीके का ध्यान, क्योंकि प्रोटीन युक्त और भाई जो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा दे, ऐसा जो है उनका संतुलित चारा दाना वो ज़रूर दें। भाई ज्वार हो जाए इस टाइम पे तो ज्वार का भी न्यू ना सोचें कि भाई नरी ज्वार गिर दें। हाँ ज्वार में भी एक बात ध्यान रखनी है हमने कि अगर आपने दोहरे बो रखी हमने ज्वार और भाई वह नई है, 2 महीने की हुई है, 1.5-2 महीने की होगी, उसमें पानी अगर नहीं आ रहा है तो सूखेगी ज्वार, पशु ने ना दें। पशु को ऐसी ज्वार दी जा जिसमें कई पानी पात लाग रहे हों, बढ़िया पानी आ रहे हों, तो वह पशु ने देवें, और उसके साथ भी सूखा चारा उसमें ज़रूर मिलावें। इन बातों का हमने ज़रूर ध्यान रखना है। और भाई ध्यान हमने समय का भी रखना है, क्योंकि कृषि जगत कार्यक्रम का समय तक करेंगे आड़े समाप्त, और आगे सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। आकाशवाणी का ये रोहतक केंद्र और इस सुनेंगे भाई कार्यक्रम ग्रामीण संसार। और भाई ग्रामीण संसार में देखो ग्रामीण जो परिवेश है इसमें पहले आदमी बहुत कम बीमार होया कर दे, स्वस्थ रहा कर दे। कारण के था कि भाई जो अपना खेत क्यार के काम थे, पशुओं के काम थे, पशुधन रखा कर दे। ये देखो पशुधन भी धीरे धीरे कम होने लाग रहा है, बहुत कम आदमी रखे हैं, और खेती बाड़ी का जो काम है वो सारा का सारा यांत्रिक काम हो गया। तो इसमें जो है हमारा जो शरीर थे जो हम मेहनत कराया कर दे वह कम होती चली गई। हालांकि मेहनत ये भी कर रहे हैं किसान भाई, और भाई काम काज ये भी खूब चल रहा है खेत में, लेकिन वह बात नहीं रही जो पहले सारा का सारा काम हम हाथ हाथ कराया कर दे और कई कई दिन लाग जाया कर दे काम कर दिया ना, लेकिन ईब जो है वो दिन वाला काम वो घंटे में शुरुआत होगी, और भाई घंटे वाला काम जो है मिनटा में होने लग गया, क्योंकि मशीनरी इतनी आ गई।

और जो तकनीक सेवा इतनी बढ़ गई कि हम काम तक रहें लेकिन बैठे बैठे ज्यादा काम करें। वो हाथ पाँ हलाने वाली बात जो पहले बड़े बुजुर्ग कहा करते ना कि मैं हाथ पाँ हला लिया कर, तो वह बात ही नहीं रही। शरीर ते पूरा पसीना नहीं निकल पाता। कारण यो है कि भाई फिर वो बीमारी शुरू हो जाए। तो देखो अगर खेत क्यार में काम नहीं है तो अपना थोड़ा बहुत योग प्राणायाम ये मनुष्य ने जरूर करने चाहिए, और छोटे बच्चों को इसमें थोड़ा हा प्रेरित करना चाहिए, ढाढ़े गिरने चाहिए कि भाई वह भी अपनी थोड़ी शारीरिक मेहनत करें ताकि शरीर स्वस्थ रह जा। क्योंकि कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो भी है, और उसके लिए वे भाइयों को पहले अग्रिम शुभकामनाएं दे दें। तो वे सभी श्रोता भाई बहनों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। तो कहने का मतलब यह है कि भाई थोड़ा बहुत हमने मेहनत शरीर की करनी चाहिए, थोड़ी कसरत करनी चाहिए, वो जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रह रहे। और भाई ईव कराओगे भैया का मनोरंजन, भाइयों को रागिनी सुनवा दें, गायक कलाकार होंगे मास्टर सतबीर सिंह बैंसवालिया और उनके साथी।

धर्म की चादर ओढ़ी।

सुनी भैया रागनी, गायक कलाकार थे मास्टर सतवीर सिंह बैंसवाल जी और उनके साथी। और बैंस रागनी के साथ है ग्रामीण संसार का समय आड़े समाप्त तो है। बलजीत भाई ने दें इजाजत, सारे बण भैया ने राम राम।

0: विकास के जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: 12 वर्षों के कार्यकाल में वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सभी को भागीदार बनाकर राष्ट्र विकास का जो मूल मंत्र है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके तहत उन्होंने जो एक लक्ष्य रखा है 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने

0: का भारत को, उसमें उन्होंने चार जो स्तंभ है उनकी पहचान की है, जिसे ज्ञान भी कहा जाता है, गरीब, युवा और अन्नदाता यानी कि हमारे किसान और नारियां। तो इन चारों जो वर्ग है उनके सशक्तिकरण पर सरकार ने लगातार बल दिया है। अगर हम हर बजट में देखें, जो भी प्रमुख संबोधन होता है प्रधानमंत्री जी का, उसमें इन वर्गों को सशक्त करने की बात की जाती है। और आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर्जना शर्मा जी और नीलू रंजन जी जुड़े हैं। इनसे हम समझना चाहेंगे कि इन 12 वर्षों में जो ये चार वर्ग है, इनको सशक्त करके कैसे जो देश को समृद्ध करने का सपना है उसको साकार करने की तरफ हम बढ़े हैं। सो आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम।
1: थैंक यू सोनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सर्जना जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं, लेडीज फर्स्ट कहा जाता है, सो आपसे मैं महिलाओं की ही बात करना चाहूंगी। जिस तरह का विकास महिलाओं का हुआ है और जो सरकार का मूल मंत्र रहा है कि विमेन्स डेवलपमेंट से आगे बढ़कर हमें विमेन्स लेड डेवलपमेंट यानी महिलाओं के नेतृत्व में विकास जो है उसकी ओर बढ़ना है, हमें बताएं कि इन 12 वर्षों में कौन से ऐसे परिवर्तनकारी रिफॉर्म्स हैं जो महिलाओं के लिए लाए गए हैं जिनको आप सबसे महत्वपूर्ण मानती हैं।
1: सोनू जी देखिए, महिला जो है वो कोई भी परिवार है, परिवार की धुरी महिला है, और जो एक अच्छा परिवार है वो एक अच्छे समाज का, और एक अच्छा समाज अच्छे राष्ट्र का निर्माण करता है। अगर महिला सशक्त है, अगर महिला समृद्ध, मेरा मतलब खाली पैसे से नहीं, और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसको समावेशी विकास कहते हैं, अगर महिला उस तरह की है तो वो पूरे अपने परिवार को बढ़िया करेगी, समाज को अच्छा बनाएगी और फिर राष्ट्र को। तो इसका मतलब धुरी जो है परिवार से लेकर राष्ट्र तक महिला के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता। भले ही आज से कुछ साल पहले तक महिलाएं बहुत घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन घर में रहते हुए भी जो उनकी अर्थव्यवस्था है, जो उनका मनी मैनेजमेंट है, जो उनका रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, पुरुषों को तो शायद बहुत चीजें घर की पता भी नहीं होती जितना वो खुद सब मैनेज कर लेती हैं। आपने देखा होगा कि कोविड में पूरी दुनिया की इकोनॉमी ध्वस्त हुई, लेकिन भारतीय महिलाओं को जिस तरह की ट्रेनिंग है पैसे को जोड़ने की और आत्मनिर्भरता का, जो उनका मूल मंत्र है, तो उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी रही, क्योंकि सेविंग की बहुत आदत है हमारी महिलाओं को। तो मोदी जी ने जो ये सोचा, तो उसमें देखिए दो तीन चीजें तो मैं कहूंगी कि जो सबसे अच्छी रही, एक है उज्ज्वला योजना और एक है हर घर नल हर घर जल। तो ये जो दो चीजें सुलभ हुई हैं महिलाओं को, उससे उनकी जो फिजिकल लेबर है वो कम हुई है, उनकी एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई है। आपको लकड़ियां बिनने जंगल में नहीं जाना और धुएं में काम नहीं करना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आपको सब्सिडाइज सिलेंडर मिल रहा है, तो आप सोचिए उसकी कितनी मेहनत कम हुई। खाना अच्छा बनेगा, वो भी खुद भी रिलैक्स रहेगी। दूसरा है, अगर हम देखें कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें थी जहां पे महिलाओं की आधे से ज्यादा एनर्जी पानी लाने में भी लगती थी
0: जी।
1: तो ये जल मंत्रालय ने जो काम किया है, हर घर नल जो पहुंचाया है, हर घर जल पहुंचाया है, उसका भी बहुत लाभ हुआ है। फिर आपने इनको कहा है कि जरूरी नहीं कि आप 10 से 5 की जॉब करने जाओ, अगर आपके घर के आसपास या अपने घर में बैठे आप क्रोशिया भी बुनते हैं, आप स्वेटर भी बुनते हैं, आपको सिलाई भी आती है, या आपके आसपास जैसे कि मखाना की खेती में आपने देखा होगा, मशरूम खेती, बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो लखपति दीदी बनी है उन्हीं चीजों से। जरूरी नहीं कि आपके पास बीए एमए की डिग्री हो, ऐसा भी नहीं है। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बनाए, जिसमें कि लगभग 91 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप है और 10 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन गई हैं
0: जी।
1: तो इस तरह की जो योजना, और दूसरा मुद्रा योजना जो है कि अगर अपने घर में मुझे कोई काम शुरू करना है, मुझे लगा कि मुझे एक सिलाई स्कूल खोलना है, मुझे लगा कि मुझे क्रोशिया सेंटर बनाना है अपने घर में, मुझे लगा कि मेरे पास जो स्किल है जो मुझे किसी स्कूल से नहीं अपनी फैमिली से ट्रेडिशनल मिली है, अगर मैं उसी को आगे विकसित कर, कौशल हुनर जो कि परंपरागत हमारे यहाँ आपने देखा कि कोई साड़ी बनाता है तो कोई लकड़ी का सामान बनाता है, तरह तरह की चीजें हैं, मतलब गिनाना मुश्किल है क्योंकि भारत में इतनी विविधता है। अब कुछ तो महिलाएं जैसे हल्दी उगा रही हैं, कोई मशरूम उगा रहे हैं, तो उनको जो लोन मिल रहा है सस्ती किश्तों में, मतलब कि उनको बहुत ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी, और मुद्रा लोन जो मिल रहा है इससे भी उनका जो लाइफ है वो बहुत आसान हुई है। दूसरा है शिक्षा को लेकर भी बहुत काम हुए हैं, KG to PG जो है कि आप KG से लेकर PG तक बच्चियां जो है वो पढ़ेंगी, और फिर ये है कि सुरक्षा का वातावरण। आप देखेंगे कि कई राज्यों में तो ऐसा था कि 6 बजे के बाद लड़कियां घर से नहीं निकलती। उत्तर प्रदेश का मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे कि तो अब देखिए वहां बेखौफ लड़कियां रात को 2-2.5 बजे तक भी आराम से घूम सकती हैं, क्योंकि सुरक्षा इतनी ज्यादा। जब तक माँ और बेटी को नहीं लगेगा कि वो सुरक्षित है, तो बेटी बाहर काम करने उसको कोई जाने नहीं देगा।
0: बहुत इंपॉर्टेंट सशक्तिकरण
1: ये बहुत, हाँ, सुरक्षा की भावना। वो जो इस सरकार ने सुरक्षा की भावना दी, महिला थाने खोले, महिला हेल्पलाइन खोली कि आप तुरंत फोन कीजिए, आपको मदद मिलेगी। और एक और देखिए कि महिलाओं को मैटरनिटी लीव में डबल किया है, 3 महीने से 6 महीने किया। ये भी एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है महिला का।
0: बिल्कुल,
1: मातृत्व सुरक्षा योजना है, शिशु योजना है, इन सब योजनाओं ने महिलाओं के जीवन को आसान किया है, सुविधा दी है। मैं बात कर रही हूँ उन महिलाओं की जो की अभी तक बहुत बाहर निकल के काम नहीं करते। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं की जो पढ़ लिख के आगे, जैसे कि आपने सैनिक स्कूल लड़कियों के लिए खोल दिया गया, जैसे कि NDA खोल दिया गया लड़कियों के लिए, लड़कियां फाइटर पायलट हैं। तो ये जो इस तरह की चीजें भी आई है ना, उससे पूरे देश में बाकी लड़कियों को भी एक प्रेरणा मिली। 26 जनवरी परेड का आपने जो स्वरूप बदलते हुए देखा होगा, आप देखिए कैसे स्वरूप बदला है। पहले आप देखिए किसी भी कंटिंजेंट में लेडी नहीं लीड करती,
0: एकदम गर्व से सर ऊंचा हो जाता।
1: अब आप देखिए अब 26 जनवरी परेड का रूप बदल गया। तो मुझे लगता है बहुत सारे, और इसका सबका कारण मैं एक समझती हूँ, क्योंकि इस सरकार का जो है अंत्योदय, जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, शुरू से ही भाजपा का ये मूल नियम रहा है अंत्योदय, अंत से उदय करना है। तो ये बहुत सी योजनाएं जो है जो सबसे वंचित वर्ग है वहां से शुरू होती हैं, और जैसे कि जो अफोर्ड कर सकते हैं LPG, तो उनको अब आप देखिए सबका हटा दिया, हमने भी सरेंडर किया, और वो उन वर्गों तक पहुंचा जिनको उसकी आवश्यकता थी।
0: सो बिल्कुल टारगेटेड जो है, फोकस्ड इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है रिफॉर्म्स की। नीलू जी, अगर हम एक बहुत बड़ी जो शक्ति मानी जाती है भारत की, कि भारत एक युवा देश है, यहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड है, सो जिस तरह से जो युवा पीढ़ी है उस पर जो ध्यान दिया है सरकार ने, और जिस तरह से उनका सशक्तिकरण हुआ है, आप किन पहलों को इन 12 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? अगर आप टॉप 2-3 हमें बताएं कि कौन सी आपको पॉलिसी डिसीजंस जो है वो सबसे आपको लगता है कि परिवर्तनकारी सिद्ध हुए हैं या हो सकते हैं।
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए कि युवाओं में अपनी ऊर्जा बहुत होती है, शक्ति उनकी अपनी बहुत है
0: जी।
2: उस ऊर्जा को अवसर देने की जरूरत है, उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको
0: जी।
2: ये पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। और समस्या ये थी कि युवाओं को अवसर नहीं मिलता था, और वो जीवन के हर फील्ड में, चाहे वो अर्थव्यवस्था के किसी भी फील्ड में चले जाएं, शिक्षा में चले जाएं, खेल में चले जाएं, हर फील्ड में वो काम कर सकते हैं, उनकी एनर्जी है, और सबके अपने अपनी खासियत है। तो जो उनकी रुचि है, जो वो कर सकते हैं, उसमें अवसर कैसे दिए जाएं, तो मैं ये कह सकता हूं कि युवाओं के लिए अवसर की ऐसी अनंत संभावनाओं के दरवाजे खुल गए हैं कि हर युवा जो है वो अपने अपने कौशल के विकास में, अपने अपने क्षेत्र में जिसमें करना चाहता है वो कर रहा है। और इसलिए आप देखें, खेल हो, शिक्षा हो, चाहे वो स्वरोजगार हो, चाहे वो साइंटिफिक चीजें डेवलपमेंट हो, नई टेक्नोलॉजी हो, जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है, IT से रिलेटेड है, आप युवाओं को देखेंगे पूरी दुनिया में छा रहे हैं भारत के युवा। इसमें 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है जो देखने की बात है कि जैसे युवाओं के लिए अवसर की जब मैं बात करता हूं, तो पहले मेडिकल की सीटें जो थी, अगर MBBS के देख लें तो 55,000-56,000 की होती थी। 140 करोड़ के देश में केवल 56,000 MBBS आप बना रहे थे, आज वो 1,25,000 की सीटें हो गई हैं, डबल से भी ज्यादा हो गई हैं। जो पोस्ट ग्रेजुएट थी वो लगभग 30-32,000 के आसपास थी, वो लगभग 65-70,000 हो गई, डबल से ज्यादा वहां भी हुई हैं। ये यूथ पहले बाहर जाता था, यूक्रेन से कर रहा है, चीन से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है, वहां जो यूक्रेन की आपदा में कैसे फंस गए थे सब देख रहे हैं, MBBS कर रहे थे, इंजीनियरिंग कर रहे थे। वैसे यूनिवर्सिटीज जो है, मेडिकल कॉलेजों की संख्या जो है, सीटें बढ़ी हैं, तो मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ी है, वो लगभग 380 के आसपास थी आजादी के बाद, 2014 तक खोली गई थी, वो लगभग 750 के आसपास हो गई हैं। 50-60 और मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, जो सिटी जो है MBBS की वो 50,000 और बढ़ने वाली है। ये युवाओं को अवसर दिया देश के भीतर कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके लिए है। ऐसे यूनिवर्सिटीज, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में एडमिशन आप देखते थे कितना मारामारी है, एडमिशन नहीं मिलता था, लोग जो है वो ओपन स्कूलिंग करते थे। ओपन स्कूलिंग अभी भी खुला है और वो एक बढ़िया विकल्प है कि उसमें हम कैसे कर सकते हैं, क्या हम और कोई काम करते हुए भी हम ओपन स्कूलिंग से कोई शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटीज की संख्या लगभग 800 से बढ़ करके और 1300-1400 हो गई हैं, वो डबल हो गई हैं। ये तो उन्हीं के लिए हुआ है। और खेल में प्रतिभाओं को निखारने के लिए जो सरकार ने पैसे दिए हैं, जो स्कीमें लाई हैं, जो युवा खेल जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप देखें कि ओलंपिक खेल हो, चाहे एशियाड खेल हो, चाहे कोई भी खेल हो, जो भारतीय युवा, जो कहा जाता था कि खेलों के लिए भारत में युवाओं का जो शारीरिक संरचना है वो

0: ऐसे खेलों में कंपटीशन के लिए नहीं है, वो कहीं ना कहीं कम है, वो गलत थी बात, वो कहा जाता था।
1: और ये अपॉर्चुनिटी दी खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के,
0: खेलो इंडिया वही मैं कह रहा हूँ, खेलो इंडिया आयोजन वो तो एक आयोजन है, लेकिन आप जो साई के सेंटर्स हैं, जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो सेंटर्स हैं, वहां पे युवाओं पे जो इन्वेस्ट किया जा रहा है, उनको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उन पे जो खर्च हो रहे हैं, इंटरनेशनल कोचेज अगर युवा को अच्छा कर रहा है, ओलंपिक के और एशियाड के लायक कर रहा हो, तो जर्मनी हो चाहे कहीं, वो सरकार के खर्चे पे ट्रेनिंग हो रही है। तो ये एक बड़ा अवसर जो है युवाओं के लिए है। निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि सारे युवाओं को जो है वो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, सारे युवा इस तरफ नहीं जाएंगे, तो वोकेशनल स्टडीज का जो है एक बड़ा उन्होंने किया है ट्रेनिंग, और जो ITI हमारा जो ट्रेनिंग का जो था उसका मॉड्यूल को पूरा चेंज किया है। पहले युवाओं को होता था कि वहीं पे है ITI करो, जो कोर्सेज है वही करो, वो सब पुराने कोर्सेज हो गए हैं, अब उसको रीडिजाइन किया जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में अगर ITI है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कौन से उद्योग हैं, वहां कहां प्रशिक्षित युवाओं की मांग है, तो ऐसे वहां पे उसी लेवल पे उनको ट्रेनिंग दें, वहां फैसिलिटीज दें। अब कितने ट्रेनर हैं, किस किस फील्ड में हैं, ये नहीं पता था। अब सरकार एक नया बना रही है डायरेक्टरी जिसमें कि किस फील्ड के कितने अच्छे ट्रेनर हमारे कहां कहां हैं, कहां कहां गैप है, कहां क्या डिमांड है, दे सकते हैं, तो एक बड़ा चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो है वो सबसे बड़ी चीज जो सबसे ऊपर जाती है वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। वो तो बिल्कुल विशुद्ध युवाओं के लिए है
1: और बदलते परिवेश के अनुसार जो जरूरतें हैं उसके अनुकूल है।
0: उसने जो 10+2+3+2 का जो पूरा का पूरा शिक्षा मॉडल था उसका शिकंजे से युवाओं को मुक्त कर दिया है कि आपको 12th करना है, फिर 3 साल जो है आपको BA करना है, फिर 2 साल PG करना है, फिर MPhil करना है, ये करना है, उसके बाद कम्पिटेटिव एग्जाम देना है। अगर बीच में आपकी पढ़ाई छूट गई तो छूट गई, आपकी सारी मेहनत खत्म। अब उसमें बिल्कुल फ्लेक्सी कर दिया है कि क्रेडिट सिस्टम होगा, आपने 1 साल पढ़ा, 1 साल के बाद आपकी जरूरत पड़ गई, घर में कोई समस्या हो गई, कुछ कहीं नौकरी आपको करनी पड़ रही है, या आपको कहीं कोई अच्छी नौकरी मिल गई, आप वहां चले गए, आपको लगा कि वो पढ़ लेते तो मेरा हो जाता, तो जो आपने 1 साल पढ़ा हो 2 साल पढ़ा हो वो आपके क्रेडिट में है, वो आप कर सकते हैं। जो सिलेबस चुनने में जो था, जो समस्याएं थी कि बच्चा क्या करेगा, साइंस लेगा तो बायोलॉजी लेगा, केमिस्ट्री लेगा, जब वो क्या होता है मैथमेटिक्स लेगा, फिजिक्स लेगा, मतलब एक था कि आप सेट हैं उसी में हैं। अब कोई बच्चा जो है वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है और मैथमेटिक्स में अच्छा हो, वो क्यों नहीं ले।
1: तो युवाओं के लिए बहुत सारे जो
0: मतलब जितने शिकंजे थे, जो अनंत संभावनाएं, जो अवसर उसके युवाओं के लिए है, वो अवसर के दरवाजे सरकार ने खोले हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि आप जो करना चाहे करो, युवाओं में इतनी ऊर्जा है कि वो बाकी सब कुछ कर लेंगे, उनको करने के लिए आपको कुछ सपोर्ट की जरूरत नहीं है, केवल अवसर देने की जरूरत है। और पिछले 12 सालों में वो अवसर मैंने इतने गिनाए आपको कि जो जो करना चाहे, जहां करना चाहे, इस देश में अवसर है, आपको देश छोड़ के जाने की जरूरत
1: तो
0: नहीं।
1: सरकार का जो ये एक सोच है कि आप जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बने, आत्मनिर्भर उद्यमी, जिस तरह से अगर हम स्टार्टअप्स की अगर हम जब स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब वो बढ़कर जो संख्या है 2.2 लाख हो गई है, आपको लगता है कि ये जो एक इनोवेशन की स्पिरिट, एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट, इसको बहुत बढ़ावा दिया गया है इन 12 वर्षों में?
0: बिल्कुल निश्चित रूप से। स्टार्टअप्स जब शुरू शुरू आया था तो लोग कह रहे थे कि भाई युवाओं को नौकरी चाहिए, स्टार्टअप में क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे। अब आप देखें कि उसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो अब बड़े बड़े बन रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के रूप में हो रहे हैं, 8,000-10,000 करोड़ का उनका टर्नओवर वो तत्काल हो रहा है, 150-200 स्टार्टअप ऐसे हो गए हैं जिनका टर्नओवर जो आप देखें तो अच्छी अच्छी कंपनियों से बेहतर है वो, तो वो एक अवसर। और स्टार्टअप में सरकार का जो मदद है
1: स्टार्टअप इंडिया द्वारा,
0: कि उसमें आपको ये टैक्स में छूट है, और इसमें आपके जो पुराने इंस्टीट्यूट हैं, IIT हैं, IIM, उन्होंने जिस ढंग से उनको आगे बढ़ाया है, वहां उनके टीचर जो मेंटोर हैं, वहां पे एक इकोसिस्टम बन रहा है, वो चल रहा है। और अगर स्टार्टअप में देखेंगे तो टेक के क्षेत्र में जो कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में ज्यादातर वो काम कर रहे हैं, बाकी तो नए नए जो वेंचर्स उसमें भी आ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि पेटेंट की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी, यानी कि जो हमारे यूथ जो कहीं रिसर्च में लगे हुए हैं, कुछ नई चीज ढूंढ रहे हैं, पहले पेटेंट नहीं होता था, पूरा पेटेंट के जो रजिस्ट्री जो पूरे मैकेनिज्म है वो चेंज किया जा रहा है, लाखों यूथ जो है वो अब नए नए पेटेंट के लिए हर साल लाखों अप्लाई हो रहे हैं, और पेटेंट मिल रहा है। पेटेंट मिलने का मतलब यह है कि बिल्कुल नई चीज, नए इनोवेशन करके आप दे रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में यूथ के लिए उन्होंने, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, अगर आप रोजगार देने वाला स्टार्टअप जैसे अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो

0: वो अवसर भी है जो पहले नहीं मिलता था।
1: बिल्कुल। और अगर हम तीसरे स्तंभ की बात करें किसानों की, तो किसानों के सशक्तिकरण का रंजन जी जो एक क्रांतिकारी हमने बदलाव देखा है प्रोडक्शन फिगर्स में, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो हम टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में अब शामिल हो गए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, और जिस तरह से नई मिनिस्ट्रीज का गठन हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, एलाइड सेक्टर्स के लिए एक अलग मिनिस्ट्री, किसानों के सशक्तिकरण को आप कैसे देखते हैं पिछले 12 सालों में, और इसका आधुनिकीकरण जो हुआ है उसके प्रमुख पहलू आप क्या मानते हैं?
0: देखिए, उसमें पहले आपको समझना पड़ेगा कि जल खेती में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। एक तो होता है इनपुट कॉस्ट, कि आप जब खेती करने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या उसमें लगाना पड़ेगा, और अगर खराब हो गई फसल, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, कुछ भी हो गया, आपदा आ गई, तो आपका क्या होगा। पहले जो समस्या थी कि इनपुट कॉस्ट की तुलना में जो हम मिनिमम जो गारंटी सरकार देती भी थी कि हम खरीदेंगे, तो कुछ फसलों पे थी, चावल था, गेहूं था, एक दो फसलें और थी, वो नहीं थी कि ये हम आपको खरीदेंगे। अगर आप देखेंगे 12 सालों में तो जो उर्वरक है, जो फर्टिलाइजर है, कीमत उसकी लगभग सेम है, 12 साल में नहीं बढ़ा है, सरकार को सब्सिडी बढ़ रही है, लेकिन वो लगभग 250-300 रुपए की बोरी जो 45 किलो की जो यूरिया की थी आज भी वही है,
1: बहुत बड़ा समर्थन है।
0: इसका मतलब कि जो कॉस्ट आपका है वो उर्वरक वाला वो नहीं बढ़ा है, वो सेम है। दूसरा कि पूरे देश में बिजली जो है वो 24 घंटे उपलब्ध है लगभग, मतलब ग्रामीण इलाकों में कहते हैं कि एवरेज 22-23 घंटे बिजली आज है, पहले नहीं होती या, और किसान अधिकांश जो राज्य हैं उसमें किसानों की बिजली फ्री है, तो सिंचाई के लिए आपको अलग से कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है, और आपके खाद्यान्न की कीमत अगर आप देखेंगे तो कुछ बढ़ा ही है। दूसरी इससे भी बड़ी बात यह है कि सरकार जो सहायता दे रही है 2,000 रुपए का,
1: 6,000 प्रति वर्ष, 3 इंस्टॉलमेंट
0: में, 2,000 के, 3 इंस्टॉलमेंट, 6,000 के हैं, तो वो उसका अगर आप समय देखेंगे कि वो उस वक्त दिया जाता है, और छोटे किसान, आपके अधिकांश जो देश में किसान हैं 12 करोड़ छोटे किसान हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जिस वक्त उनको बुआई करनी होती है, जो खेत लगाना होता है, कुछ करना हो तो बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए उस वक्त उनको पैसे दिए जाते हैं, वो मदद उनको दी जा रही है, किसान क्रेडिट कार्ड उनको दिया जा रहा है कि लाख रुपए तक अगर आपका खर्च कोई करना हो तो बहुत सस्ते में, कुछ नहीं देना है आपको, आप उसमें खर्च कर सकते हैं। जो फिशरीज का जो अलग से मिनिस्ट्री बना करके उनका जो ब्लू रेवोल्यूशन जो उनका किया है और जो एक्सपोर्ट बढ़ा है, वो आप देखिए हॉर्टिकल्चर में जो भारत का एक्सपोर्ट जो मेनली जो आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट जो कृषि क्षेत्र में, वो उसमें दिख रहा है, क्योंकि उसमें 10% 12% का ग्रोथ है, वो एक बड़ी ताकत के रूप में भारत उभर रहा है। तो किसान एज ए होल कह लें आप, बड़ा परिवर्तन हुआ है, और किसान अगर आप कहते हैं ना सिर्फ, तो किसान नहीं होता है सिर्फ, उसी घर में महिलाएं भी, महिलाओं का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहा है,
1: जैसे अभी सर्जना जी बता रही हैं,
0: तो वो भी तो वही बन रही हैं, जो 10 करोड़ महिलाएं हैं वो भी तो किसान परिवारों से ही आती हैं, वो किसान परिवार सशक्त हो रहा है। जो मार्केट का डेवलपमेंट, जो आपकी सड़कें बन रही हैं, तो उन सड़कों के बनने से किसान का जो प्रोडक्ट है वो मार्केट तक आसानी से पहुंच रहा है, और आपने आज 20-25 फसलें ऐसी हो गई हैं जिनकी गारंटी सरकार दे रही है खरीदने के लिए कि हम उसको खरीदेंगे, है ना, आप उपजाओ और गारंटी है इस कीमत पे हम करेंगे। कई राज्य सरकारों ने इधर भावांतरण योजना शुरू कर दी है कि अगर आपको मार्केट से कम कीमत आपको बेचना पड़ रहा है, मार्केट नहीं बेच रहे हैं, तो वो उस कीमत का पैसा हम आपको देंगे, यानी किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जो अन्नदाता है उसके लिए उन्होंने खोला है, सारी चीजें व्यवस्था हो रही है, जो मतलब जो सीधे से कहां से नहीं जुड़ा है, किसान से लगता है कि जुड़ा हुआ नहीं है। अब मान लिया कि जो सरोवर बनाने का था कि जीर्णोद्धार करना है, तमाम तालाबों का सब भर गए थे, सब कुछ है, वो किसका पानी का लेवल बढ़ रहा है, वहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो रही है, किसको जा रहा है फायदा, ये कई चीजें सीधे उनसे जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण इलाकों में जो गरीब परिवार हैं उनका जो फ्री में इलाज जो 5 लाख का हो रहा है, उसमें बहुत सारे परिवार ऐसे गरीब हैं जो आयुष्मान भारत योजना के तहत, वो किसान परिवार से आते हैं, जो 55-60 करोड़ लोग हैं वो कहां से 55-60 करोड़ लोग हैं, बहुत सारे वहां से भी हैं। इसीलिए किसानों पे जो इनपुट कॉस्ट है, उनके जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जो खर्चे हैं, सरकार ने उसे कम किया है, उनकी उत्पादकता बढ़ाई है, और अब कोऑपरेशन मिनिस्ट्री अलग से बना करके उनका कैसे वो जो फार्मर का जो प्राथमिक जो है वो संघ बने, कोऑपरेटिव बने, उसकी 1 लाख के आसपास हो गया है, उसमें है कि 2-3 लाख कोऑपरेटिव बनाने हैं, कोऑपरेटिव बना करके सिर्फ कोऑपरेटिव नहीं करना है, इंटरनेशनल कैसे उनका ऑर्गेनिक खेती करें, कैसे वो विदेश में एक्सपोर्ट हो, इसके लिए अलग से कोऑपरेटिव बना दिया है।
1: बिल्कुल।
0: तो हर तरफ से किसानों को सशक्त कर, किसान सशक्त मतलब देश सशक्त।
1: बिल्कुल। सर्जना जी, अगर आपके पास आए, जैसा कि अभी नीलू जी कह रहे थे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, जो सारे चारों स्तंभ हैं ये भी आपस में जुड़े हुए हैं, अगर हम खासतौर से वंचितों की बात करें, जिन्हें हम मार्जिनलाइज्ड कहते हैं या आर्थिक रूप से कमजोर, इनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि इनके जैसे जो जनजातीय समूह के लिए जो स्टेप्स उठाए गए हैं या जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए स्टेप्स उठाए गए हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन के लिए आप हमें बताएं कि किस तरह के परिवर्तनकारी उपाय हुए हैं।
2: वर्ग में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। वो ऐसे आया है कि एक तो सबसे पहले उस वर्ग में आत्म सम्मान, आत्म गौरव की भावना पैदा करना, जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जिनको पहले आदिवासी बोला जाता है, तभी वनवास, जनजाति जैसे हैं, तो इनके लिए आप देखें कि जो उनके हीरो रहे हैं, बिरसा मुंडा हैं और बहुत सारे, उन सबको इन्होंने निकाला और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है बिरसा मुंडा जी के नाम से। फिर आदि मेले लगने शुरू हुए और एकलव्य स्कूल बनाए गए हैं इन बच्चों के लिए, उसका नाम है एकलव्य स्कूल, कि इतने ट्राइबल बच्चे हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलर स्कूल में नहीं जा पा रहे तो आप उनको, बोर्डिंग स्कूल है ये, उसमें आप उनको पूरी तरह से एक आधुनिक शिक्षा भी दे रहे हैं, आप उनको शिक्षा से जोड़ रहे हैं। दूसरा, जो ट्राइबल्स हैं वो हमारे जल वन के रक्षक और संस्कृति के रक्षक सबसे ज्यादा वो हैं। हम जो पढ़े लिखे शहरी हैं, हम पर्यावरण की उतनी रक्षा नहीं कर सकते जितना वो लोग करते हैं, तो उनके लिए जो वन धन योजना है उससे बहुत लाभ है। उनको कहीं नहीं जाना, नौकरी के लिए एप्लीकेशन नहीं देना, क्योंकि उन लोगों को ये भी मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटी का क्या असर है। उन पत्तों को हम, नीलू जी या आप, जंगल में जाके नहीं पहचान सकते। उनको पता है कि कौन सा फूल जब खिलेगा तो उसके बाद कब बारिश होगी, कब आंधी आएगी, तो वो लोग प्रकृति के साथ सहचर हैं, प्रकृति के। ये जो मंत्रालय है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, तो ये भी आप देखिए कि वैसे तो अटल जी के समय में बना था, लेकिन अब इसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। और ये खेलने में बहुत अच्छे हैं, ये हॉकी में है, स्पेशली तीरंदाजी में, कुश्ती में, तो उस पर भी ध्यान दिया गया है। इनके लिए बोर्डिंग्स खोले गए, इनके लिए कोचेस दिए गए हैं, इनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिस एरिया में जो चीज ज्यादा जो पैदावार हो रही है, अब देखिए कि जैसे मखाना बोर्ड बिहार में बनाया गया, पहले तो नहीं था। दूसरी बात, खाली मखाना बोर्ड बना देने से काम नहीं होगा, ट्रेनिंग है उनकी, फिर उनकी प्रोडक्ट की कीमत है, फिर उनकी प्रोडक्ट को देश में और विदेश में सब जगह पे उनको मंच मिले, ई कॉमर्स जिसको वो भी चला रहे हैं। अभी जब मोदी जी यात्रा पर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी, फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 में, तो मैं जो लिस्ट देख रही थी, आप सोचिए, उसमें वो पिछली बार मखाने लेके गए थे, इस बार वो ठेकुआ भी लेके गए। ठेकुआ भी आप मतलब,
1: हाँ, उन्होंने सम्मान दिलाया है पूरे,
2: श्री अन्न उसको नाम दिया, जिसको मोटा अनाज सब बोलते थे, अब उसको देखिए मान श्री अन्न, और सब चीजों की कीमतें भी बढ़ी है उसकी वजह से, और उसका किसान को लाभ हो रहा है। आज मखाने का आप रेट देखिए बाजार में, तो वो सारा आप सोचिए कि वो लाभ किसान को जा रहा है। और दूसरा, जैसा अभी नीलू जी ने कहा कि खाली विकास समग्र होना चाहिए, अगर मेरे पास प्रोडक्ट है और मैं मंडी तक ही नहीं पहुंच पाऊं, तो मेरे पास मंडी तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, साधन नहीं है, तो मेरी प्रोडक्ट का क्या होगा, क्योंकि ये तो पेरिशेबल आइटम जो होती है, तो उनको तुरंत बाजार चाहिए, तो ये भी बहुत सुविधा हुई है उसके लिए
1: जी।
2: और जब ये MSP की बात होती है, तो MSP अब कहा कि आप जाके किसान अपनी फसल, जरूरी नहीं कि किसी को, भाई जिसको जो कीमत दे रहा है किसान को, जितनी दे रहा है, और जिसके पास वो जाके खरीद ले,
1: हो जाता है।
2: नहीं, खरीद लीजिए जाके जितना रेट है। तो ये विपक्ष जो कहता रहा, जो किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने MSP की बात की, तो वो उससे चार कदम आगे चले। तो वंचित वर्ग में फिर है कि पढ़ाई है उनकी, पहले लोगों को लगता था कि अगर बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा, अब किसी को नहीं लगता। सुकन्या समृद्धि योजना है, लड़कियों को वर्दी है, लड़कियों को सब कुछ। और दूसरा, अगर मान लीजिए अब जो असंगठित क्षेत्र था, जहां पर ये वंचित वर्ग जिसकी आप बात कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास कोई स्किल, कोई एजुकेशन कुछ नहीं था, या उसके पास अपना पारंपरिक हुनर भी, कौशल भी नहीं है कोई, तो खैर कौशल विकास मंत्रालय भी खोला गया और कौशल विकसित किया जा रहा है। तो अगर उसके पास कुछ भी नहीं, तो वो किसी मान लो फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया, जो नए 4 लेबर कोड आए हैं, कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र में है और काम कर रहा है, स्पेशली महिलाएं हैं, तो उनका वेजेस तय कर दिए गए हैं कि आप इससे कब वेज ये बिल्कुल काम नहीं करवाओगे
1: जी।
2: तो ये आप देखिए कितनी अच्छी बात है।
1: हाँ।
2: फिर दूसरा, अगर महिला आपके यहाँ काम कर रही है तो आप उसको घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करेंगे, फैक्ट्री आपकी करेगी
1: जी।
2: तो ये भी एक अच्छी बात है। अब सैनिटरी पैड पर देखिए, लड़कियों की जो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि वैसे इसको कहा गया था कि ये बातचीत करने के, लेकिन ये भी एक रुपए में जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन मिल रहा है लड़कियों को, किशोरियों को। तो आप सोचिए महिलाओं को, तो ये भी
1: बहुत बड़ा,
2: हम इसको एक अगर देखें तो एक तरह से ये भी एक सशक्तिकरण की ओर एक बड़ा कदम है। पिंक टॉयलेट्स हैं, महिलाओं के लिए अलग से अच्छे शौचालय बनाए गए हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपको, अगर हम किसी मैनेजमेंट स्कूल की बुक देखें तो उसमें ये चीजें नहीं दिखेंगी, लेकिन पिछले 12 साल में जो इतनी छोटी छोटी चीजों को सोच के समझ के जिनके ऊपर काम किया गया, पिछले 12 साल में जनधन खाते खोले गए, डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उनका कौशल विकसित किया गया
1: और एक तरह से जो हमारी ट्रेडिशन है हमारे देश की वो भी अलाइव,
2: मतलब कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो मैकॉले ने जो लाया था उसने व्हाइट कॉलर जॉब को बहुत प्रेफरेंस दिया था, पर ये जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, जो सरकार की औद्योगिक नीतियां हैं, जो MSME आप देखिए ना, MSME सेक्टर में कितनी चीजें जो महिलाएं घर में बैठे बैठे शौक शौक में बना लेती हैं, जिनको ये शौक है, जिनके पास स्किल है, अपनी दादी नानी माँ से सीखा है, तो उसके लिए भी सरकार लोन दे रही है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये बहुत महिलाओं का सशक्तिकरण है। दूसरा मैं आपसे कहूंगी कि जैसे मातृत्व वंदन है, वो योजना कितनी अच्छी है, जो मातृ शिशु रक्षा योजना है, तो ऐसी योजनाएं पहले था कि हाँ,
1: और एक्चुअली वो फिगर्स में दिखाई दे रहा है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो अस्पतालों में अब हो रही हैं, उनका संख्या इतनी बढ़ गई है, 98% पे पहुंच गई है, और भी जो मॉर्टेलिटी रेट है।
2: बेसिक मेरी जरूरत है वंचित वर्ग की, अगर हम बात करते हैं कि रोटी कपड़ा और मकान
1: जी,
2: उनको प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दिया जा रहा है
1: जी, जी।
2: ठीक है, उनको जो राशन दिया जाता है एक BPL जो है उससे बिलो में जो राशन मिलता है, ठीक है वो आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, वो भी बाकी समाज के साथ पेस मिलेगा, लेकिन जब उसको अपनी बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं तो उसको उसके लिए नहीं स्ट्रगल करना, इसलिए उसका जीवन स्तर आगे बढ़ा। और कितने करोड़ लोग नीलू जी गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं,
3: 25 करोड़ लोग
2: गरीबी रेखा से ऊपर उठे, और डिजिटल पेमेंट देखिए, आप सारी दुनिया आज हमसे सीखना चाहती है भारत,
1: और ये जो डिजिटलाइजेशन की आप बात कर रही हैं वो पूरे देश में है।
2: सब्जी वाला भी कहता है जी यहाँ पे पेमेंट कर दो, जो फूल बेच रहे वो भी कहता है, गोलगप्पे वाला
1: जी,
2: टिक्की वाला,
1: व्यापक सशक्तिकरण है। अगर हम सामाजिक न्याय की बात करें, समावेशी विकास की बात करें, तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 71% बेनिफिशियरीज जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC फार्मर्स हैं। और मुद्रा योजना की अगर हम बात करें या जनधन योजना की बात करें, तो 70% से अधिक जो अकाउंट्स हैं वो महिलाओं के हैं। सो आपको लगता है कि जो स्कीम्स हैं वो अच्छी भी हैं, लेकिन वो ज्यादा जरूरी है कि वो इम्प्लीमेंट बहुत कहें कि सिंसियरिटी से हुई है।
0: निश्चित रूप से मैं ये अनुभव अपना बताता हूँ, जहाँ मैं अभी गया था पिछले दिनों, जगदलपुर गया था। जगदलपुर का नाम सुनते ही बस्तर सोचते हैं लोग, नक्सली प्रभावित था, नक्सली इलाके में कोई सरकारी कर्मचारी जा ही नहीं सकता था, स्कूल जला दिए थे, जो जंगल में जो लोग थे उनको सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब वहां के जो प्रोडक्ट हैं, जो वहां ट्रेनिंग दी जा रही थी, और बिल्कुल एक संस्थागत रूप में सब कुछ लाया जा रहा है वहां पे, कि जो कैंप लगे थे, नक्सल समस्या खत्म हो गई, तो जो सुरक्षा बलों के कैंप थे उसको सेवा केंद्र में बदला जा रहा है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो खुद हमारे साथ थे, उनके साथ मैं भी था। वहां मैंने देखा कि जो जंगल के प्रोडक्ट हैं, जैसे इमली बहुत होती है, अब इमली वहां पे जो तोड़ा, अब वो बिचौलिए सब खाते थे और जैसे थे जाता था, अब वो मशीनें लगी हैं, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि इमली को कैसे आप पैकेजिंग करो, 500-500 ग्राम के, 1 किलो के छोटे पैकेजिंग, बिल्कुल एकदम उसको, और उसके बीज हटने चाहिए, उसका ये होना चाहिए, और बिल्कुल शुद्ध ऑर्गेनिक बिना किसी केमिकल के, और उसकी बहुत डिमांड है। एक वहां महुआ बहुत होता है, फ्री में चुनते हैं, अब महुआ और बाकी जो श्री अन्न है मिला करके इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके, तो मार्केटिंग की एक सोच का अंतर आया है,
1: एक अवेयरनेस क्रिएट हुई
0: है। अवेयरनेस नहीं, सोच का अंतर ये है कि जब देश आजाद हुआ था तो हमने ये मान लिया था कि ये तो ट्राइब्स हैं, ये जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, इनमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी, इनको हमारे डेवलपमेंट जो होते हैं, इनको हमारे स्कूल नहीं चाहिए, इनको हमारी बिल्डिंग नहीं चाहिए, इनको गाड़ी नहीं चाहिए, इनको जहाज नहीं चाहिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको ये जंगल में ही खुश है। अब आपने उनको छोड़ दिया तो उस जंगल में नक्सली घुस गए, अब जो चेंज आया है कि सारी सुविधाएं वो जंगल में रहें, जहां हैं जैसे जी रहे हैं रहें, लेकिन सारी सुविधाएं हम पहुंचाएं और उनके जो चीजें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक भी जाए, बाकी जगह भी जाए,
1: विकास और उनके बच्चे पढ़े भी, अगर वो चाहे शिक्षा वहां पे पहुंची।
0: एकलव्य स्कूल का उन्होंने नाम लिया कि आदिवासी बच्चे।
1: अच्छा, आप जो सोच की बात कर रहे हैं नीलू जी, यहाँ पे मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि जो टर्मिनोलॉजी भी यूज की गई है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, कितनी खूबसूरत है कि रिकॉग्नाइज कर रही है सरकार की एस्पिरेशंस है उन लोगों की और उनको पूरा करने के लिए ये पॉलिसी मेजर्स उठाए जा रहे हैं।
0: वो यही है कि जब आप सिंसियरली देखते हो कि जिले हैं तो कौन कौन से जिले देश में जो है वो पिछड़े, पहले होता था पिछड़े राज्य की बात, लेकिन अगर आप देखोगे केरल में भी तो केरल कहें कि वहां बहुत साक्षरता है, वहां महिलाओं का सशक्तिकरण है, ये है, तमाम चीजें हैं, लेकिन वहां भी कुछ जिले जो है पीछे रह जाते हैं। और जब बिल्कुल आप पिछले जो कहोगे छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ के कुछ जिले बहुत अच्छे हैं। तो जो जिले पीछे छूट गए हैं वो किन किन मापदंडों पे छूटे हैं, वहां क्या करने की जरूरत है। अब वो जब हो गया तो जिले के भीतर ब्लॉक है, तो अब 500 ब्लॉक्स के अलग चल पड़ी है वहां पे। यानी कि जब समग्र और समेकित विकास की आप बात सोचते हो कि अंत्योदय जो उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जी का था कि कोई छूटे न पीछे, ये जब आपकी सोच होती है तो जितने लोग छूटे हुए हैं सबको आप चुनते हो, क्यों छूट गया, क्या कमी है, क्या हम लगाएं कि यहाँ पे आ जाए, वो चीजें हो रही है।
1: सर्जना जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगी?
2: देखिए, मुझे जो सबसे अच्छा दो तीन चीजें लगती हैं, एक है विरासत के साथ विकास
1: जी,
2: जो स्लोगन है वो बहुत बढ़िया लगता है मुझे, कि हम अपनी परंपराओं को, अपनी ट्रेडिशंस को बचाते हुए विकास की राह पर चले। ऐसा विकास ना हो जो हमें हमारी जड़ों से अलग कर दे। तो हमारी जड़ों से जोड़ने का जो विकास है वो, ये सोच बहुत अच्छी है। अगर मैं अपनी जड़ से उखड़ कर कहीं बहुत उन्नति करती हूँ अपने समाज से, अपने रीति रिवाज से, अपनी परंपराओं से, तो वो विकास एक दिन जाकर मुझे दिल को बहुत दुखी करेगा। लेकिन मैं अपनी जड़ों से भी जुड़ी हूँ, अपनी परंपरा से, अपनी संस्कृति से, और उसके साथ मेरा विकास हो रहा है। अब एक चीज मैं और कहना चाहूंगी कि यूनेस्को धरोहर में अब हमारी टेंजिबल एंड इनटेंजिबल कितनी सारी चीजें आ गई। आप सोचिए, हमारा गरबा, हमारी दुर्गा पूजा, हमारी दिवाली, हमारे बहुत सारी चीजें हैं जो अब यूनेस्को की लिस्ट में शामिल होगी। और एक और सोचिए, पर्यावरण की दृष्टि में रामासर जो आर्द्र भूमि जिनको हम बोलते हैं, अब वो 100 होने वाली है। 99 तो हो ही चुकी, हो गई शायद 100 हो गई।
1: और ये सब चीजें युवाओं को भी प्रेरित करती है।
2: रामासर लेक जो है, पहले हमारे पास 13 या 14 थी, अब आप देखिए कितनी हो गई। तो ये समग्र विकास जो है ना, विद मेरे विरासत के साथ, तो ये एक बहुत 12 साल की एक उपलब्धि है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर्जना जी, नीलू जी, आप आए और आपने हमें इतनी खूबसूरती से समझाया कि जो 4 स्तंभ जो माने गए हैं वर्तमान सरकार द्वारा विकास के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, उनके सशक्तिकरण के लिए क्या क्या किया गया है पिछले 12 सालों में और आगे भी क्या हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद
2: सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सशक्तिकरण से समृद्धि की ओर बढ़ते भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन और सर्जना शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
5: मीडियम वेव 262.47 मीटर यानी कि 1143 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का रोहतक केंद्र। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाटक। नाटक का शीर्षक है गर्मी की धूप छांव। प्रतिभागी निकी, निशांत, अंकुश, अंशिक, यशिका, साहिल, मनीषा और खुशबू। नाटक गर्मी की धूप छांव।

0: काव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा के कारण मौसम बदलते हैं। हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मई और जून के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि बढ़ती गर्मी के क्या कारण हैं, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचाव करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन्हीं विषयों पर होगी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति।
1: मौसम परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़। आइए उनसे जानते हैं कि हीट वेव क्या है और हवाओं का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
2: ये क्या होता है, मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग होता है। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे आइडेंटिफाई कर रखा है। यदि हमारा जो तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है, सामान्य क्या होता है, सामान्य होता है कम से कम 30 साल के आंकड़े, जैसे आज का दिन है उस दिन के पिछले 30 सालों में सेम डेट उसके आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं हम, नॉर्मल मीन निकलता है जिसे हैं, ये कहते हैं एवरेज कह देते हैं, परंतु मौसम विभाग के आंकड़ों में हम नॉर्मल शब्द यूज करते हैं कि 30 साल की जो एवरेज होती है वो उसको हम नॉर्मल मान ले, कम से कम 30 साल, उससे ज्यादा कोई डेटा हो बहुत अच्छा है। परंतु उस तापमान का आज की तारीख में यदि हम कहें कि आज 42 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 40 डिग्री, तो 2 डिग्री नॉर्मल से कम है। यदि आज का तापमान 44 हो जाए तो हमारा नॉर्मल है 42, तो हम कहेंगे 2 डिग्री ज्यादा है। लू क्या होता है, अब जैसे अपने बॉर्डर है राजस्थान की तरफ से यदि गर्म हवाएं आती है, जब नमी नहीं होगी खुश्क हवाएं आएगी, तो उसे लू कहते हैं, जो जनरली मई जून में चलती है अपने इस क्षेत्र में, जब तापमान सामान्य से 4 या 5 डिग्री, उस महीनों में जब 40 डिग्री से ज्यादा हो तब लू चलनी शुरू हो जाएगी। कभी भी तापमान आता है पहले धरती गर्म करेगी, उसके बाद में हवा गर्म होगी, जब कानों के जलने लगते हैं तब पूरा टेम्परेचर बड़ा होता है कहते हैं, और मई जून में जनरली चलती है 47-48 डिग्री तक, कई बार जाता है टेम्परेचर, वो भी राजस्थान के लगते क्षेत्र होते हैं वहीं जाता है।
3: इन दिनों सूरज आग बरसा रहा है, लू लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो अब हम जानेंगे गर्मी बढ़ने के कारण क्या है और इस प्रकार के अन्य कई सवालों के जवाब के लिए हमने बात की है भिवानी से सिविल सर्जन डॉक्टर रघुविंदर सांडिल्या जी से।
4: इसके लिए मनुष्य जिम्मेवार होता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहे हैं, हमारे व्हीकल ज्यादा बढ़ गए और हमारी जो डिफोरेस्टेशन, हम पेड़ों कटाई ज्यादा कर रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे, उसमें बारिश कम होती है, मनुष्य ही इसके लिए जिम्मेदार।
3: तो डॉक्टर साहब, लू लगना क्या है, इसके लक्षण कारण क्या है, आप जरा हमें बताइए।
4: लू लगना या हीट वेव का जो डेफिनेशन है, IMD और वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन के अनुसार, जिस एरिया का एवरेज टेम्परेचर उस टेम्परेचर से 4.62 लेकर के 6.4 तक बढ़ जाता है, कम से कम उसकी रीडिंग 2 दिन तक रहती है और 2 स्टेशन पर अलग अलग मिलती है, तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। और ये पहचान के तौर पे देखें तो स्किन रैशेज हो जाती हैं, चटके पड़ जाते हैं, मरीज को नोजिया वोमिटिंग आ जाती है, पेशेंट का मुंह जो सो है प्यास ज्यादा लगती है, सूख जाता है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसको कन्फ्यूजन हो जाता है, पेशेंट ओरिएंटेड नहीं रहता, भ्रम पैदा हो जाता है, और अगर लेटर ऑन स्टेज में उसको कोई इंटरवेंशन नहीं की गई, पानी नहीं पिलाया गया, ठंड की जगह में नहीं रखा गया, हाइड्रेट नहीं किया गया, तो कंफ्यूजन होकर के उसको सीजर दौरे भी आ सकते हैं, और फिर भी अगर उसको लेटर स्टेज में डेथ भी हो जाती है। इसका जो मुख्य कारण होता है कि हमारा जो अपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसमें ज्यादा हाई होने के कारण हमारी जो गर्म हवाएं है उसको प्रेशर लेकर के रीजन वाइज इफेक्टेड करता है।
5: तेज धूप और बढ़ती गर्मी में श्रमिकों का जीवन किस तरह प्रभावित होता है, आइए जानते हैं एक श्रमिक से।
6: कार्य पर यही असर पड़ रहा है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी में मान के चलिए गर्मी की वजह से हम लोग परेशानी में रहते हैं, फिर भी मजदूर आदमी है तो गर्मी में तो काम तो करना ही पड़ता है, तो गर्मी से यही सब परेशानी है, मजदूर नहीं मिलता है, यही से दिक्कतदारी है।

0: भीषण गर्मी के बीच लोग रोजाना अपने काम से सफर कर रहे हैं। आइए जानते हैं एक बस यात्री से कि इस तपती गर्मी में यात्रा का अनुभव कैसा रहता है और उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
1: गर्मी के दौरान हमें सबसे ज़्यादा जो यात्रा करते वक्त दिक्कतें होती हैं वो यही है कि सबसे पहले हम लोग बढ़ती गर्मी में कम से कम ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि जो तापमान रहता है उसमें बहुत लोगों को हीट स्ट्रोक जैसी चीज़ें और

गर्मी के कारण उनके नोज ब्लीडिंग वगैरह ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा रहती है। इसी वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि या तो हमारा यातायात कम से कम हो या उन घंटों में हो जिनके जिसमें थोड़ी शीतलहर है।

0: जहाँ एक इंसान अपने दिन की शुरुआत चाय पीकर करता है, वहीं एक साधारण दुकानदार अपने दिन की शुरुआत शटर उठाकर करता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि एक दुकानदार को गर्मी के मौसम में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
1: गर्मी के मौसम में आपकी दुकानदारी पर क्या असर पड़ता है?
2: गर्मी के मौसम में दुकानदारी पर असर पड़ता है, कस्टमर भी कम ही निकलते हैं, इस मारे काम भी ये लगा लो आधा हो जाता है।
1: तेज गर्मी में ग्राहकों की आना जाना कम क्यों हो जाता है आपके मुताबिक?
2: तो जी गर्मी होती है तेज, इस मारे कम ही निकलते हैं कस्टमर भी, सुबेरे शाम ज्यादा निकलते हैं, दोपहर को बहुत ही कम हो जाते हैं, कोई कोई कस्टमर आता है दिन में।
1: गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी आपको किस समय होती है और क्यों?
2: गर्मी में जी लगा लो 11 बजे से 3-4 बजे तक परेशानी होती है, बैठे रहते खाली, कोई कस्टमर आता नहीं।
3: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं। इसके कारणों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फ्लाइंग फायर सर्विस से DCPO श्री अंकुर जांगड़ा।
4: गर्मी में जैसे कि आग लगने के बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया और टेम्परेचर भी हाई रहता है। वैसे गर्मियों में जैसे कुछ अनेक प्रकार ये होते हैं, मतलब कि जैसे कि नॉर्मल चीज होती है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, कई बार सिलेंडर हो जाते हैं, तो इनकी जैसे शॉर्ट सर्किट से नुकसान बहुत हो जाते हैं।
5: हमारे बीच चरखी दादरी पशुपालन विभाग से डॉक्टर संतोष है। क्या गर्मी के कारण दूध उत्पादन पर कोई खास असर पड़ता है?
6: गर्मी में क्या है कि अगर पशु चरेगा तो हजम करने के लिए और गर्मी पैदा होगी, तो उससे क्या करता है कि पशु चरना बंद कर देता है। सीधी बात है ये कि अगर चरना बंद करेगा तो उत्पादन क्षमता उनकी कम होगी, जो भी पशु दूध देने वाले होंगे वो कम से कम 1-2 किलो का जो पूरा दूध देती होंगे उनमें, और जो कम देती है वो बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। गर्मी का इतना फर्क होता है।
5: बढ़ती गर्मी का असर केवल हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी पर भी पड़ता है। अधिक तापमान और लू का फसलों की वृद्धि और उत्पादन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस विषय पर हमने बात की कृषि विभाग के विभाग प्रमुख श्री दिनेश शर्मा से।
7: फिलहाल जो अभी टाइम चल रहा है हमारी नर्सरी रेजिंग, जो किसानों ने धान की फसल लगानी है उसके लिए नर्सरी रेजिंग का काम चल रहा है, वो उसमें विशेष है कि ये बेसिक चीज होती है, जब उसको कैसे हम बचा के रखें क्योंकि हीट के अंदर हम सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है।
5: गर्मी के बढ़ने से फसलों पर क्या असर पड़ता है?
7: गर्मी के बढ़ने से नेचुरली हीट वेव से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स अपडेट करने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सूर्य की उपस्थिति में नीचे से भोजन लेता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम से, नाइट्रोजन से एयर से मिल जाता है, फास्फोरस और पोटासियम जो है जड़ों से लेता है, तो वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा ऊपर जाते हैं, लेकिन हीट की वजह से उन जो पत्ते हैं पत्तों का आकार मुड़ जाता है ज्यादा हीट के कारण, तो उसको भोजन बनाने में दिक्कत आती है, इसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम उसको इरिगेट टाइमली नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वे से स्प्रे नहीं करेंगे, एक जैसे सिंपल पानी का भी स्प्रे करते तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी गर्मी कम हो जाती है।
1: बढ़ती गर्मी का असर पर्यावरण, पशु पक्षी और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एवं पर्यावरणविद डॉक्टर जसमेर सिंह हुड्डा।
8: देखिए जो प्रकृति में बदलाव तो आ रहे हैं और बहुत भारी बदलाव आ रहे हैं। पर्यावरण में जो हमारे ध्रुव है जहाँ पर काफी बर्फ थी वहाँ वो भी मेल्ट होने लग रहा है, ओजोन परत का भी क्षरण होने लग रहा है। ये जो बढ़ती गर्मी है इसका पर्यावरण पर भी और इसमें रहने वाले जो जीव जो रहते हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। प्रजातियां जो थी वो विलुप्ति के कगार पे हैं और बहुत सी प्रजातियां अब बिल्कुल एक स्टेज पे खड़ी हैं कि वो शायद आगे देखने को मिले भी नहीं। तो मानवता के लिए बात हो चाहे पर्यावरण के लिए बात हो प्राणियों के लिए बात हो, जो बढ़ती गर्मी है वो हर चीज पर असर डालेगी। अगर मैं 15-20 साल पहले ही बात करूं तो गर्मी इतनी बड़े लेवल पर नहीं होती थी, गर्मी थी जरूर परंतु इतनी असहनीय नहीं होती थी कि बाहर निकलो तो आदमी एकदम से झुलसने का भय भी रहे। सूर्य का जो प्रताप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका असर आज के तापमान पे भी और धरती के और पर्यावरण के हरे कंपोनेंट पे पड़ रहा है। देखिए पृथ्वी का जो एक प्रकृति ने कहे या भगवान ने कहे बड़ा अच्छा तालमेल बनाया है उसमें।

इस गीत के बाद हम आपको पुनः फिर से नाटक सुनवा रहे हैं गर्मी की धूप छांव। प्रतिभागी हैं निक्की, निशांत, अंकुश, यशिका, अनिशिक, साहिल, मनीषा और खुशबू। किसी तकनीकी खामी के चलते हमें यह बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन हम पुनः इस नाटक को आपको सुनवा रहे हैं गर्मी की धूप छांव।

0: नमस्कार श्रोताओं, गर्मी का मौसम आते ही हमारे आसपास बहुत कुछ बदलने लगता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर उसकी परिक्रमा के कारण मौसम बदलते हैं। हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में मई और जून के दौरान गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि बढ़ती गर्मी के क्या कारण है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचाव करने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। इन्हीं विषयों पर होगी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति।
1: मौसम परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के वरिष्ठ कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन खीचड़। आइए उनसे जानते हैं कि हीट वेव क्या है और हवाओं का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है।
2: ये क्या होता है? मैदानी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्रों में अलग अलग होता है। IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसे आइडेंटिफाई कर रखा है। यदि हमारा जो तापमान मैदानी क्षेत्रों में 40 डिग्री

0: के आसपास पहुंच जाता है। सामान्य क्या होता है? सामान्य होता है कम से कम 30 साल के आंकड़े, जैसे आज का दिन है उस दिन के पिछले 30 सालों में सेम डेट, उसके आंकड़ों का एनालिसिस करते हैं हम, नॉर्मल मीन निकलता है जिसे हैं, ये कहते हैं एवरेज कह देते हैं, परंतु मौसम विभाग के आंकड़ों में हम नॉर्मल शब्द यूज करते हैं कि 30 साल की जो एवरेज होती है वो उसको हम नॉर्मल मान लें, कम से कम 30 साल, उससे ज्यादा कोई डेटा हो बहुत अच्छा है। परंतु उस तापमान का आज की तारीख में यदि हम कहें कि आज 42 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 40 डिग्री, तो 2 डिग्री नॉर्मल से कम है। यदि आज का तापमान 44 हो जाए तो हमारा नॉर्मल है 42, तो हम कहेंगे 2 डिग्री ज्यादा है। लू क्या होता है? अब जैसे अपने बॉर्डर है राजस्थान की, राजस्थान की तरफ से यदि गर्म हवाएं आती है, जब नमी नहीं होगी खुश्क हवाएं आएगी, तो उसे लू कहते हैं, जो जनरली मई जून में चलती है अपने इस क्षेत्र में, जब तापमान सामान्य से 4 या 5 डिग्री, उस महीनों में जब 40 डिग्री से ज्यादा हो तो लू चलनी शुरू हो जाएगी। कभी भी तापमान आता है पहले धरती गर्म करेगी, उसके बाद में हवा गर्म होगी, जब कानों के जलने लगते हैं तब पूरा टेम्परेचर बड़ा होता है कहते हैं, और मई जून में जनरली चलती है 47-48 डिग्री तक, कई बार जाता है टेम्परेचर, वो भी राजस्थान के लगते क्षेत्र होते हैं वहीं जाता है।
1: इन दिनों सूरज आग बरसा रहा है, लू लगने के मामले भी बढ़ रहे हैं, तो अब हम जानेंगे गर्मी बढ़ने के कारण क्या हैं और इस प्रकार के अन्य कई सवालों के जवाब के लिए हमने बात की है भिवानी से सिविल सर्जन डॉक्टर रघुविंदर सांडिल्य जी से।
2: इसके लिए मनुष्य जिम्मेवार होता है, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन ज्यादा कर रहे हैं, हमारे व्हीकल ज्यादा बढ़ गए, और हमारी जो डिफोरेस्टेशन, हम पेड़ों कटाई ज्यादा कर रहे हैं, पेड़ लगा नहीं रहे, उसमें बारिश कम होती है, मनुष्य ही इसके लिए जिम्मेदार।
1: तो डॉक्टर साहब, लू लगना क्या है, इसके लक्षण कारण क्या है, आप जरा हमें बताइए।
2: लू लगना या हीट वेव का जो डेफिनेशन है, IMD और वर्ल्ड जो मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी डेफिनेशन के अनुसार, जिस एरिया का एवरेज टेम्परेचर उस टेम्परेचर से 4.62 लेकर के 6.4 तक बढ़ जाता है, कम से कम उसकी रीडिंग 2 दिन तक रहती है और 2 स्टेशन पर अलग अलग मिलती है, तो उसको हम हीट वेव कहते हैं। और ये पहचान के तौर पे देखें तो स्किन रैशेज हो जाती हैं, चटके पड़ जाते हैं, मरीज को नोजिया,

0: जहाँ एक इंसान अपने दिन की शुरुआत चाय पीकर करता है, वहीं एक साधारण दुकानदार अपने दिन की शुरुआत शटर उठाकर करता है। तो आइए आज हम जानेंगे कि एक दुकानदार को गर्मी के मौसम में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम में आपकी दुकानदारी पर क्या असर पड़ता है?
1: गर्मी के मौसम में दुकानदारी पर असर पड़ता है, कस्टमर भी कम ही निकलते हैं, जिस मारे काम भी ये लगा लो आधा हो जाता है।
0: तेज गर्मी में ग्राहकों की आना जाना कम क्यों हो जाता है आपके मुताबिक?
1: तो जी गर्मी होती है तेज, इस मारे कम ही निकलते हैं कस्टमर भी, सवेरे शाम ज्यादा निकलते हैं, दोपहर को बहुत ही कम हो जाते हैं, कोई कोई कस्टमर आता है दिन में।
0: गर्मी में सबसे ज्यादा परेशानी आपको किस समय होती है और क्यों?
1: गर्मी में ये लगा लो 11 बजे से 3-4 बजे तक परेशानी होती है, बैठे रहते हैं खाली, कोई कस्टमर आता नहीं।
2: गर्मियों में आग लगने की घटनाएं अक्सर बढ़ जाती हैं। इसके कारणों को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं फ्लाइंग फायर सर्विस से DCPO श्री अंकुर जांगड़ा।
3: गर्मियों में जैसे कि आग लगने के बहुत ज्यादा चांस हो सकते हैं, जैसे कि शॉर्ट सर्किट हो गया और टेम्परेचर भी हाई रहता है। वैसे गर्मियों में जैसे कुछ अनेक प्रकार ये होते हैं, मतलब कि जैसे कि नॉर्मल चीज होती है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, कई बार सिलेंडर हो जाते हैं, तो इनकी जैसे शॉर्ट सर्किट से नुकसान बहुत हो जाते हैं।
4: हमारे बीच चरखी दादरी पशुपालन विभाग से डॉक्टर संतोष है। क्या गर्मी के कारण दूध उत्पादन पर कोई खास असर पड़ता है?
5: गर्मी में क्या है कि अगर पशु चरेगा तो हजम करने के लिए और गर्मी पैदा होगी, तो उससे क्या करता है कि पशु चरना बंद कर देता है। सीधी बात है ये कि अगर चरना बंद करेगा तो उत्पादन क्षमता उनकी कम होगी, जो भी पशु दूध देने वाले होंगे वो कम से कम 1-2 किलो का जो पूरा दूध देती होंगे उनमें, और जो कम देती है वो बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं, गर्मी का इतना फर्क होता है।
4: बढ़ती गर्मी का असर केवल हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि खेती बाड़ी पर भी पड़ता है। अधिक तापमान और लू का फसलों की वृद्धि और उत्पादन पर भी प्रभाव देखने को मिलता है। इस विषय पर हमने बात की कृषि विभाग के विभाग प्रमुख श्री दिनेश शर्मा से।
6: फिलहाल जो अभी टाइम चल रहा है हमारी नर्सरी रेजिंग, जो किसानों ने धान की फसल लगानी है उसके लिए नर्सरी रेजिंग का काम चल रहा है, वो उसमें विशेष है कि ये बेसिक चीज होती है, जब उसको कैसे हम बचा के रखें क्योंकि हीट के अंदर अब सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है।
4: गर्मी के बढ़ने से फसलों पर क्या असर पड़ता है?
6: गर्मी के बढ़ने से नेचुरली हीट वेव से उसकी ग्रोथ रुक जाती है, टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स अपडेट करने की कैपेसिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। सूर्य की उपस्थिति में नीचे से भोजन लेता है, जैसे नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटासियम से, नाइट्रोजन से एयर से मिल जाता है, फास्फोरस और पोटासियम जो है जड़ों से लेता है, तो वो जाइलम फ्लोएम के द्वारा ऊपर जाते हैं, लेकिन हीट की वजह से उन जो पत्ते हैं पत्तों का आकार मुड़ जाता है ज्यादा हीट के कारण, तो उसको भोजन बनाने में दिक्कत आती है, इसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर हम उसको इरिगेट टाइमली नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वे से स्प्रे नहीं करेंगे, एक जैसे सिंपल पानी का भी स्प्रे करते तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी गर्मी कम हो जाती है।
0: बढ़ती गर्मी का असर पर्यावरण, पशु पक्षी और जीव जंतुओं पर भी पड़ता है। इस बारे में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर एवं पर्यावरणविद डॉक्टर जसमेर सिंह हुड्डा।
7: देखिए जो प्रकृति में बदलाव तो आ रहे हैं और बहुत भारी बदलाव आ रहे हैं। पर्यावरण में जो हमारे ध्रुव है जहाँ पर काफी बर्फ थी वहाँ वो भी मेल्ट होने लग रहा है, ओजोन परत का भी क्षरण होने लग रहा है। ये जो बढ़ती गर्मी है इसका पर्यावरण पर भी और इसमें रहने वाले जो जीव जो रहते हैं उन पर भी काफी असर पड़ रहा है। प्रजातियां जो थी वो विलुप्ति के कगार पे है और बहुत सी प्रजातियां अब बिल्कुल एक स्टेज पे खड़ी है कि वो शायद आगे देखने को मिले भी नहीं। तो मानवता के लिए बात हो, चाहे पर्यावरण के लिए बात हो, प्राणियों के लिए बात हो, जो बढ़ती गर्मी है वो हर चीज पर असर डालेगी। अगर मैं 15-20 साल पहले ही बात करूं तो गर्मी इतने बड़े लेवल पर नहीं होती थी, गर्मी थी जरूर परंतु इतनी असहनीय नहीं होती थी कि बाहर निकलो तो आदमी एकदम से झुलसने का भय भी रहे। सूर्य का जो प्रताप है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जिसका असर आज के तापमान पे भी और धरती के और पर्यावरण के हरेक कंपोनेंट पे पड़ रहा है। देखिए पृथ्वी का जो एक प्रकृति ने कहे या भगवान ने कहे एक बड़ा अच्छा तालमेल बनाया है, उसमें पानी का बैलेंस अपनी जगह है, पेड़ पौधों का बैलेंस अपनी जगह है, हर चीज को प्रकृति ने बैलेंस किया है। वो आधुनिक विकास के नजरिए से देखें तब भी हमें प्रभावित हुआ है, जंगलों को हमने काफी काट भी दिया, जंगलों खत्म भी कर दिया है, नए पौधे लगा नहीं रहे, नए जंगल नहीं लगा रहे, अब तक जो थे वो अपने आधार

0: वही है जितने जंगल हैं।
1: अब अगर जब ज्यादा पौधे नहीं लगेंगे तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ेगा, ज्यादा जंगल नहीं होंगे तो पानी कम होगा, बरसात का जो अहम योगदान रहता बरसात लाने में वो जंगलों के यानी जो पेड़ पौधों का ज्यादा होता है, तो जो जंगल कट रहे हैं इनका असर सीधा सीधा हरेक जीव पर और प्रकृति पर बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है।
2: हर वर्ष बढ़ती गर्मी और बदलते मौसम को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठते हैं। गर्मी हर साल क्यों बढ़ रही है, इससे कैसे बचें? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ हैं वनस्पति विज्ञान विभाग से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मनीषा, जो कि NSS, YRC और इको क्लब की भी सदस्य हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं इन सवालों के उत्तर।
3: हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में अगर हम तापमान को देखें तो आए साल एक नया रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है। इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारी पृथ्वी है इसका एवरेज टेम्परेचर 1.2 से 1.3 डिग्री बढ़ चुका है। और अगर इसकी कारण की मैं बात करूं तो इसका कारण है कि जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब का हमारे एटमॉस्फेयर में इनकी जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो हमारी पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ता जा रहा है।
4: समस्याओं की पहचान करना महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनके समाधान खोजना।
5: तो आइए जानते हैं कि बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं।
6: डॉक्टर रघुविंदर जी से हमने जाना गर्मी से बचने के सरल उपाय क्या हैं।
7: सावधानी ये है कि हम जो बहुत डायरेक्ट ज्यादा टेम्परेचर होता है जैसे कि 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक में बहुत ही जरूरी काम हो तो ही घर से बाहर निकले, और जब बाहर निकले अपने शरीर को ढक करके निकले, छाता हो या फिर हमारे कोई गमछा हो और साथ में पानी रखें। ये भी है कई बार प्यास की वेट ना करें और पानी के साथ साथ में ORS है, नींबू पानी है, लस्सी है, शिकंजी है, साथ में ज्यादा से ज्यादा बिना प्यास भी उसको पीता रहना चाहिए ताकि अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखे।
6: किसानों को किस समय काम करना चाहिए, आइए इस बारे में जानते हैं डॉक्टर रघुविंदर जी से।
7: हमें समय सही तरह से चुनना चाहिए कि हम 11 बजे से या अर्ली मॉर्निंग अपना काम करें और लेट इवनिंग में काम करें तो उसे बेटर होता है, और ज्यादा दिक्कत आती है तो अपने शरीर को हाइड्रेट करने के साथ में पानी रखें, अपने शरीर को ढक करके रखें, गॉगल्स लगाएं, कपड़ा रखाएं, ये कोशिश करें कि जो फिजिकल एक्सरसाइज उस टाइम में ना करें। हमारे जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं और जो हार्ट के मरीज है, डायबिटीज के मरीज है और हमारे किडनी के मरीज है वो ज्यादा प्रभावित होते हैं।
6: हमारे जो किसान भाई हैं उनका भी कोई ना कोई काम चलता रहता है, अगर उन्हें कोई दिक्कत हो जाए तो मौके पर क्या करें?
7: सबसे पहले तो हमने जहाँ पर एक्सपोजर है उस एरिए से लेकर ठंड के एरिया में उसको पेशेंट को शिफ्ट करना चाहिए, छाया हो, शरीर को गिल्ला करना चाहिए, पानी ठंडा ना भी हो, कपड़े समेत उसको वैसे गिल्ला कर देने से उसके ऑपरेशन से कूलिंग हो जाती है तो वह भी बढ़िया, और उसको जल्दी से जल्दी हम ORS का पानी पिलाएं, नींबू पानी, लस्सी, फ्रूट ज्यादा दें। अगर फिर भी वो रिकवरी नहीं है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ही होती है, क्योंकि इसमें फिट्स आ जाते हैं और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है तो उसमें मोर्टिलिटी बढ़ जाती है, और खास करके जो बच्चे हैं और ऑलरेडी पहले नोन केस हैं, डायबिटीज के हैं, हार्ट अटैक के हैं, स्ट्रोक के पेशेंट हैं, तो इन मरीजों में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए।
6: हमें खान पान में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
7: सावधानी यही है कि हम इस समय घर में बनी हुई चीज खाएं, बाहर का जो पैक्ड खाना है उसको अवॉइड करें, खुद भी करें और बच्चों को शिक्षा दें, क्योंकि बच्चे जैसे बनेंगे जैसे हम शिक्षा देंगे।
2: आइए जानते हैं श्रमिकों से उन पर गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है और वे बचाव के लिए क्या क्या करते हैं।
8: गर्मी से बचाव के लिए यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और सर पे गमछा वगैरह रख करके काम तो करना ही पड़ेगा। हम तो मजदूर भाई से यही संदेश जाना चाहते हैं, करो काम तो कीजिएगा, नहीं तो काम कैसे होगा, लेकिन फिर भी अपना बचाव के लिए जो है सर पे चादर गमछे टोपी लगा के रखिए, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, यही बचाव हम मजदूर भाई को संदेश देना चाह रहे हैं।
9: आइए हम जानते हैं एक बस यात्री से कि वो गर्मी से बचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं।
10: गर्मी से बचने के लिए मैं अपने साथ एक दुपट्टा जरूर रखती हूँ ताकि धूप से बचा जा सके, क्योंकि धूप की ठंडी दोपहर के समय घर में बहुत अधिक रहती है। उसके अलावा मैं ये पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ एक पानी की बोतल जरूर हो ताकि हम हाइड्रेटेड रह सके। इसके अलावा अगर यात्री ज्यादा लंबे सफर पर ट्रैवल कर रहे हैं तो उसको नारियल पानी अपने पास जरूर हो, AC से ज्यादा अच्छी, क्योंकि AC गर्मी के समय में उसमें ज्यादा सफोकेशन होती है, यात्री ज्यादा बढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम लोग AC से ट्रैवल कर सके, वहीं हमारी रोडवेज हमें उस सफर को कम से कम समय में पूरा करने का मौका देगी। सर्दियों के कंपैरिजन में हमारी गर्मियों की यातायात में बहुत फर्क होता है, क्योंकि गर्मी में हम लोग खुद ही सोचते हैं कि हम अपने घरों में रहें या फिर हम उन दिनों का उपयोग करें जिसमें हम जल्दी जाते हैं, तो कम ही रहती।
9: अब हम जानते हैं यात्रियों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
10: मैं अपने बाकी यात्रियों को यही बताना चाहूंगी कि वह जरूर अपने साथ कुछ दुपट्टा या ऐसा कपड़ा जरूर रखें ताकि वो धूप से अपना बचाव कर सकें, क्योंकि सीधी दिन में ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। इसके अलावा अपने साथ पानी की बोतल, नारियल पानी या फिर सुखाने का अवश्य रखें ताकि हमारे शरीर में गर्मी ना बने।

0: गर्मी से बचने के लिए दुकानदार क्या उपाय अपनाता है? आइए इस बारे में एक दुकानदार से जानते हैं।
1: तो गर्मी के मौसम में एसी वगैरह ही चलाना पड़ता है, जिससे उससे खर्चा भी बढ़ता है, बिल भी 3-4 गुना बढ़ जाता है, आमदनी कम हो जाती है।
2: दुकान में आप सामान खराब होने से कैसे बचाते हैं, जैसे दूध दही या कुछ और ठंडी चीजें?
1: सामान खराब होने का डर तो रहता ही है, 24 घंटे फ्रिज चलाने पड़ते हैं, इसमें भी वही आ जाता, फिर खर्चा ही बढ़ता है, लाइट भी ज्यादा खर्च होती है जिस चीज।
0: सरकार से एक दुकानदार की क्या अपेक्षाएं हैं? आइए उनकी राय जानते हैं।
1: जी देखो, इसके बारे में सोचना चाहिए नगर पालिका ने, या तो कुछ टाइमिंग बनाए 22 से इस टाइम तक दुकान खोली जाए, जिससे कस्टमर उसी टाइम निकले। जैसा भी सोल्यूशन हो, यही हो सकता है, भाई दिन में बंद कर दे, जिससे कस्टमर भी नहीं निकलेंगे, उसी टाइम निकलेंगे जिस टाइम दुकानें खोलेंगी।
3: तो आइए अब हम जानेंगे श्री अंकुर जांगड़ा जी से कि हीट वेव से लगी आग से बचने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं।
4: इसे बचने के लिए उपाय जैसे यही है, हमारे पास में जैसे मिट्टी हो या पानी हो, जैसे कि आग देख के उसको इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिशियन की जैसे आग हो, बिजली की आग हो, तो उसके ऊपर हमें देखना पड़ता है, मतलब कि कौन सा सिलेंडर या किस प्रकार की हमें कैसे क्या कंट्रोल करना पड़ता है उसके ऊपर, ठीक है। उसको नहीं देखना, ऐसे देखना पड़ता है किस प्रकार की आग है, इस पे कौन सा सिलेंडर यूज होगा, या जैसे नॉर्मल कागज गत्ते की आग है, या जैसे कि बिजली कहीं भी आग लग जाती है तो ज्यादातर तो मिट्टी का और रेत का जैसे किसका प्रयोग करें। और दूसरी बात थी कि कहीं स्कूल में हो या कॉलेज में हो या कहीं भी मेडिकल में हो, आपको वहाँ सिलेंडर मिलते हैं CO2 और ABC, दो प्रकार के सिलेंडर होते हैं, दो प्रकार एक्सटेंशन होते हैं। तो उसमें जैसे कि इलेक्ट्रिशियन फायर पे यूज होता है CO2, उसमें होते है गैस, वो जल्दी से इलेक्ट्रिशियन की जो आग होती है उसको जल्दी से जल्दी काबू करता, कंट्रोल करता है। गैस सिलेंडर का भी LPG जो गैस होती है, जो अनेक प्रकार की जो गैस होती है, उनके ऊपर भी एक ही सिलेंडर यूज होता है, वो होता है फोम का, उसके ऊपर फोम का सिलेंडर यूज होता है। अदरवाइज सिलेंडर फोम का नहीं मिलता है तो ज्यादातर सिलेंडर होते हैं ABC होते हैं, पाउडर होता है, उसमें पाउडर का नाम होता है मोनोमोनियम फॉस्फेट। वो सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर है, मतलब तकरीबन जितनी भी आग है उन पर सभी ऊपर काबू कर सकता है। हमारा टोल फ्री नंबर 102 था पहले, अभी सरकार ने एक नंबर कर दिया 112। 112 पे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस सभी एक ही नंबर पे आएंगी। आग लगने से जैसे कि पहले अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ती है, उसके दौरान सेफ्टी होने के बाद तुरंत कॉल करनी पड़ती है 112 पे, क्वारंट में कॉल करनी पड़ती है। और दूसरी बात, आपकी कॉल नहीं उठाई जाती है तो आपको दोबारा से रिपीट उसको कॉल को दोबारा करना पड़ता है, फिर भी नहीं होता फिर आपको मेल डालनी पड़ती है।
5: चरखी दादरी के पशुपालन विभाग से डॉक्टर संतोष से हमने जाना कि गर्मियों में पशुओं को कौन सी बीमारी का खतरा रहता है।
6: गर्मियों में बाह्य परजीवी होते हैं, जिनको चिचड़, सोरी ऐसे जो बोलते हैं, इनका प्रकोप इस टाइम ज़्यादा होता है। तो उनसे या तो पहले ही बचाव, या फिर जो इनके रहने का स्थान है उसका खास ध्यान रखना होता है कि आप ईंटों का बना है उसको अच्छे से रखें, और इनसे पहले जो दवाई आती है वो दो, और आगे जो आएगा जैसे बारिश का सीजन आएगा उसमें मक्खी मच्छर का भी प्रकोप ज्यादा रहेगा, उससे भी बचाना आपको।
5: गर्मी में पशुओं के स्वास्थ्य का खास ख्याल या देखभाल कैसे रखना चाहिए?
6: रहने का है उनका स्थान, सबसे पहले वो देखेंगे हम, फिर पीने के पानी और नहलाने की व्यवस्था, फिर एक इस टाइम मैंने बताया था कि हरा चारा नहीं रहता, तो उसके आप कुछ कंपनीज ने निकाल भी रखे, जैसे हम ग्लूकोज जैसे होता है ORS की तरह, ऐसे पशुओं में भी हो है, आप बीच बीच में वो पिला सकते हैं, या फिर कभी एक साइलेज और एक दो चीजें हैं, जब हमारे पास ज्यादा मात्रा में हरा चारा होता है तब हम इसको बना सकते हैं और इस टाइम हम इसके वो खिला सकते हैं।
5: रोहतक के कृषि विभाग केंद्र के कार्यालय प्रमुख दिनेश शर्मा से हमने जाना कि गर्मियों में फसलों की सिंचाई का उचित तरीका क्या है।
7: फिलहाल जो अभी टाइम चल रहा है, हमारी नर्सरी रेजिंग, जो किसानों ने धान की फसल लगानी है उसके लिए नर्सरी रेजिंग का काम चल रहा है, वो उसमें विशेष है कि ये बेसिक चीज होती है, जब उसको कैसे हम बचा के रखें,

0: सारी चीजों पे इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो किसान भाई जो इरिगेशन करें उसके अंदर वो शाम के टाइम करें, क्योंकि सुबह करते हैं अगर उसमें पानी खड़ा है, पानी हीट वेव से उसके जो है उसकी जड़ों पे इफेक्ट पड़ेगा और वो पीली होके खराब हो जाएगी। इसलिए किसान भाई उसकी सिंचाई शाम को ही करें और फिर सुबह होते ही मतलब सुबह तक उसमें पानी निकल जाएगा। नंबर दो, गन्ने के अंदर भी हमारा अभी चल रहा है उसकी जो निराई गुड़ाई चल, उसमें भी किसान भाई लाइट इरिगेशन शाम के टाइम ही करें, दिन में कोई अन्य हमारे एग्रीकल्चर के जो कार्य है गर्मी के टाइम में जो हमारा 9 से 5 क्रूशियल टाइम है उसमें ना करके अपने हेल्थ के लिए भी वो शाम को या सुबह अर्ली मॉर्निंग में काम करें। अगर हम उसको इरिगेट टाइमली नहीं करेंगे, उसको प्रॉपर वे से स्प्रे नहीं करेंगे, एक जैसे सिंपल पानी का भी स्प्रे करते तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है, उसकी गर्मी कम हो जाती है।
1: चलिए अब जानते हैं कि गर्मियों में फसलों के उत्पादन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है।
0: इरिगेशन उसकी जो भी है हमारी क्रॉप्स लगी हुई है उसकी इरिगेशन इवनिंग टाइम में करें, दिन में सुबह मॉर्निंग में कोई ऑपरेशन कोई स्प्रे करना हो तो वो शाम के टाइम में करें 5-6 बजे के बाद। सुबह कोई हर्बिसाइड का है या कोई ग्रोथ प्रोमोटर का स्प्रे वगैरह करते हो तो उसका इफेक्ट भी कम हो जाता है। इसलिए सभी किसान भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि जो भी ऑपरेशन करो, स्प्रे करो या ग्रोथ प्रोमोटर डालो या इरिगेशन करो तो शाम के टाइम ही करो, ताकि रात भर उसका असर हो और सुबह उसका इफेक्ट सही रहे। अदरवाइज अगर सुबह करते हो तो उसका हीट के कारण सारा साइड इफेक्ट पड़ेगा, फसलों की ग्रोथ भी रुकेगी और वो धीरे धीरे खत्म भी हो सकती है। ये मेजर पॉइंट है कि बचाव कैसे करो।
2: हमें बढ़ती हुई गर्मी से बचने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए और कौन कौन से वृक्ष लगाने चाहिए उनकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर मनीषा।
3: अगर हम पेड़ लगाएंगे तो ग्रीन हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन को अपने आप ही कम कर देंगे और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हम प्लांटेशन ड्राइव्स करेंगे हमारी पृथ्वी का तापमान जो है वो संतुलित हो जाएगा। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब हम ऐसे इलाकों में जाते हैं, ऐसे कॉलोनीज में जाते हैं जहां पे प्लांटेशन बहुत ज्यादा होती है, वहां पे आपको एक ठंडक महसूस होती है, आपको 2-3 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस महसूस होता है जब आप उन एरियाज में जाते हैं। आप पेड़ लगाएं और पेड़ों में भी हमारे बायोलॉजिकल कूलर्स कहा गया है कुछ पेड़ों को, जैसे कि हमारा बैनियन ट्री है, हमारा पीपल का पेड़ है। इस तरह के पेड़ अगर आप लगाएंगे आपको छाव भी मिलेगी, तापमान भी कंट्रोल में रहेगा और ये इस तरह के पेड़ हैं कि इनके एंड्योरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो बहुत ज्यादा सर्दी, बहुत ज्यादा गर्मी, ये हर तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। हर इलाके के अलग अलग पेड़ होते हैं, रेगिस्तान के इलाकों में वहां पानी की कमी होती है तो वहां पे इसी तरह के पेड़ जैसे बैनियन ट्री है, प्रोसोपिस है, नीम है, आपका केसिया है, इस तरह के पेड़ वहां पे उगाए जाते हैं क्योंकि इन पेड़ों में खुद क्षमता होती है कम पानी में भी अपना जीवन व्यापन करने की। और इसके अलावा जैसे एलोवेरा का पौधा है और जितने भी हमारे ज़ेरोफाइट्स हैं वो सब हम रेतीले इलाकों में आसानी से उगा सकते हैं। वहीं अगर मैं हिली एरियाज की या पहाड़ों की बात करूं तो वहां पे पाइनस के पौधे हैं, साइकस है, एफिड्रा है, ये इस तरह के पौधे होते हैं जो कि कम तापमान में और कम पानी की अवेलेबिलिटी होने पर भी अपना सर्वाइवल कर सकते।
2: क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें हम अपने घरों के अंदर लगा सकते हैं जो कि घर में ठंडक भी रखें?
3: स्नेक प्लांट एक बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको बिल्कुल भी केयर की जरूरत नहीं होती और ये बहुत अच्छा एयर प्योरीफायर है। हम घरों में जो इतने इतने पैसे खर्च करके एयर प्योरीफायर खरीदते हैं, अगर हम अपने रूम्स में इन प्लांट्स को उगा लें, जैसे स्नेक प्लांट है, आपका मनी प्लांट है, एलोवेरा है, आपके सक्यूलेंट्स हैं, ये बहुत अच्छे से आपके इंडोर क्लाइमेट्स में सर्वाइव कर सकते हैं।
4: आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने जाना कि ग्रीष्म ऋतु क्यों आती है
5: और इसके दौरान तापमान में वृद्धि क्यों होती है।
4: विशेषज्ञों से बातचीत के माध्यम से हमने हीट वेव, हवाओं के प्रभाव और बढ़ती गर्मी के कारणों को समझा।
5: साथ ही हमने जाना कि बढ़ती गर्मी का प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण, पशु पक्षियों, खेती बाड़ी और श्रमिकों के जीवन पर किस प्रकार पड़ता है।
4: इसके अलावा गर्मियों में आग लगने की घटनाओं और उनसे बचाव के उपायों पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की।
5: उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी।
4: इसी के साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं।
6: इस कार्यक्रम की स्थल रिकॉर्डिंग, स्वर और प्रस्तुति

0: कुमकुम, निक्की,
1: निशांत, अंकुश,
0: अक्षिका, याशिका,
1: साहिल, मनीषा,
0: खुशबू, पवन,
1: महक,
0: निर्देशक श्री संजय बाली जी।

अभी आपने सुना नाटक गर्मी की धूप छांव। प्रतिभागी रहे निकी, निशांत, अंकुश, अंशिक, यशिका, साहिल, मनीषा और खुशबू। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं कलाकार सुरेंद्र कुमार शर्मा को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार सुरेंद्र शर्मा। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार, उसके बाद होंगे अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जा रहे हैं। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहा है। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के बाद होर्मुज जल डमरू मध्य फिर से बंद किया। और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भाव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेड

0: पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा।
1: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। वहीं दिल्ली में शांति पथ, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, न्यू मोतीबाग, सेंट्रल पार्क और तालकटोरा गार्डन जैसे प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कल श्रीनगर में डल झील के किनारे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष योग दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस आयोजन में लगभग 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। इसी कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
2: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
0: दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नेपाल में भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी में योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। उधर जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकिजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले संयुक्त अरब अमीरात में भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश में 14 शहरों में होगी। इसमें 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2,00,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। एनटीए भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल संयुक्त अरब अमीरात में 3 निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
5: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
4: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी

0: आज स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन में को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत है, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में इनोवेशन कर रहे हैं।
0: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये फैसला लेबनान में इसराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर इसराइल के हमले जारी रहे तो वह और कड़े कदम उठा सकता है। उधर दक्षिणी लेबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोगों की मौत हो गई। ये हमले संघर्ष विराम की खबरों के कुछ ही घंटों बाद हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा के तीर्थयात्रियों का पहला जत्था आज नाथुला दर्रे से होते हुए चीन में प्रवेश कर गया। इस दल में 47 लोग हैं। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जनजातीय समुदाय देश के विकास में महत्वपूर्ण भागीदार बन रहे हैं। ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त जारी की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व करेंगे। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा कल, परीक्षा केंद्रों पर कड़े सुरक्षा प्रबंध और चेन्नई में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister Narendra Modi asserts tribal communities are emerging as active participants in India's development journey, launches development projects worth more than 47,000 crore rupees in Odisha. Prime Minister releases 23rd installment of PM Kisan Samman Nidhi scheme of over 18,000 crore rupees. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. NEET UG 2026 re-examination to take place tomorrow under strict vigil. Iran closes Strait of Hormuz over ceasefire violation. And in cricket, India clean sweep 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating the visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the president said India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue,

कार्यक्रम एक फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं पूरब और पश्चिम फिल्म के कुछ गीत। कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं इसी फिल्म से, आवाज़ महेंद्र कपूर, ब्रिजभूषण, श्यामा चित्तौड़ और साथियों के। गीतकार हैं इंदिवर साहेब और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। सुनते हैं इस ऐतिहासिक फिल्म पूरब और पश्चिम का ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे पूरब और पश्चिम फिल्म के कुछ गीत कार्यक्रम एक फिल्म से में। ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का रोहतक केंद्र है। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सोल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत ना होता तो कितनी सूनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये।

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन टिक टिक टिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का, जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर जी ने।

0: यहां हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

0: जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।
1: हाँ।

पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए।

सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाने माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला। जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह। पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे।

सन 1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

0: आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रो ड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है, या फिर विचार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई वर्षों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हों या शांति में, सुख में हों या दुख में, परिवार के साथ हों या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों या सीमा के एकांत मोर्चे पर, हर जगह हर पल हम अपनी कला से अपने गीतों के जरिए आपके आसपास ही रहते हैं। आप सुन पाएं या ना सुन पाएं, मगर यकीन मानिए हम आपको ही आवाज़ देते रहते हैं।

मुझे बचपन से ही गाने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी और माताजी को भी संगीत का शौक था और इसीलिए हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर, उधर से इधर आ जा रही थी, बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए। मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर, धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
1: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया,
2: फिर कोई चोट
1: फिल्म सूरज।

0: सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी।
1: सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर विवेक करमहे का शास्त्रीय गायन।
1: नमस्कार। इन टुडेज नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी आर गोइंग टू ब्रॉडकास्ट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय डॉक्टर विवेक करमहे।
0: सुरों के प्रति अगाध समर्पण और रागों की शुद्धता जब किसी साधक के कंठ से प्रस्फुटित होती है तो संगीत का एक नया अध्याय जन्म लेता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के आकाशदीप पर ऐसा ही एक दैदीप्यमान नाम है डॉक्टर विवेक करमहे। 15 से अधिक वर्षों के अनवरत रियाज और देश विदेश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी मंत्रमुग्ध कर देने वाली प्रस्तुतियों से आपने शास्त्रीय संगीत जगत में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: When profound dedication of musical notes and the purity of ragas spring forth from the voice of a devotee practitioner, a new chapter in music is born. One such radiant name shining on the firmament of Indian classical music is Dr. Vivek Karmahe. With over 15 years of relentless practices and spellbinding performances on prestigious stages in India and abroad, he has left an indelible mark on the world of classical music.
0: स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर स्वर्ण पदक विजेता तथा संगीत में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित डॉक्टर विवेक ने पद्मश्री पंडित उल्हास कशालकर, विदुषी गिरिजा देवी, श्री ओंकार दादरकर और श्रीमती कुमुदिनी मुंदकुर जैसे महान संगीत मनीषियों के सानिध्य में इस कला की सूक्ष्मताओं को आत्मसात किया है। आकाशवाणी के ए ग्रेड प्राप्त कलाकार डॉक्टर विवेक जब तानसेन समारोह और पंडित कृष्णराव शंकर पंडित समारोह जैसे ऐतिहासिक मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। भूटान, नेपाल, श्रीलंका से लेकर दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस और संयुक्त अरब अमीरात तक भारतीय संस्कृति का परचम लहराने वाले डॉक्टर विवेक आज के दौर में शास्त्रीय गायन की एक प्रखर और प्रेरक आवाज है।
1: A gold medalist at both the undergraduate and postgraduate levels and honored with a doctorate in music, Dr. Vivek assimilated a subtle nuances of this art under tutelage of great musical maestros such as Padma Shri Pandit Ulhas Kashalkar, Vidushi Girija Devi, Shri Onkar Dadarkar and Shrimati Kumudini Mundukur.

0: an A-grade artist of All India Radio when Dr. Vivek showcases his art of historic stages like the Tansen Samaroh and Pandit Krishnarao Shankar Pandit Samaroh, the listeners are left utterly spellbound. Proudly flying the flag of Indian culture from Bhutan, Nepal and Sri Lanka to South Africa, Mauritius and United Arab Emirates. Dr. Vivek is a brilliant and inspiring voice of classical vocal music in today's era.
1: Dr. Vivek kar rahe apni gayan ki shuruaat raag shri se kar rahe hain. Vilambit rachna tilwada taal mein nibaddh hai jiski bool hai वारी जाऊं रे तुम पे. द्रुत रचना तीन ताल में है जिसकी बोल है चलो रे माई राम सिया दर्शन. आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे हैं रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा.
0: डॉक्टर विवेक करमहे इज कमेंसिंग हिज रिसाइटल विद राग श्री. द विलंबित कंपोजिशन इज सेट टू तिलवाड़ा ताल विद द लिरिक्स वारी जाऊं रे तुम पे. The Drut composition is in Teen Taal with the lyrics Chalo Re Mai Ram Siya Darshan. Accompanying him on the harmonium is Ravindra Killedar and on tabla is Nishant Sharma.

0: श्री में अभी आपने सुना डॉक्टर विवेक करमहे का गायन। डॉक्टर विवेक करमहे अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित रचना एक ताल में है जिसकी बोल है कौन गत भई। द्रुत रचना भी एक ताल में निबद्ध है जिसकी बोल है बेग बेग बेग बेग आओ।
1: You were just listening to Dr. Vivek Karmahe's rendition in Raag Shri. Dr. Vivek Karmahe is now going to present Raag Bageshri. The Vilambit composition is in Ektal with the lyrics Kaun Gat Bhai. The Drut composition is also set to Ektal with the lyrics Beg Beg Beg Beg Aao.

0: डॉक्टर विवेक करमहे का गायन राग बागेश्री। डॉक्टर विवेक करमहे अपने गायन का समापन राग सोहिनी से कर रहे हैं। मध्य लय तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है देख देख मन ललचाई, और द्रुत तीन ताल में निबद्ध रचना के बोल है रंग न डारो श्याम जी।
1: That was Dr. Vivek Karmahe's vocal rendition in Raag Bageshri. Dr. Vivek Karmahe is concluding his recital with Raag Sohini. The Madhyalay composition set to Teen Taal has the lyrics Dekh Dekh Man Lalchai. And the Drut composition set to Teen Taal has the lyrics Rang Na Daro Shyamji.

0: डॉक्टर विवेक करमहे के द्वारा प्रस्तुत ये था राग सोहिनी। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे रविंद्र किल्लेदार और तबले पर निशांत शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है।
1: That was Raag Sohini presented by Dr. Vivek Karmahe. Accompanying him were Ravindra Killedar on harmonium and Nishant Sharma on tabla. This program was presentation of Akashwani Indore. With this, today's national program of music comes to an end.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
2: देशर प्रधानमंत्री भव्य दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
2: यह मोर आंतरिक कामना।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
4: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास, इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
1: बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपये जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसान को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री कोलकाता में कल INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह का अनावरण करेंगे। इन पोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम सुबह 5 बजे शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा कल आयोजित की जाएगी।

ये पुनः परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इस पुनः परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवथ तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का एक हिस्सा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने प्रत्येक मृतक के परिवार को 5,00,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में 1 विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। 5 विकेट लेने वाले प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2 दिनों तक असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।